सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 सितंबर सन 2026। सुबह के 7 बजने को है। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, समय आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए आपको बताते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। जीवन सौरभ कार्यक्रम का प्रसारण होगा अब से कुछ ही देर के बाद। आज आप सुनेंगे राजा मिडास और सोने के स्पर्श की लघु कथा। अक्षय निधि कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 7:10 से, जिसमें आज आप सुनेंगे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से सूक्त 29 का वाचन। भक्ति संगीत कार्यक्रम लेकर आएंगे 7:20 से। वतन का राग कार्यक्रम आज आप सुनेंगे प्रमोद रंजन चौधरी की शहादत पर, प्रसारण समय प्रातः 8:00। इसी कार्यक्रम को आप पुनः सुन सकेंगे संध्या 6:00। सुबह 8:30 पर सुनो कहानी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कहानी परीक्षा। सुबह 9:00 कार्यक्रम कला कल्लोलिनी आज केंद्रित रहेगा उदय शंकर पर। 9:30 पर विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में।

0: भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी आप सुनेंगे परिक्रमा कार्यक्रम में आज दिन में 10 बजे। 10:30 पर कार्यक्रम होगा हिंदुस्तान हमारा। कार्यक्रम केंद्रित रहेगा सरदार भगत सिंह की जयंती पर। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। कार्यक्रम में आज के आकर्षण रामधारी सिंह दिनकर। दिन में 11:30 का समय होगा कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद का। कार्यक्रम का 56वां भाग आज हम प्रसारित करेंगे। तो श्रोताओं सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ।
2: कैसा हो कि आप सोकर उठें और जिस चीज को आप छुएं वो सोने की बन जाए। यूनान के एक राजा मिडास को भी एक ऐसा ही अनोखा वरदान मिला, लेकिन इस वरदान ने उसकी जिंदगी कैसे बदल दी, आइए जानते हैं। यूनान में मिडास नाम का एक फेमस राजा हुआ करता था। बचपन से ही उसे सोना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसके कमरे की हर एक चीज़ सोने की बनी हुई थी। उसका पलंग सोने का था, वो जिस बर्तन में खाना खाता था वो सब सोने के थे, और तो और उसकी कंघी भी सोने की ही बनी हुई थी। उसे सोने से इतना प्रेम था कि वो जितना ज़्यादा सोना जमा करता उतना ही उसका लालच बढ़ता जाता। सोने के प्रति उसका लालच देखकर उसकी पत्नी भी परेशान हो गई थी। वो अक्सर भगवान से उसकी इस लालसा को खत्म करने की प्रार्थना करती थी। एक दिन राजा मिडास अपने महल के कमरे में बैठकर सोना गिन रहा था, तभी अचानक वहां भगवान प्रकट हुए। मिडास को सोना गिनते हुए देखकर उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी अक्सर मेरी सेवा करती है, उसकी सेवा से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? भगवान की बात सुनकर मिडास बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बोला, मुझे एक ही वरदान चाहिए कि मैं जिस चीज़ को स्पर्श कर लूँ वो सोने की हो जाए। भगवान ने कहा, अगर तुम यही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। कल सुबह उठने के बाद तुम जो कुछ स्पर्श करोगे वो सब सोने में बदल जाएगा। अगले दिन राजा जब सोकर उठा तो उठकर वो बालकनी में गया और वहाँ से अपने राज्य को देखने लगा। तभी उसे याद आया कि कल भगवान ने उसे वरदान दिया था, अब उस वरदान को परखने की बारी थी। राजा ने सबसे पहले बालकनी में लगे पर्दों को छुआ। पर्दा राजा का स्पर्श पाकर पलक झपकते ही सोने में बदल गया। ये देखकर राजा बहुत खुश हो गया। राजा मिडास सोने का स्पर्श पाकर बहुत खुश था, लेकिन उसे अभी पता ही नहीं था कि धीरे धीरे उसका यही वरदान उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। बालकनी से निकलकर राजा नाश्ता करने बैठा, लेकिन जैसे ही उसने फलों को हाथ लगाया वे भी सोने के बन गए। उसने पानी पीने के लिए जैसे ही जग को छुआ वो भी सोने में बदल गया। राजा मिडास को बहुत तेज भूख लग रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इतने में ही उसकी बेटी भागती हुई उसके पास आई और उसे परेशान करने लगी और आते साथ ही उसके गले लग गई। मिडास को छूते ही वो लड़की सोने की मूर्ति में तब्दील हो गई। अपनी बेटी को सोने की मूर्ति में देखकर मिडास दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। उसे ये समझ आ गया कि सोना संसार की सबसे अच्छी वस्तु नहीं है। परेशान होकर मिडास ने भगवान को पुकार लगाई। भगवान महल में प्रकट हुए और बोले, मिडास क्या तुम इतना सारा सोना पाकर खुश हो? मिडास ने रोते हुए कहा, नहीं, इस समय मैं संसार का सबसे दुखी मनुष्य हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आप मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी बेटी को पहले जैसा बना दो, मैं उसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सोने को नहीं। राजा मिडास की बात सुनकर भगवान ने कहा, ठीक है मिडास, तुम समझ गए हो कि सोना संसार की सबसे कीमती वस्तु नहीं है, तो मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने अपना वरदान वापस ले लिया। मिडास की बेटी अब वापस इंसान बन गई। ठीक होने के बाद मिडास की बाहों में उसकी प्यारी बेटी पहले की तरह अटखेलियां करने लगी। इस घटना के बाद मिडास ने सबक ले लिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा धन परिवार ही होता है। वो अब अपनी पत्नी और बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पैसा आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी आपको अपने परिवार से ही मिलती है।
1: जीवन सौरभ।
0: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 29 से वाचन। ऋषि हैं कृत्स्मत, देवता हैं विश्वे देवा और छंद है त्रिष्टुप।
1: धृतव्रता आदित्या ईशिरा आरे मत्कर्त रहसु रिवागह शृण्वतो वो वरुण मित्र देवा भद्रस्य विद्वाम अवसे हुए वह। हे व्रतधारी सर्वत्र गमनशील आदित्यगण, गुप्त रहस्य की भांति हमारे पापों को हमसे दूर करें। हे मित्र एवं वरुण देवो, आपके मंगलकारी कार्यों को जानकर हम संरक्षण के लिए आपका आवाहन करते हैं। आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। यूयम देवाः प्रमतिर यूयमोजो यूयम द्वेषांसि सनुतुर युयोत अभिक्षतारो अभिच क्षमध्व मद्या च नो मृणयता परम च। हे देवगण, आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, तेजस्वी हैं तथा द्वेषियों के छल को प्रकट करने वाले हैं। आप शत्रुनाशक हैं, अतः शत्रुओं का संहार करें तथा हमारा वर्तमान और भविष्य सुखमय बनाएं। किमु नु वह कृणवा मापरेण किम सनेन वसव आप्येन यूयम नो मित्रा वरुणादिते च स्वस्ति मिंद्रा मरुतो दधात। हे आश्रयदाता देवगण, पूर्व में किए गए अपने कर्मों से हम आपका किस प्रकार आदर सत्कार करें। हे मित्र वरुण आदिति इंद्र तथा मरुदगणों, आप सभी देवगण हमारा कल्याण करें। हये देवा यूय मिदापयः स्थते मृणत नाधमानाय मह्यम् मा वो रथो मध्य मवारणते भून्मा युष्मावत स्वापिषु श्रमिष्म। हे देवगणों, आप ही हमारे हितैषी सखा हैं, अतः हम आपकी स्तुति करते हैं। आप हमें सुखी बनाएं। हमारे यज्ञ में आपका रथ तीव्र गति से आए। हम आपके समान सखा पाकर सदैव स्तुतियां करते रहें, थके नहीं। प्रव एको मिमय भूर यागो यन्मा पीतेव कीतवम शशास आरे पाशा आरे दघानि देवा मा मधि पुत्रे विमिव ग्रभीष्ट। हे देवो, आपने हमें पिता की भांति उपदेश दिया है, अतः हमने अपने अनेकों पापों को नष्ट कर दिया है। हे देवो, पाप तथा पाश हमसे दूर रहें। व्याध द्वारा पक्षी की तरह पुत्र के सामने निर्दयता पूर्वक हमें न पकड़े। अर्वांचो अद्या भवता यजत्रा आवो हार्दि भयमानो व्ययेयम् त्राध्वम नो देवा निजुरो वृकस्य त्राध्वम कर्ता दवपदो यजत्राः। हे पूज्य देवगणों, आप आज हमारे सामने प्रकट हों। भयभीत होकर हम आपके हृदय के समान प्रिय आश्रय को प्राप्त करें। हे पूज्य देवगणों, कष्टदायी दुष्ट शत्रुओं से आपत्ति काल में हमारी हर प्रकार से रक्षा करें। माहं मघोनो वरुण प्रियस्य भूरिदान आविदं शूनमापेह मा रायो राजन्स्यु यमादव स्थाम बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। हे वरुण देव, सबको संतुष्ट करने वाले ऐश्वर्यशाली दानदाता की सुख समृद्धि से हम कभी ईर्ष्या न करें, उन्हें बंधुवत माने। हे वरुण देव, आवश्यक धन प्राप्त होने पर हम अहंकारी न बने, श्रेष्ठ संतति सहित यज्ञ में देवों की स्तुतियां करें।
0: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 29वें वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत।

रसिक वह है जो बहते हुए भगवद रस को पी लेता है। भावुक है वह जिसने भगवत रस प्रवाहित होने लगता है।

भक्ति में भाव होता है, आइए हम भी भाव प्रधान भक्ति करें। भावुक होने का मतलब रोना नहीं होता। भाव प्रधान अर्थ है हम अपने आराध्य के साथ एक ऐसा भाव बनाए रखें, उसे पकड़े रखें, 24 घंटे पकड़े रखें, जो अपने भाव को परिपक्वता से हर स्थिति में संभाल कर रखे। प्रभु की भक्ति हमारे अंतस से बाहर ना जाने पाए।

हम अपने आराध्य पर विश्वास तो रखते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कभी कम, कभी ज्यादा, कभी अधूरा हो जाता है। लेकिन ये तो व्यर्थ का गणित है। विश्वास या तो इस पार होना चाहिए या उस पार, यानी हमारे भीतर ईमानदारी होनी चाहिए, जगत के प्रति नहीं, केवल अपने आराध्य के प्रति।

ईश्वर ने हमारे जीवन में सुखों के साथ दुखों का निर्माण भी किया है, क्योंकि आपद काल में ही विश्वास की परिपक्वता प्रमाणित होती है। इसीलिए भगवान के प्रति अपना विश्वास पक्का रखिए।

हमारे द्वारा किया गया अधर्म ही हमारे लिए अहितकारी है, लेकिन भगवान तो सबके लिए सदा हितकारी ही हैं। वे अहितकारी हो ही नहीं सकते।

और श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। सुबह के 8 बजे आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

सन 1920 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया ऐसा जन आंदोलन था जिसमें शहरी, ग्रामीण क्षेत्र, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग सभी ने इसका व्यापक समर्थन किया और देश के प्रत्येक घर से युवा महात्मा गांधी के साथ हो लिए। इनमें से ही एक युवा थे क्रांतिकारी शहीद प्रमोद रंजन चौधरी। वे एक प्रमुख बंगाली क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंगाल के कैलिशर चटगांव में ईशान चंद्र चौधरी के घर एक नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया। सन था 1904। नाम रखा गया प्रमोद रंजन चौधरी। प्रमोद रंजन ने अपनी शिक्षा के लिए पाठशाला जाना प्रारंभ किया और सन 1920 में अपने छात्र जीवन के दौरान ही वे अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। इसके साथ ही सन 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया और फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होकर देश को आजाद करवाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के समर में कूद पड़े।

सन 1925 में क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और उनके साथ अन्य साथियों ने दक्षिणेश्वर में एक बम बनाने वाली फैक्ट्री से बम बनाने की सामग्री ले जाने का प्रयास किया। इसमें क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और उनके क्रांतिकारी साथियों को संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया गया। हुआ यूं कि कुछ अति उत्साही नौजवानों ने एक दिन सोचा कि एक क्रांतिकारी दल बनाया जाए और अंग्रेजों को सबक सिखाया जाए। तब वर्तमान 24 परगना जिले में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के नाम पर बने इस संगठन का नाम स्वतंत्रता संग्राम के लिए इतिहास बन गया। दक्षिणेश्वर की बम बनाने वाली इस फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक जोरदार विस्फोट ने पुलिस को सतर्क कर दिया और वहां कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार किए गए उन क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। इस दक्षिणेश्वर बम कांड में गिरफ्तार संदिग्ध क्रांतिकारियों में क्रांतिकारी प्रमोद रंजन चौधरी भी शामिल थे और अंग्रेज सरकार द्वारा चलाए गए मुकदमे में क्रांतिकारी प्रमोद रंजन चौधरी को 5 साल की कड़ी सजा सुनाई गई और उन्हें अलीपुर जेल में बंद कर दिया गया। उन दिनों जेल के उप अधीक्षक भूपेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जेल में आए। उनका इरादा जेल में बंद क्रांतिकारियों की मानसिक शक्ति को नुकसान पहुंचाना था और इस मानसिकता के चलते उन्होंने क्रांतिकारियों को छोटी छोटी बातों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तब तंग आकर कुछ क्रांतिकारियों ने जेल के उस उप अधीक्षक भूपेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की हत्या करने की योजना बनाई।

0: अलीपुर जेल के उपाधीक्षक भूपेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय 28 मई 1926 को जेल के फर्श पर मृत पाए गए। इस घटना से अलीपुर जेल में अफरा तफरी मच गई, परंतु पुलिस ये पता लगाने में असमर्थ रही कि उप पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का असली हत्यारा कौन है। काफी जद्दोजहद के बाद अंग्रेज पुलिस ने दो क्रांतिकारियों को मुख्य अपराधी और अन्य तीन को उनके सहायक के रूप में दोषी ठहराया। इनमें क्रांतिकारी प्रमोद रंजन भी शामिल थे। उन पर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया और क्रांतिकारी प्रमोद रंजन चौधरी और उनके साथी क्रांतिकारी अनंत हरि मित्र को फांसी की सजा सुनाई गई।
1: आ मृत्यु, आ, आ तू, या आने के लिए निकली ही होगी तो आ ही जा, अभी मुरझाने के डर से डर जाएं फूल, अंगूर भी रस पीने सूख जाने से डर जाऊं क्यों तुझसे, मैं किस लिए मेरे इस प्याले में पीते पीते कभी न खत्म होने वाली है। भरी आंसुओं की मदिरा बस मेरे लिए।

आ आ यदि तू भूखी है, नैवेद्य के लिए और अभी दिन यद्यपि यौवन युक्त फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं, फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं इस दिन के किसी तरह जुगाड़ कर ऋण चुकता किया, जन्मार्जित जो जो सब ऋषि ऋण के लिए श्रुति जननी चरण तीर सेवन करके आश्रय कर ध्रुव पद का संतत उसके आ मृत्यु आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो आ ही जा।

प्रमोद रंजन चौधरी ने अंग्रेज शासन के विरुद्ध आवाज उठाई थी तथा देश को आजाद करवाने में अत्याचारी अंग्रेजों से लोहा लिया और 28 सितंबर 1928 को वे वीरता के साथ अपने क्रांतिकारी साथी अनंत हरि मित्र के साथ फांसी के फंदे पर झूल गए। प्रमोद रंजन चौधरी के बलिदान ने आजादी के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को प्रेरित किया। उनके द्वारा दिए गए अपने प्राणों के बलिदान, उनकी बहादुरी और विचारों को हम सदा याद रखेंगे। देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारी प्रमोद रंजन चौधरी को शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिव शेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं सुनो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी परीक्षा।

जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई, जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राज काज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे, बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त ये लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है, जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। ये जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहां तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी, विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया, ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता, कोई पंजाब से चलाता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम रोया करते थे, यहां उसकी कोई जरूरत नहीं थी। रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनत

बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर दा, सा और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय का नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ला को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने देखने में डूबे रहते थे, जिससे बात कीजिए वो नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने में लगते थे और मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते थे कि एक महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वो बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहां छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। ये प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। ये भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुष लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही, लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी, हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था, पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं भी आ जा नहीं सकता, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इस बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए हुए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गईं। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी खड़ा है, झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहां बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूं, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया, कीचड़ बहुत ज्यादा था, वो घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। फिर उसने जोर किया, उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैल को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार और जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने तो मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहां बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, हम मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल में संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है।
निदान महीना

पूरा हुआ, चुनाव का दिन ना पहुंचा, उम्मीदवार लोग प्रातः काल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, सब रंग बिरंगी सजधज बनाए दरबार में आबिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वो जो उदार हो, आत्मबल वो जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं विकीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूं। रियासत के कर्मचारियों रईसों ने जानकीनाथ की ओर देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकारने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा। उसका दृढ़ संकल्प है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वो चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा।

0: तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी परीक्षा। सुनो कहानी के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: और अब समय है हमारे कार्यक्रम कला कलोलिनी का। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा,
1: और संदीप के साथ मैं हूं मनीषा।
0: और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे नृत्य सम्राट उदय शंकर की। श्रोताओं, भारतीय इतिहास में ऐसे कुछ विरले व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में देश का नाम विश्व में रोशन किया है और अपने असाधारण योगदान से अपना और राष्ट्र का नाम अग्रिम पंक्ति में पहुंचाया और दूसरों को अपनी अद्वितीय प्रतिभा से प्रेरणा दी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसे एक महान कलाकार की चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किसी भी स्वरूप में कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, परंतु उनकी प्रस्तुतियां रचनात्मक होती थी। हालांकि ये बात अलग है कि बचपन से ही वे भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के संपर्क में रहे।
1: हाँ श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में आधुनिक नृत्य के निर्माता, सुप्रसिद्ध नर्तक, नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता नृत्य सम्राट उदय शंकर जी की। उन्होंने यूरोप और अमेरिका को भारतीय नृत्य की संस्कृति से दुनिया के मानचित्र पर प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। हाँ, उन्होंने तांडव नृत्य, शिव पार्वती, लंका दहन, रिदम ऑफ लाइन, श्रम और यंत्र, रामलीला और भगवान बुद्ध के नाम से नवीन नृत्यों की रचना की। इसमें वेशभूषा, यंत्र संगीत, ताल और लय आदि का आविष्कार भी किया। कला की दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जो तमाम बंधनों और समय की सीमाओं को लांघकर अमर हो गए हैं। उदय शंकर उन्हीं महान हस्तियों में से एक थे जिन्होंने नृत्य कला को केवल एक प्रदर्शन कला नहीं बल्कि संस्कृति सेतु बना दिया।
0: इसलिए तो उन्हें भारत के आधुनिक नृत्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। हम इस बात को यहाँ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि जिस समय भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल परंपराओं तक सीमित था, उस दौर में उदय शंकर ने उसे विश्व पटल पर समकालीन रूप देकर नई पहचान दिलाई। जब भारतीय नृत्य विश्व पटल पर अपने लिए एक बड़ा सम्मान अर्जित कर रहे थे, उसी 1930 के दशक में भारत में भी शास्त्रीय नृत्यों के रूपों का पुनरुत्थान हो रहा था। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना भी जागृत हो रही थी और उस समय विदेशी शासन के बावजूद भारतीय अपनी स्वदेशी कलाओं पर गर्व कर रहे थे। उस समय उदय शंकर जो कि प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, पर जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि शास्त्रीय नृत्य की किसी भी शैली में उनका कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था।
1: ये तो सही है कि वे प्रशिक्षित नर्तक नहीं थे, परंतु उनके नृत्य बहुत रचनात्मक होते थे। अनेक नृत्य परंपराओं को और साथ ही उनकी तकनीक की कुछ चुनी हुई चीजों को लेकर अपने नृत्य नाटकों की रचना करने में उन्हें कमाल की महारत हासिल थी। वे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। इस विषय में उनका योगदान अपने मन में आई भावनाओं और विषय को विस्तार पूर्वक लोगों तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त शैली और रूप के साथ रचनात्मक तरीके से दर्शकों तक पहुंचा देने का हुनर रखते थे। नृत्य के पारंपरिक तरीके से परिचित होने के बाद भी उन्होंने उन सभी को अलग रखा, एक और अलग एकीकृत रचना को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उनके इसी तरह के प्रयोग देखकर लोगों के सामने उनकी बहुमुखी प्रतिभा निखर कर सामने आई। उस्ताद अलाउद्दीन खां और विष्णुदास शिराली, जो कि सुविख्यात पंडित विष्णु दिगंबर के शिष्य थे, उनके साथ उदय शंकर ने पेरिस में अपने एकल और युगल बैले नृत्य के लिए रचनात्मक संगीत के साथ प्रयोग किए।
0: जी हाँ, उदय शंकर ने केवल भारतीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जिसमें उनकी रचनाओं और नृत्यों के संगीत को एक अनोखा रंग प्रदान किया। और हम ये भी कह सकते हैं कि उनके कई नवाचारों ने हमारे संगीत के रुझान को और समृद्ध किया है। और इस बात का एक ठोस आधार ये भी है कि उनकी प्रशिक्षण पद्धति में स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें नर्तकों को उनके द्वारा प्रस्तुत बैले नृत्यों के लिए तैयार किया गया जो संभागीय रहता था, और इसमें उनकी नृत्य तकनीक, लोक नृत्य, तात्कालिक नृत्य मंच और वेशभूषा डिजाइन, श्रृंगार, प्रारंभिक शारीरिक आयाम, भावपूर्ण गतिविधियां, शरीर की संवेदनशीलता का विकास, एकाग्रता, कल्पनाशीलता, सामूहिक भावना और उसका अवलोकन, चरणों का ज्ञान, गति का मनोविज्ञान, रंग और रेखा की समझ, नृत्य और नाटक का संबंध, ये सब शामिल रहा।
1: श्रोताओं, यहाँ इस बात को भी बताना हम जरूरी समझते हैं कि इनके छोटे भाई रविशंकर वही हैं जिन्हें हम सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के नाम से जानते हैं। उदय शंकर के पिता संस्कृत के माने हुए विद्वान थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और बाद में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गए और वहां से वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बने। पिता को अपने काम के सिलसिले में बहुत अधिक घूमना पड़ता था, इसलिए उदय शंकर के परिवार ने अपना ज्यादातर समय अपने मामा के परिवार में अपनी माँ और छोटे भाइयों के साथ नसरतपुर में बिताया।
0: उदय शंकर की शिक्षा भी इसी कारण अलग अलग जगह पर हुई, जिसमें नसरतपुर, गाजीपुर, वाराणसी और झालावाड़ शामिल हैं। नृत्य के अलावा उदय शंकर चित्रकला, संगीत, शिल्पकला और फोटोग्राफी में भी महारत रखते थे। शिक्षा उन्होंने अपने गाजीपुर के स्कूल में अपने शिक्षक अंबिकाचरण मुखोपाध्याय से हासिल की थी। नृत्य कला का सारा श्रेय उन्होंने अपनी माँ को दिया। एक साक्षात्कार में अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी ये कला माँ की बदौलत है। बचपन में उनकी माँ उन्हें लड़कियों की तरह कपड़े पहनाती थी, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। वो उन्हें साड़ी और गहने पहनाती थी और संगीत की धुनों पर थिरकना सिखाती और फिर नाचने के लिए भी कहती थी। तब उन्हें जो भी नृत्य करने का मन करता वो कर लेते, पर उन्हें नृत्य करना नहीं आता था, लेकिन वो कर लेते और उन्होंने किया, और इसके लिए वो सदा अपनी माँ को आभारी मानते रहे। इसकी शुरुआत उनकी माँ ने ही कराई।
1: बचपन में त्योहारों के दौरान होने वाले नृत्यों के अलावा लोक नृत्यों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। हालांकि बचपन में उनकी दिलचस्पी मुख्यतः चित्रकला में थी, ये प्रतिभा उनमें इतनी प्रबल थी कि झालावाड़ के महाराजा ने उनके पिता को उदय को सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला दिलाने को मना लिया और यहां से डिप्लोमा कोर्स पूरा करने के बाद 1920 में वे रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला लेने के लिए लंदन चले गए।
0: हाँ, और इसके अलावा उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन और हर नजरिए से पूर्णता मिले, बस इसी पर जोर रहता था। वे जानते थे कि वे अपने दर्शकों में और उत्सुकता कैसे जगा सकते हैं। बहुत कम समय में बेहतरीन नृत्य प्रस्तुत कराने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। विभिन्न भारतीय देवी देवताओं के बारे में उन्होंने ऐसा दृष्टिकोण रखा जिसने एक अमिट छाप छोड़ दी।
1: जिन दर्शकों ने उनके इंद्र, कार्तिकेय और शिव के एकल नृत्य देखे हैं, वे उनके द्वारा रचित कलात्मक और मनमोहक छवियों को लंबे समय तक ज्यों की त्यों अपने मन मस्तिष्क में सजाए रहते थे। मंच पर नृत्य प्रस्तुति के समय उनका शारीरिक सौंदर्य अद्भुत नजर आता था, जो दर्शकों के मन में समा जाता था। वे अपने इस विशिष्ट गुण से दर्शकों पर सदा जादू कर देते थे।
0: जी हाँ, बात आपने बिल्कुल ठीक ही की है। उनमें जो ये दुर्लभ गुण था उसे दोहराया नहीं जा सकता है। बस जिन्होंने उन्हें मंच पर प्रस्तुति देते हुए देखा है, उनके मन में उनकी स्मृति बसी हुई है। सुप्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर की प्रतिभा की और विस्तार से चर्चा करने से पहले हम आपको अब उनके जन्म के बारे में जानकारी दे दें। उदय शंकर का जन्म 8 दिसंबर 1920 राजस्थान के उदयपुर शहर में हुआ था। वैसे तो वे मूलतः नरेल, जो बांग्लादेश में आता है, वहां के एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते थे।
1: उनके पिता का नाम श्याम शंकर चौधरी था। अपने समय के सुप्रसिद्ध वकील थे और राजस्थान में ही झालावाड़ के महाराज के यहाँ काम करते थे। उनके पिता को नवाबों द्वारा हर चौधरी की उपाधि दी गई थी, किंतु उन्होंने हर चौधरी में से हर को हटा दिया। अपने नाम के साथ सिर्फ चौधरी का प्रयोग करना ही पसंद करते थे। उदय शंकर की माँ हेमांगिनी देवी भी एक बंगाली जमींदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। इनके अन्य बच्चों के नाम राजेंद्र शंकर, देवेंद्र शंकर, भूपेंद्र शंकर और रविशंकर थे।
0: श्रोताओं, चित्रकला की प्रतिभा उनमें इतनी प्रबल और विलक्षण थी कि उन्होंने 5 साल का कोर्स 3 साल में ही पूरा कर लिया। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने ही तब उदय को पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में रमने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश संग्रहालय में भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में पढ़ते हुए बिताए गए वो असंख्य घंटे ही थे जो उदय शंकर को नृत्य की ओर वापस ले आए।
1: फिर क्या था, उदय शंकर के मन में भारतीय मूर्तियों की विभिन्न नृत्य मुद्राओं में देवी देवताओं के चित्रों के प्रति विशेष रूप से आकर्षण पैदा हो गया और उन्होंने तब उन मुद्राओं का अनुसरण करना आरंभ किया। हालांकि वे प्रशिक्षित नर्तक नहीं थे, फिर भी वे अपने आप को रोक नहीं पाए। बस फिर तो वो चित्र ही उनके लिए प्रेरणा बन गए और फिर उदय शंकर ने उन चित्रों को नृत्य की गति में ढाल दिया।
0: कॉलेज में पढ़ते हुए ही 1922 में उन्होंने अपना पहला नृत्य प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन लीग ऑफ मर्सी द्वारा आयोजित किया गया, जो महारानी विक्टोरिया के शाही चार्टर द्वारा स्थापित एक ब्रिटिश संस्था थी, और इस नृत्य प्रस्तुति की किंग जॉर्ज पंचम ने भी सराहना की थी। एक और महत्वपूर्ण बात इस कार्यक्रम की ये रही कि इसमें दर्शकों में प्रसिद्ध रूसी बैले नृत्यांगना अन्ना पावलोवा भी मौजूद थी, और उन्होंने उदय शंकर को नृत्य करते देखा तो उन्हें उदय शंकर की नृत्य शैली बहुत पसंद आई, और बाद में अन्ना पावलोवा ने उदय शंकर को कुछ भारतीय नृत्य बनाने की जिम्मेदारी दी। तब उदय शंकर ने अन्ना पावलोवा को राधा कृष्ण और हिंदू विवाह के नृत्य तैयार कर दिए, जो उन्हें बहुत पसंद भी आए।
1: ये दोनों बैले नृत्य जो उदय शंकर ने तैयार किए थे पश्चिम में बहुत पसंद किए गए, क्योंकि तब तक वहाँ के लोगों ने ऐसा पहले कुछ कभी नहीं देखा था। अन्ना पावलोवा के साथ कई नृत्यों की कोरियोग्राफी करने में उदय की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये अन्ना पावलोवा ही थी जिन्होंने उदय शंकर को अपनी भारतीय तकनीक और शैली में सुधार के लिए प्रेरित किया। उदय शंकर ने स्वयं एक साक्षात्कार में कहा कि अन्ना ने मेरी आंखें खोल दी, ऐसा जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पश्चिमी शैली का अनुकरण ना करूं, क्योंकि पश्चिम के लोग नृत्य में वो सब कुछ देखना पसंद करेंगे जो कि भारतीय कला से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है।
0: इस तरह अन्ना पावलोवा के साथ एक साल बिताने के बाद उदय शंकर ने 1924 में पेरिस में अपनी नृत्य मंडली को शुरू तो किया, लेकिन पावलोवा की कंपनी से दूर जाने से उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी, क्योंकि अन्ना पावलोवा के साथ उनकी कंपनी से जुड़ने के लिए मिली सफलता और सार्वजनिक प्रशंसा के साथ पेशेवर और आर्थिक स्थिरता मिली थी, और कंपनी छोड़ने के बाद उदय शंकर बेरोजगार हो गए थे। और जब जीवन में पहली बार बिना किसी संरक्षण के परिस्थितियां बेहद मुश्किल हो गई थी, और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए वो बहुत छोटे छोटे आयोजनों में भी नृत्य के कार्यक्रम देने लगे। एक दो साल इसी तरह जीवन संघर्ष चलता रहा, और यही वो कार्यक्रम और आयोजन थे जहां उदय शंकर ने दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाकर उनसे एक अटूट रिश्ता बनाया।
1: समय निकला और बदला भी, और इसके साथ ही 1926 के आसपास उदय शंकर के लिए और भी चीजें बदलने लगी। उस समय उनके ट्रिप में उनके भाई रविशंकर, देवेंद्र शंकर और उनकी माँ के साथ उनके कुछ दोस्त भी शामिल थे। तब दुनिया भर के तमाम देशों में इस ट्रुप ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, और उदय शंकर ने अपनी अलहदा नृत्य शैली के साथ नए नए प्रयोग किए और अपने नृत्य में पश्चिमी रंगमंचीय तकनीक को अपनाने के लिए मशहूर हो गए।
0: अब देखा जाए तो उदय शंकर के संघर्ष और उपलब्धियों की लंबी दास्तान है। उनके इस काम में कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन खास बात यह रही कि उन्होंने लगातार 13-14 घंटे अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और हालात को सहते हुए मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया, पर स्वयं को टूटने नहीं दिया।
1: और फिर अन्ना पावलोवा के ही ट्रुप के दो पूर्व सदस्यों एडिलेड और सोकी नाम की दो बहनों के साथ काम किया, और कुछ समय बाद उन्होंने पेरिस की पियानो वादिका सिमोनो वाडियर के साथ मिलकर काम किया और सिमकी नाम के साथ नृत्य की दुनिया में अपना धमाल मचाया। कहा जाता है कि सिमकी के साथ तो एक नए युग की ही शुरुआत हुई। तब उदय शंकर ने नए नृत्यों की कोरियोग्राफी शुरू की जिसमें एकल और युगल दोनों ही तरह के नृत्य शामिल थे।
0: और फिर तो उदय शंकर और सिमकी नृत्य में साझेदारी जल्दी बेहतर लोकप्रिय हो गई, और उन्हें बहुत सारे शोज करने के लिए जल्दी जल्दी आमंत्रित भी किया जाने लगा। काम, शोहरत, इज्जत सब कुछ सामने आ गया। उन्हीं दिनों यूरोप के दौरे के दौरान उदय शंकर की मुलाकात स्विस चित्रकार और मूर्तिकार एलिस बोनर से हुई। वे उदय शंकर के नृत्य पर मोहित और प्रभावित हो गईं, और उन्होंने उदय शंकर की नृत्य मुद्राओं की मिट्टी से मॉडल और चित्रों के द्वारा एक श्रृंखला तैयार की।
1: तब तक उदय शंकर सुप्रसिद्ध नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता के रूप में जाने जाते थे। तब उन्हें भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में जाना जाने लगा था। उदय शंकर के भाव और भंगिमाओं को देखकर वो चकित हो गए। उदय शंकर के नृत्य के पीछे उन्होंने भारत के प्राचीन स्वरूप, संस्कृति और मूर्तिकला के भाव को समझा। तब उन्हें लगा कि भारतीय मंदिरों पर बनी मूर्तियां उदय शंकर के इस नृत्य के माध्यम से प्रतिबिंबित हो रही हैं। उनकी उत्सुकता इतनी बड़ी थी कि वे इसे जानने के लिए भारत आईं और उदय शंकर के नृत्य को उन्होंने अजंता एलोरा की गुफाओं, काशी के घाटों और सांस्कृतिक चित्रों में देखा।
0: उन पर आधारित एलिस की कलाकृतियां BHU के भारत कला भवन म्यूजियम की दर्शक दीर्घा में प्रदर्शित हैं, जहां उदय शंकर के नृत्य को और दूसरी भारतीय कलाओं के तालमेल को बताया गया है। उदय शंकर ने एलिस बोनर के साथ 1930 में भारत भ्रमण कर नृत्यों की भाव भंगिमाओं का चित्रांकन किया। एलिस 1931 में ही उदय शंकर के साथ काशी भी आई और तब यहाँ के 80 घाट ने उन्हें फिर वापस कहीं और जाने नहीं दिया।
1: उस समय भारत या बनारस में नृत्य को अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता था। इस कारण उदय शंकर को कहीं से भी कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली। तब एलिस बोनर ने बनारस से यूरोप, अमेरिका आदि देशों में उनके कार्यक्रम तथा वेशभूषाओं की व्यवस्था देखने का जिम्मा उठाया और इस तरह एलिस बोनर और उदय शंकर ने लगभग 30 साल तक एक साथ काम किया। एलिस बोनर भारतीय कला और संस्कृति से प्रभावित होकर भारत तो आई उन्हें देखने ही थी, लेकिन 80 घाट पर जहां वो रहने लगी उस जगह आज एलिस बोनर इंस्टीट्यूट है।
0: और इधर उदय शंकर के संगीत और नृत्य प्रेम से गाजीपुर स्थित बिरनो ब्लॉक नसरतपुर के लोग आज भी शिद्दत से उन्हें याद करते हैं। उनकी यादें आज भी गांव के लोगों के मन में बसी हैं, जो उन्हें याद रखे हैं। नसरतपुर के पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि गांव में उदय शंकर का परिवार बंगाली बाबू के नाम से मशहूर था और पूरा परिवार शुरू से ही व्यवहार कुशल और व्यक्तित्व का धनी था। उनके परिवार के सदस्य सदा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते थे। गांव वासियों के प्रति उनका उदार रवैया ग्रामवासी कभी भुला नहीं पाएंगे।
1: उदय शंकर को आधुनिक भारतीय नृत्य का प्रणेता माना गया है, क्योंकि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सभी आयामों में पश्चिमी रंगमंचीय तकनीक के साथ अपने नए रंग भरकर 1920 से 1930 तक के दशक में उसे यूरोप, अमेरिका सहित दुनिया भर के अनेक देशों में प्रतिष्ठित किया। अपने कुछ मित्रों की सलाह पर वर्ष 1938 में उदय शंकर ने भारत लौटकर हिमालय पर्वत की गोद में बसे प्रकृति की खूबसूरत नेमत से भरपूर अल्मोड़ा शहर को अपनी भावी योजनाओं को अंजाम देने के लिए चुना।
0: ऐसा भी कहा जाता है कि गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रेरणा से उन्होंने अपना स्कूल भारत में संचालित करने का मन बनाया था और इसके लिए वर्ष 1939 में अल्मोड़ा शहर में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर की स्थापना की गई। इस काम में उनके साथ कथकली के प्रख्यात गुरु शंकरन नमूदरी, भरतनाट्यम के कंडप्पा पिल्लई, मणिपुरी के अम्बी सिंह और संगीत के मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खान शामिल थे।
1: और इसमें उनके इस समूह में गुरुदत्त, मैडम सिमकी, अमला, नरेंद्र शर्मा, जोहरा सैगल, लक्ष्मी शंकर, विष्णु रास, मंगेश राव, प्रभात गांगुली, शिशिन भट्टाचार्य, माधवन नायर, कनकलता तथा उनके अपने भाई रविशंकर भी छात्र रूप में शामिल हो गए। लेकिन इतने गुणी व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने के बावजूद ये केंद्र मात्र 4 वर्ष ही अस्तित्व में रहा। उनके अभिनव प्रयोगों के बावजूद उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर धन की कमी के कारण 1942 में बंद हो गया। बड़े भारी मन से उदय शंकर ने अल्मोड़ा छोड़कर वापस जाने का फैसला कर लिया। तब उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर का सारा सामान लंबे समय तक अल्मोड़ा में ही पड़ा रहा।
0: हम यहाँ सामान का जिक्र श्रोताओं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें उदय शंकर के माने गए कथकली नृत्य गुरु पंडित शंकरन नंबूदरी का दिया हुआ उपहार भी शामिल है, जिसके बारे में उदय शंकर का कहना था कि इससे उनका अंतरंग जुड़ाव है। तो हुआ यूं कि अल्मोड़ा में बाकी पड़े सारे सामान के साथ उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर में होने वाले कार्यक्रम से पहले एक विशाल और भव्य धातु निर्मित पानस यानी कि ऊंचा दीपक, जिसे हमारे यहाँ समय कहा जाता है और केरला में इसे पानस कहा जाता है, उसे प्रज्वलित किया जाता है। तो वो पानस अर्थात समय भी था और इस पानस अर्थात समय को भी उसी सामान के साथ रखा गया था जिसकी नीलामी होनी थी। पीतल धातु से बने 1 क्विंटल वजन से भी ज्यादा वजनी इस पानस को उदय शंकर को उनके गुरु पंडित नंबूदरी ने उपहार में दिया था।
1: उदय शंकर ने अपने इन गुरु से केरल जाकर उनके गांव में ही रह रह कर नृत्य की भंगिमाओं एवं बारीकियों को सीखा था। ये पानस यानी समय 1 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसमें दीपक जलाने के लिए लगभग 2 लीटर तेल की आवश्यकता होती है और एक साथ 100 बत्तियां जलती हैं और बत्तियां जलाने वाले हिस्से की परिधि भी लगभग 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इस पानस को 2 भागों में खोला जा सकता है और इस प्रयोग से पहले जोड़कर इसे पूरा किया जाता है, तब इसका उपयोग हो पाता है।
0: श्रोताओं, किसी विशेष अवसर पर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से पहले इसके सभी हिस्सों को खोलकर अलग कर लिया जा सकता है और दीप प्रज्वलन के लिए उसे पुनः जोड़ा जाता है। ये इतना भारी है कि इसकी ऊपरी चक्कर को खोलने के लिए 3-4 व्यक्ति पकड़कर घुमाते हैं, तब कहीं ये खुल पाता है। इस पानस की नीलामी के समय उदय शंकर मन से बहुत द्रवित थे। वे दुखी मन से बोले थे कि चाहे इस पानस का मूल्य कम भी मिले, लेकिन ये पानस केवल उस व्यक्ति को ही मिले जो कला का पारखी हो और इस अमूल्य धरोहर को संजो कर रख सके, क्योंकि इससे मेरा अंतरंग जुड़ाव है।
1: उदय शंकर की इच्छा के अनुसार ये पानस हरिकिशन लाल शाह गंगोला और उनके पुत्र जगदीश लाल शाह गंगोला ने खरीदा, जो गंगोला परिवार की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। यहाँ श्रोताओं, हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि इस पानस को 1943-44 में नीलामी के बाद पहली बार 1954 में अल्मोड़ा में आयोजित शरद उत्सव में प्रज्वलित किया गया था।
0: जी, और तब से अल्मोड़ा नगर में आयोजित विभिन्न समारोहों में इस पानस अर्थात समय के दीप प्रज्वलित कर अनेक शख्सियतों ने यहाँ आयोजित कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया है, जिनमें प्रमुख है मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खान, प्रख्यात सितार वादक और उदय शंकर के छोटे भाई भारत रत्न पंडित रविशंकर, उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी, जोरा सेगल, नृत्यांगना सोनल मानसिंह और उदय शंकर के पुत्र आनंद शंकर। गंगोला परिवार के सदस्यों का कहना है कि उदय शंकर जैसे कलाकार का ये पानस समय वर्तमान में भी अल्मोड़ा में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उदय शंकर के योगदान का गवाह है और आज भी ये रंगकर्मी और संस्कृति प्रेमियों के लिए नृत्य सम्राट उदय शंकर के महान योगदान का एक प्रेरक स्तंभ बना हुआ है।
1: अब बात करें उदय शंकर के निजी जीवन की, तो उन्होंने अपने मित्र अक्षय नंदी की छोटी बहन और उनके ट्रुप में काम करने वाली 11 वर्ष छोटी खूबसूरत नृत्यांगना अमला नंदी से 1939 8 मार्च को विवाह कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अमला ने 1942 में उनके पुत्र आनंद शंकर को जन्म दिया, जो आगे चलकर एक गायक और संगीतकार बने। जीवन में चले उतार चढ़ाव, ऊंच नीच को सुलझाते हुए जीवन की डगर पर चलते हुए अमला ने उदय शंकर की दूसरी संतान खूबसूरत पुत्री ममता शंकर को जन्म दिया, जो एक बेहतरीन अभिनेत्री, नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं और कोलकाता में उदयन डांस कंपनी भी चलाती हैं।
0: और चलिए अब बात करते हैं भारतीय आधुनिक नृत्य कला के जन्मदाता उदय शंकर के ड्रीम प्रोजेक्ट की। जी हाँ, उनका ये प्रोजेक्ट था नृत्य पर एक फिल्म निर्माण करने का। वो चाहते थे कि उनकी कला का प्रचार प्रसार हो, इसलिए एक संस्थान की स्थापना भी वो करना चाहते थे। इधर उनकी आयु भी बढ़ती जा रही थी, वो सोचते थे कि उनका नृत्य बना रहे, बचा रहे, बसा रहे। और सन 1965 में एक ऐसा संस्थान बनाया गया बंगाल के कोलकाता शहर में। इस संस्थान में अमला शंकर को निर्देशक बनाया गया।
1: अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं उदय शंकर के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी उनकी बनाई नृत्य विधा को संजोए रखने के लिए बनाई गई फिल्म कल्पना की। ये काम जोर शोर से चलने लगा। फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट तैयार की गई। इस फिल्म का लेखन, निर्देशन, नृत्य निर्देशन स्वयं उदय शंकर ने किया और फिल्म में हीरो की भूमिका उदय शंकर और हीरोइन की भूमिका अमला शंकर ने निभाई। फिल्म की पटकथा अमृतलाल नागर ने लिखी और गीत सुमित्रा नंदन पंत और भील लोकगीत देवीलाल समर के थे और संगीत विष्णुदास शिराली ने रचा था।
0: श्रोता, 1948 में बनी फिल्म कल्पना एक नृत्य प्रधान फिल्म थी जो एक युवा नर्तक के नृत्य अकादमी स्थापित करने के सपने के इर्द गिर्द घूमती है। ये पहली फिल्म थी जिसमें एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी को प्रमुख भूमिका में प्रस्तुत किया गया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक नृत्य बैले और एक फैंटेसी के रूप में फिल्माया गया था। यह फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप रही थी, लेकिन 2008 में गोवा शहर में इसे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के खजाने के अनुभाग के एक भाग के रूप में अभिलेखागार में अन्य दुर्लभ रत्नों के साथ दिखाया गया था।
1: उदय शंकर को अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी। हुआ ये कि फिल्म बनना शुरू हुई तो पैसों की कमी के कारण उदय शंकर को अपना अल्मोड़ा वाला उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर बंद कर देना पड़ा, जिसका उदय शंकर को बहुत गहरा धक्का लगा। और तब उनकी पत्नी अमला शंकर ने ही बड़े धैर्य और साहस का परिचय देते हुए अपने पति उदय शंकर को संभाला और किसी तरह इस फिल्म को पूरा करने में सहयोग दिया।
0: लेकिन अमला शंकर और उदय शंकर की सारी मेहनत, हिम्मत और धैर्य सब जवाब दे गए जब रिलीज के बाद फिल्म कल्पना पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि अब इस फिल्म की हिफाजत किसी बेशकीमती नगीने की तरह की जाती है और संघ 2010 में मार्टिन स्कॉर्सेसे, जो कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं, उनकी कंपनी वर्ल्ड सिनेमा फाउंडेशन ने इस फिल्म के डिजिटल संरक्षण का बीड़ा उठाया है। वैसे ये बात बिल्कुल सही है, उदय शंकर द्वारा बनाई गई कल्पना नामक फिल्म भारतीय सिनेमा की अनोखी, अनूठी प्रयोगात्मक कृति मानी जाती है। इस फिल्म में नृत्य कला, दृश्य कला और फिल्मांकन को एक साथ पिरोकर उदय शंकर ने दर्शकों को एक नई राह दिखाई है।
1: बिल्कुल, इसके साथ ही रचनात्मकता और भारतीय नृत्य कला में अमूल योगदान के लिए उदय शंकर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1960 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और उसके बाद सन 1962 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी नवाजा गया। और पुरस्कारों का सिलसिला यहीं नहीं थमा, सन 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण यानी देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया और सन 1975 में उन्हें देशी कोतम नामक विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया।
0: हिंदी भाषा के प्रमुख साहित्यकार, आलोचक, संपादक, संस्कृति कर्मी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अशोक वाजपेयी का कहना है कि उदय शंकर का नृत्य कम से कम तीन विश्वासों से प्रेरित नृत्य था। एक, शास्त्रीयता में विश्वास, दो, आधुनिकता में विश्वास और तीसरा, आत्मविश्वास। जिन कलाकारों ने भारतीय नृत्य में पश्चिमी रुचि जगाई, उनमें उदय शंकर का नाम पहली पंक्ति में आता है। हम में से वे सभी जो भारतीय नृत्य के इतिहास और उसके आधुनिक काल से परिचित हैं, वो ये भी जानते हैं कि उदय शंकर ने एक तरह की शास्त्रीय आधुनिकता विकसित करने का प्रयास किया था।
1: एक नर्तक और नृत्य चिंतक के रूप में वे एक ओर तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का वैभव, सुषमा, ऊर्जा, लालित्य पश्चिम के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, जो तब तक हमारी नृत्य परंपरा से अनभिज्ञ था। दूसरी ओर वे इस परंपरा में प्रयोग की संभावना और उसमें आधुनिक नवाचार की तलाश करना चाह रहे थे। पश्चिम में उस समय आधुनिकता के अंतर्गत उनकी अपनी परंपरा लगातार प्रश्नांकित की जा रही थी, कई बार उसे हाशिए पर डालकर कई कल्पनाशील और दुस्साहसी सृजनात्मकता का बोलबाला था। कलाओं में आख्यान को अपदस्थ कर अमूर्तन पर आग्रह बढ़ रहा था। उदय शंकर इन वृत्तियों को भी किसी हद तक अपने नृत्य में समाहित और संबोधित करना चाह रहे थे। वे भारतीय नृत्य के पारंपरिक रूपकारों को पुनः संयोजित कर एक नए किस्म के समावेशी और साहसिक शास्त्रीयता विकसित करना चाहते थे।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक नर्तक और नृत्य चिंतक के रूप में वे एक ओर तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का वैभव सबके सामने रखना चाहते थे, जो अब तक हमारी नृत्य परंपरा से अनभिज्ञ था, तो दूसरी ओर वे इस परंपरा में प्रयोग की संभावना और उसमें आधुनिक नवाचार की तलाश करना चाह रहे थे। श्रोताओं, उस समय जिन कलाकारों ने भारतीय नृत्य में पश्चिमी रुचि जगाई, उनमें उदय शंकर का नाम पहली पंक्ति में आता है। उन्हें किसी भी तरह का शासकीय या सार्वजनिक समर्थन भी प्राप्त नहीं था। उस समय उनके वित्तीय साधन अल्प और सीमित थे। ये बात तो है, क्योंकि वो नृत्य के किसी पारंपरिक परिवार से नहीं आते थे, इसलिए उन्हें किसी भी तरह का सामूहिक समर्थन भी नहीं मिला था। उनका प्रयत्न सदा एकांतिक रहा।
1: उनका दुस्साहस, उनकी नृत्य परिकल्पना और नृत्य के प्रति उनकी जिजीविषा का ही एक फल था कि इसी काम से उनकी सार्थकता प्रकट होती है। उस समय उनके अपने व्यक्तित्व का बड़ा मोहक आकर्षण था और उनके इसी व्यक्तित्व की सफलता और सार्थकता में बड़ी भूमिका रही। उदय शंकर ने विभिन्न शैलियों के नृत्य से उनके कई तत्वों को जोड़कर अपनी एक विशिष्ट और लगभग अद्वितीय शैली बनाई थी। यदि इन शैलियों की परंपराओं में हमेशा व्यक्तित्व का भी महत्व होता, उसका केंद्र बिंदु भी परंपरा के अंदर ही लेता है, बाहर नहीं।
0: पर उदय शंकर किसी पारंपरिक शैली के नृत्यकार नहीं बने। हालांकि नृत्य की प्रत्येक पारंपरिक शैली से उन्होंने कुछ न कुछ जरूर लिया, फिर चाहे वो कथक हो, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथकली, कोई भी नृत्य विधा क्यों ना हो, नृत्य की हर शैली का प्रभाव उनके नृत्य में स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन फिर भी किसी एक शैली में समाहित होता नजर नहीं आता। पर यह बात कहना गलत नहीं होगा कि उनकी थोड़ी बहुत परंपरा भी बनी, जिसमें नरेंद्र शर्मा और अमला शंकर, जो उनकी पत्नी भी थी, उन जैसे महत्वपूर्ण नर्तक भी हुए। पर कुल मिलाकर यह शैली बहुत आगे नहीं चल पाई। इसमें वे नृत्य में नवाचार के प्रतीक बने, मान्य और लोकप्रिय भी हुए, और इन्हीं नवाचारों के क्षेत्र में शास्त्रीयता में उदय शंकर से सभी ने प्रेरणा ली है।
1: नवाचार में दुस्साहस क्या और कैसे होता है, ये सब उदय शंकर के नृत्य को देखकर ही हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्योंकि उदय शंकर ने अपने नृत्य में जो आत्मविश्वास दिया, अपनी नृत्य बैले शैली में आधुनिक शैली में जो प्रयोग किए, उन्हें भी उदय शंकर के पथ प्रदर्शक अपने नृत्य प्रयोग के विस्तार के रूप में जानते हैं। क्योंकि उदय शंकर ने विभिन्न शैलियों के बीच लगातार संवाद का जो सिलसिला शुरू किया था, वो भी किसी न किसी रूप में चलता रहा। उदय शंकर को मंच पर नृत्य करते हुए देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। सुप्रसिद्ध रूसी बैले नर्तकी अन्ना पावलोवा ने जब उदय शंकर को पहली बार मंच पर नृत्य करते हुए देखा था, तो बोली थी कि लगा जैसे अजंता में चिन्हित किसी देवता ने मानव शरीर धारण कर लिया है।
0: इसी तरह इटली की मूर्तिकार एलिस बोनर ने ज्यूरिख में उनका नृत्य देखकर कहा कि उदय शंकर के शरीर में चित्र और पत्थर की प्रतिमाओं की थिरकन है। इसी तरह उदय शंकर की उंगलियां, हथेलियां, आंखें और देह की भंगिमाओं का अनूठा मेल देखकर ही उनकी पत्नी अमला ने उदय शंकर पर मोहित होकर उनसे विवाह किया था। वे लिखती हैं, शिव तांडव तथा अग्नि पूजा देखकर मैं पागल हो गई कि कोई इतना सुंदर नृत्य कैसे कर सकता है। ये बात मैंने पहली बार समझी। उदय शंकर के द्वारा बनाई गई फिल्म कल्पना, जो 154 मिनट की थी, दृश्यों की गतिशीलता में इस फिल्म में दृश्य और ध्वनि का अद्भुत मेल दिखाई और सुनाई देता है। इस फिल्म में लगभग 200 वाद्यों का प्रयोग किया गया है। लोगों ने इस फिल्म में प्रयुक्त तबला सुना तो दंग रह गए कि एक ही वाद्य यंत्र से कोई इतनी आवाजें कैसे निकाल सकता है भला।
1: इसी तरह एक बार पेरिस से जब उदय शंकर भारत आए, तो मंदिरों में घूमते हुए वो केरल में कथकली नृत्य को देख के भौचक्के रह गए। उन्होंने लिखा कि बिना जाने बिना देखे मैं अपने नृत्य में ये लाता रहा हूँ। उदय शंकर का नृत्य ऐसा ही था। नृत्य पर प्रयोग की गई भारतीय संस्कृति को समेटे उनकी ये दृष्टि सदा जीवंत रहेगी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को आधुनिक जामा पहनाकर भारतीय संस्कृति को विश्व के हर कोने तक पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया है।
0: जी हाँ, और इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश संग्रहालय में राजपूत चित्रकला और मुगल चित्रकला की शैलियों का भी गंभीर अध्ययन किया और भारतीय नृत्य को एक समकालीन रूप देकर विचार न केवल मजबूत हुआ, बल्कि उन्होंने ये कर दिखाया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वे भारतीय आधुनिक नृत्य के शिल्पी थे। यहाँ ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कला की दुनिया में ऐसे कई नाम हैं जो समय की सीमाओं को पार कर अमरत्व पा गए हैं। उदय शंकर भी उन्हीं महान हस्तियों में से एक नाम है, जिन्होंने नृत्य को केवल एक प्रदर्शन की कला नहीं बल्कि सांस्कृतिक सेतु का रूप दिया। जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल परंपराओं तक सीमित था, उस दौर में उदय शंकर ने उसे विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई। 26 सितंबर 1977 को कोलकाता में वे हमारे बीच से सदा सदा के लिए विदा हो गए। कोलकाता में उदय शंकर सेंटर ऑफ डांस आज भी उनकी समूह नृत्य परंपरा को संरक्षित और जीवित रखे हुए है, जिन्होंने कला को सीमाओं से मुक्त कर दिया।
1: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम कला कल्लोलिनी में अभी आपने सुना प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर जी के बारे में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इजाजत दीजिए, मनीषा
0: और संदीप शर्मा। लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का और लेखन प्रमिला मुंशी दिवाकर का। तो फिर मिलेंगे कला कल्लोलिनी में एक और कला मनीषी के साथ, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वक्तव्य वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी का।
1: हम अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं पहचानते, नर्मदा आपसे कहती है इसे पहचानो, ये बहुत कीमती है। वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो जो मूर्त है, वो जो अमूर्त है, इसे पहचान सको तो नर्मदा का अर्थ ही होता है सुख देने वाली, भारत का अर्थ ही होता है प्रकाशित करने वाला। तो ये प्रकाश तुम्हें बहुत सुख देगा, नर्मदा का यही संदेश है और यही असल में नर्मदा का सांस्कृतिक परिदृश्य है।
0: ये वक्तव्य हुआ मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित राष्ट्रीय विमर्श में।

0: अशोक जमनानी जी, आपसे आग्रह करूंगी कृपया आए, नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में इस पर प्रकाश डालें।
1: नमस्कार, नर्मदे हर। मुझे लगता है कि मैं बहुत थोड़ी सी बातें कर पाऊंगा, क्योंकि नर्मदा के सांस्कृतिक परिदृश्य पर बोलना हो तो हम बहुत पीछे जाना होता है, और इतनी बात

0: भारत में हम संस्कृति की बात इसलिए इतनी करते हैं क्योंकि संस्कृति कल्चर नहीं है। संस्कृति कल्चर से कुछ अलग चीज़ है। हम उसे उसके पर्यायवाची रूप में या उसके अंग्रेजी अर्थ में कल्चर कह देते हैं, लेकिन संस्कृति कल्चर नहीं है। ये कल्चर से कैसे अलग है? पश्चिम की जो समाजशास्त्रीय विचारधारा है वो दो बातें कहती हैं, एक सिविलाइजेशन यानी सभ्यता और एक कल्चर यानी संस्कृति। वहाँ होता यह है कि पहले सिविलाइजेशन हुआ पश्चिम में, फिर कल्चर आया। हमारी सोच थोड़ी अलग है, उसका एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अक्सर ये बात जब संस्कृति पर बात कहनी होती है, यहाँ भोपाल के पास में एक जगह है भीमबेटका, आप सबने बहुत लोगों ने देखा सुना होगा उसके बारे में। भीमबेटका में हजारों साल पुराने चित्र हैं। जिन्होंने इसकी खोज की उनका नाम वाकणकर जी था। वाकणकर जी आज से कई दशक पहले उज्जैन विश्वविद्यालय में नौकरी किया करते थे, और वे उज्जैन से, तब यहाँ भोपाल के आसपास ही मंडीदीप भी नहीं बना था और बहुत घने जंगल थे, थोड़ा सा बस भोपाल से आगे बढ़ते थे और बहुत घने जंगल थे, वहाँ भीमबेटका है अब्दुल्लागंज से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वे हर शुक्रवार को अपनी ड्यूटी पूरी करके रात में यहाँ आ जाते थे। रात भर उस घने जंगल में जहाँ बहुत खतरनाक जीव जंतु हैं वहाँ अकेले रहा करते थे। शनिवार की सुबह उठ करके सारे डॉक्यूमेंटेशन, जो आज हम बात करें, सारा डॉक्यूमेंटेशन किया करते थे, फोटोग्राफ लिया करते थे, चित्र बनाया करते थे और सारी सूचना एकत्रित करके लिखते जाते थे, अपना रिसर्च कंप्लीट कर रहे थे। फिर शनिवार को वही वैसी तरह से रात गुजारते थे और इतवार को उठ करके काम करते थे, फिर रविवार की रात को लौट कर उज्जैन चले जाते थे। और आप सबको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये काम उन्होंने लगभग 14-15 साल तक किया। 14-15 साल तक लोग उनसे पूछते थे कि आखिर आप ये ढूंढ क्या रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इन चित्रों का इतिहास ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चित्रों का इतिहास, उस समय ये जो कार्बन डेटिंग पद्धति है ये विदेशों में थी, हमारे यहाँ नहीं। अब तो बहुत कार्बन डेटिंग आ जाने से बहुत आसान हो गया कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। तो उन्होंने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये चित्र जो हैं 5000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो सबने उनसे कहा कि इससे क्या क्या सिद्ध होगा, मान लीजिए ये सिद्ध भी हो गया कि ये 5000 साल पुराने हैं, और अब तो ये सिद्ध हो गया कि वे चित्र 10000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, उसमें कुछ चित्र तो ऐसे भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये चित्र 5000 साल पुराने हैं या 4000 साल पुराने हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ उस बात की घोषणा है। उन्होंने कहा कि मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि जब मनुष्य ने खाना बनाना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने कपड़े पहनना नहीं सीखा था, तब मनुष्य ने पेंटिंग करना सीख लिया था, क्योंकि ये देश वैसा देश है कि जहाँ सिविलाइजेशन से पहले कल्चर आया है, सभ्यता से पहले संस्कृति आई है। तो उन्होंने, कितनी अद्भुत बात है, उन्होंने और आखिर में ये सिद्ध हुआ कि जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था तब वो पेंटिंग करना सीख गया था, गाना गाना सीख गया था। इस देश का जो विचार है जिसे हम भारत कहते हैं, भारत ये कहता है कि सिविलाइजेशन के आने से पहले कल्चर आता है, सभ्यता के आने से पहले संस्कृति आती है। और जब हम नर्मदा की संस्कृति की बात करते हैं तो अजीब बात यह है कि नर्मदा जब इस धरती पर थी तब अफ्रीका से कुछ टुकड़े टूट रहे थे और इस धरती पर महाद्वीपों का निर्माण हो रहा था। अफ्रीका का एक टुकड़ा टूटा, वो आकर वहाँ जुड़ गया जहाँ नर्मदा बह रही थी, और उस समय उस टुकड़े के आकर के भारत से जुड़ने से इतनी जोर का घर्षण हुआ कि एक जगह धरती ऊपर उठ गई, और जहाँ धरती ऊपर उठ गई वहाँ आज हिमालय है। तो नर्मदा तब भी थी जब इस दुनिया में महाद्वीप बन रहे थे इस धरती पर, और नर्मदा ने हिमालय को जन्म लेते हुए देखा है। सोचिए नर्मदा कितनी पुरानी है। और नर्मदा की संस्कृति की बात करेंगे तो हमें कहाँ जाना होगा, करोड़ों साल पीछे जाना होगा जहाँ से हम नर्मदा की संस्कृति की शुरुआत करेंगे। तो मैं 15 मिनट में आपको क्या बताऊँगा कि हम नर्मदा के समय मैं आपके सामने क्या सांस्कृतिक परिदृश्य रखूँगा। दो बातें कहनी हैं, उसके बाद कविता सुना करके समाप्त कर दूंगा। संस्कृति का अर्थ भारत में भिन्न इस तरह से है, कई बार पुरानी चीज़ों को लोग संस्कृति समझ लेते हैं। भारत ने इसे एक नया अर्थ दिया। भारत ने कहा जो अतीत में है वह सब संस्कृति नहीं है, संस्कृति वह है जो अतीत से आती है, वर्तमान में होती है और भविष्य को जाती है। कि निरंतर निरंतर अपने आप में से एक छन्नी लगाती रहती है। लगता है कि अभी काल, इस काल में अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, इसे छोड़ दो, कि वर्तमान तक आती है, वर्तमान में कुछ जोड़ती है इसे, इसे लगता है कि इसका भविष्य में महत्व है। इसलिए भारत की संस्कृति नदी बनती है, भारत की संस्कृति नर्मदा बनती है। इसलिए बनती है क्योंकि इसमें लगातार प्रवाह है। अभी आप बात कर रहे थे, मैं वर्तमान की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैडम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया 64 योगिनी मंदिर का। मैंने एक उपन्यास लिखा है बूढ़ी डायरी, वो इसी मंदिर पर केंद्रित है। और इस उपन्यास को जब मैं लिख रहा था, हमारा वर्तमान संस्कृति के प्रति कितनी उदासीनता का समय है, मैं आप युवा बैठे इसलिए कहना चाहता हूँ, और नर्मदा समग्र जो काम कर रहा है इसकी क्या ज़रूरत है इसलिए कहना चाहता हूँ। अभी जो आप, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पर बात करूँगा, लेकिन वो चित्र, ये सारी चीज़ें देख करके मुझे लगा कि इस पर बात करना ज़रूरी है। सर, जब मैं बूढ़ी डायरी उपन्यास लिख रहा था और मैं पहली बार तेवर गया, तो मुझे पता चला कि एक कल्चरी राजवंश था। इस कल्चरी राजवंश ने संस्कृति के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया। भारत में शायद सबसे, हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, अंग्रेजों की बात करते हैं, लेकिन 1000 साल से भी ज़्यादा कल्चरी राजवंश ने भारत के अलग अलग हिस्सों में राज्य की शासन किया, और ये भारत का सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था। इतिहास की किताबों में इसके ऊपर एक पैराग्राफ मिलता है, कोई चैप्टर तक नहीं है। ये इतना महत्वपूर्ण समय राजवंश था, लेकिन जो अच्छी बात थी कि इसका कला के प्रति और संस्कृति के प्रति बड़ा गहरा लगाव था। कहते हैं कि जब कल्चरी राजवंश की जो राजधानी थी, जैसे जिसका नाम तब त्रिपुरी था, तब वहाँ पर दिन रात शिल्पकार इतना काम किया करते थे कि आप अगर 10 कोस दूर हों तब भी उनकी छेनी हथौड़ी की आवाज़ सुनाई दिया करती थी, इतनी मूर्तियाँ बन रही होती थी। तो इतना उनका कला और संस्कृति से लगाव था। ये राजवंश लगभग समाप्त हो रहा था। ये जो 64 योगिनी का मंदिर है, उस समय एक रानी थी, उनका नाम था अल्हण देवी। वो लगभग लगभग कल्चरी वंश के जो अंतिम राजा थे, उस राजवंश की अंतिम रानी है। उनके आचार्य थे रुद्र राशि, जो बहुत बड़े तांत्रिक थे। अब रानी की चिंता ये थी कि राज्य कैसे बचेगा, और आचार्य की चिंता ये थी कि विद्या कैसे बचेगी। दोनों की चिंताएं अलग अलग थी, लेकिन दोनों की मुलाकात हुई तो रानी ने अपने गुरु से कहा, अपने आचार्य से कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि राज्य बच जाए, और आचार्य की चिंता ये थी, रानी से उन्होंने कहा कुछ ऐसा कीजिए कि ये विद्या बच जाए। तो दोनों ने मिलकर के एक काम किया, राजवंश ने और गुरुकुल ने मिलकर के एक काम किया। उन्होंने कहा कि एक मंदिर बनाते हैं। गुरु ने कहा कि मैं साधना करूंगा, हो सकता है राज्य बच जाए, लेकिन आचार्य के मन में जो बड़ी बात थी कि ये विद्या बच जाए। तो उन्होंने ये जो 64 योगिनी मंदिर, जिसे अभी 81 योगिनियों का मंदिर कहा जा रहा है, ये 64 योगिनी मंदिर असल में एक किस्म से उस तरह के, उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे उनको बुलाया, और एक किस्म की जो पूरी विद्या थी उसकी कोडिंग इन प्रतिमाओं में की गई। आप समझ रहे, पत्थर की प्रतिमाओं में उस पूरी, जो इसे कहते हैं योगिनी कोल संप्रदाय, ये तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और बहुत गहरी विद्या है। तो ऐसे योगिनी कोल संप्रदाय की उन्होंने पूरी कोडिंग उन कलाकारों से, उन शिल्पकारों से, उन प्रतिमाओं में करवाई। एक एक प्रतिमा में, और इन 64 प्रतिमाओं को या 81 प्रतिमाओं को मिला दिया जाए, और अगर इनको, इनके जो हिस्से गायब हो चुके हैं, अगर उन हिस्सों को हम फिर से ले लें, तो पूरा का पूरा योगिनी कोल संप्रदाय हमारे सामने ऐसे खुल करके आ जाएगा, जैसे हम कंप्यूटर में डिकोड कर देते ना, ऐसे पूरा का पूरी ये विद्या डिकोड हो जाएगी। आप सोचिए, एक आचार्य क्या कर रहा था, रानी की चिंता थी राज्य बचे, आचार्य की चिंता थी या गुरुकुल की चिंता थी विद्या बचे, वे दोनों मिलकर के उन्होंने कोशिश की, राज्य भी नहीं बचा, विद्या भी नहीं बची, क्यों नहीं बची। मैं जब ये उपन्यास लिखने के लिए त्रिपुरी गया, उसका नाम है तेवर अब वर्तमान में, तो राज्य नहीं बचा। जब आक्रमण अधिक होने लगे तो वहाँ लाखों करोड़ों प्रतिमाएँ थी। सब ने सोचा कि ये आएंगे और आक्रांता आएंगे और प्रतिमाओं को तोड़ेंगे, तो हर खेत में गड्ढे खोदे गए और उन लाखों करोड़ों प्रतिमाओं को उन गड्ढों में दबा दिया गया। और उसके बाद ये हुआ कि जब मैं गया वहाँ, तो मैंने तेवर में जाकर के जो पहला दृश्य देखा, वहाँ कोई भी आदमी, ये आपको कोई 50 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2006 में मैं उपन्यास लिख रहा था, और जब मैं तेवर में गया, जो मैंने पहला दृश्य देखा, वहाँ हर खेत में से मूर्तियाँ निकलती हैं, हर खेत में से अब भी निकलती हैं, अगर हम अपनी संस्कृति को जानते और समझते कि हमारी संस्कृति का मूल्य क्या है। हम अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं पहचानते। धर्मदा आपसे कहती है, इसे पहचानो, ये बहुत कीमती है। वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो जो मूर्त है, वो जो अमूर्त है, इसे पहचान सको तो नर्मदा का अर्थ ही होता है सुख देने वाली, भारत का अर्थ ही होता है प्रकाशित करने वाला। तो ये प्रकाश तुम्हें बहुत सुख देगा, नर्मदा का यही संदेश है और यही असल में नर्मदा का सांस्कृतिक परिदृश्य है। तो अब मैं एक अपनी कविता सुना करके अपनी बात समाप्त करूँगा। मुझे पहले आदेश दे दिया गया था कि अंत में आप अपनी कविता सुना दीजिएगा, इसलिए सुना रहा हूँ। नहीं तो क्या होता है, जो कवि होते हैं उनको जैसे ही मंच और श्रोता मिल जाते हैं वो मौका ढूंढने लगते हैं कि कविता सुना दो। मैंने मुझे आदेश दिया गया था इसलिए सुना रहा हूँ। इस कविता के तीन हिस्से हैं। नर्मदा कविता का शीर्षक है, एक जो वर्तमान की पीड़ा है वह है, और दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है, अंत में प्रार्थना है। नर्मदा का जब जन्म हुआ तो भगवान शंकर के माथे से पसीने की एक बूंद गिरी और नर्मदा बन गई। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि तुम कल्प में भी नष्ट नहीं होगी। जब हर कल्प में प्रलय होता है, प्राकृत प्रलय होता है। पहले हिस्से में नर्मदा का वर्तमान से जुड़ी पीड़ा है, दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है और अंत में प्रार्थना है कि बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। इसमें एक शब्द आएगा एकार्णव, प्रलय में सारे समुद्र, जो हमारा साइंस कहता है कि प्रलय में ये होगा कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी, सब कुछ जलने लगेगा और बाद में सारे समुद्र, इतना पानी बढ़ जाएगा ग्लेशियर्स के कारण कि सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएंगे। उसके लिए उन्होंने दिया एकार्णव शब्द, यानी सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएं। और आप कितने आश्चर्य की बात है, जो साइंस आज कहता है कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी फिर सारे समुद्र मिल जाएंगे, हमारे पुराण भी यही कहते हैं। वो कहते हैं सामवर तक अग्नि होगी, सब कुछ जलने लगेगा, फिर सारे समुद्र मिलकर के एकार्णव हो जाएंगे और यही प्रलय होगा। तो साइंस और पुराण कोई अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। तो बहु निरंतर बहु नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। सृष्टि के उत्थान पतन की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा। तपो भूमि है तट तेरे, तपो भूमि है तट तेरे, तपो भूमि है तट तेरे, पर तप के सांचे कौन ढलेंगे। ना जाने हैं कौन कौन जो तेरे तट पर दाव चलेंगे। संस्कृतियों के अर्थ व्यर्थ हैं, कहां हृदय ये जहां पलेंगे। जो तेरा अभिषेक करेंगे हाथ वही दिन रात छलेंगे। तो सहो निरंतर सहो नर्मदा, सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में। सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में। पाप पुण्य के भेद अभेद की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा। और यह प्रलय का वर्णन है कि काल प्रलय घनघोर गहन है, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग्दिगंत तक घोर गहन, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग्दिगंत तक घोर गहन। लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन। काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग्दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन। दग्ध दग्ध दिग दिग्दिगंत है, दिग्दिगंत दिग दिग्दिगंत दिग दिग्दिगंत दिग दिग्दिगंत है, काल प्रलय घनघोर गहन, दिग्दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन। दग्ध अंत बस अंत अंत। तो रहो न तब भी, रहो न तब भी, रहो न तब भी, रहो नर्मदा। प्रलय नहीं बाधा प्रवाह में। दृश्य अदृश्य के लोप अलोप की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा। और अंत में प्रार्थना है, हे शुभांग देही शुभम करोति इदं वरेण्य पंथ धर्मदा। हे शुभांग देही शुभम करोति इदं वरेण्य पंथ धर्मदा। शुभम वरेण्य सदा सर्वदा, नर्मदाति पुण्य नर्मदा। हरिनिनाद शम शम निनाद, शंभू निनाद जलधार सर्वदा। शिव स्थापन हृदय हृदय, हर हर हर हर मर मात नर्मदा। कहो मंत्र शिव, कहो मंत्र शिव, कहो मंत्र शिव, कहो नर्मदा, काल नहीं बाधा प्रवाह में, मानवता के अस्त उदय की चिर साक्षिणी शेष रहे, बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, नर्मदा नर्मदा नर्मदा। बहुत
1: शुक्रिया। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी का वक्तव्य, विषय था नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक गई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आप समय मिला सकते हैं, दिन के ठीक 10 बजे हैं।

परिक्रमा कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनते हैं भोपाल शहर में चल रही साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी और आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं जनजातीय संग्रहालय, जहां पारंपरिक और रंग बिरंगी वेशभूषा और ढोल की थाप थी, मधुर संगीत के बीच उत्साह के साथ थिरकते हुए कदम थे और ये मौका था संभावना श्रृंखला के तहत लोक राय नृत्य की प्रस्तुति का। ट्रैवल म्यूजियम में आयोजन हुआ बुंदेलखंड के राय नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति का। राय नृत्य बुंदेलखंड अंचल की शौर्य और श्रृंगार परंपरा का प्रतीक है। इस लोक नृत्य में एक तरफ शारीरिक चपलता, तीव्र वेग और लयात्मक मुद्राएं देखने को मिलती हैं, दूसरी तरफ लोक कविता के जरिए श्रृंगार का सुंदर समायोजन होता है। बुंदेलखंडी संस्कृति में इसे केवल मंची नृत्य नहीं माना जाता, बल्कि बच्चे के जन्म, शादी विवाह और मनौती पूरी होने के अवसर पर इसका आयोजन बेहद शुभ और प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जाता है। संभावना गतिविधि का आयोजन प्रत्येक रविवार को किया जाता है। जहाँ पर लोकांचलों, सात प्रमुख जनजातियों और देश के अन्य राज्यों की समृद्ध कला परंपराओं से जोड़ना और उन्हें करीब समझ से समझने का अवसर प्रदान करना है आम जनता को। आइए अब चलते हैं अध्ययन भवन में। रिश्तों के बीच खट्टी मीठी यादों की कहानी बताने वाले नाटक कैक्टस का अध्ययन भवन में मंचन हुआ। अध्ययन भवन में आयोजन हुआ, टैगलाइन कांटों में भी खिलते हैं कुछ रिश्ते, जो रिश्तों के संवाद एहसास और उनके बीच की हल्की फुल्की नोकझोंक को खूबसूरती से दर्शाती है। ए बरोस द्वारा लिखित इस नाटक का हिंदी रूपांतरण प्रवीण महोबाले ने किया है, जबकि इसका निर्देशन और मंच परिकल्पना वरिष्ठ रंगकर्मी राजीव वर्मा ने। नाटक में संगीत संचालन युग खड़ायते, प्रकाश परिकल्पना कमल जैन और मंच परीता वर्मा, प्रवीण महुवाले, महुआ चटर्जी, सुनील सक्सेना और राजीव वर्मा ने अपनी अभिनय कला से प्रदर्शन किया। नाटक का ताना बाना विषम परिस्थितियों के बीच रिश्तों को बचाने का रहा।

आइए अब चलते हैं सप्रेल संग्रहालय में, जहां पर डॉक्टर रहीश सिंह की पुस्तक कैकेयी के राम के 6वें संस्करण का रविवार को विमोचन हुआ। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शामिल हुए। श्रोताओं, इस किताब के जरिए कैकेयी की भूमिका पर अपनी बात रखी गई है। लोगों के बीच कैकेयी को लेकर नकारात्मक सोच रखी गई है, जबकि राजा राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने में उनकी ही भूमिका है। आयोजन में परिसंवाद में साहित्य, संस्कृति और समाज के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। सप्रे संग्रहालय के संस्थापक पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहक्षेत्र कार्यवाह श्री हेमंत मुक्तिबोध भी इसमें शामिल हुए।

किताबों के साथ हिंदी को ब्रेल के सहारे भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये प्रयोग पासपोर्ट कार्यालय में किया गया। नेशनल ब्लाइंड स्कूल के बच्चों को इसके संबंध में जानकारी दी गई। सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जहां ये आयोजन हुआ, ब्रेल लिपि में प्रकाशित इंस्ट्रक्शन बुकलेट से अवगत कराया गया, जिसे विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक पढ़कर सुनाया। कहानी लेखन और काव्य पाठ में 50 बच्चों ने भाग लिया। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शीतांशु चौरसिया ने शिक्षा के महत्व को बताया। दोनों संस्थानों के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित थे।

0: और अब आपको लिए चलते हैं मानव संग्रहालय में। शेरो शायरी और कविता किस्सों का दौर चार दीवारी से बाहर निकलकर मैदान में दिखा। मौका था ट्रैकिंग कैंप का, आयोजन मानव संग्रहालय के जरिए किया गया। अपनी संस्कृति को पहचानने से हुए आयोजन के दौरान युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा रही। प्रकृति प्रेमियों को आउटडोर गतिविधियों से जोड़ना और संग्रहालय के खूबसूरत परिवेश, प्राचीन रॉक शेल्टर, स्थानीय वनस्पति एवं जीव जंतुओं से रूबरू कराना था। इस अभियान में बड़ी संख्या में युवाओं, नागरिकों और प्रकृति प्रेमियों ने भाग लिया। तो श्रोताओं, ये थी आज की परिक्रमा। आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए। एक छोटा सा अंतराल यहां पर लेते हैं, उसके बाद आप सुनेंगे देशभक्ति गीत।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ही राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ही राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: कहते हैं कि जलियांवाला बाग की मिट्टी पर गिरने वाला खून उन लोगों को अपनी तरफ बुलाता था जिनके सीने में आजादी की तमन्ना आग की तरह रोशन थी। 12 साल के एक बालक ने भी उस बाग से मिट्टी उठाकर अंग्रेजों से बदला लेने की सौगंध खाई थी। उस बालक का नाम था भगत सिंह। इंकलाबी परिवार से नाता रखने वाले सरदार भगत सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन को न सिर्फ एक नई दिशा दी थी बल्कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। भगत सिंह समय से आगे की सोच रखने वाले क्रांतिकारी थे। उन्होंने नौजवान भारत सभा का निर्माण करके पंजाब में क्रांति का आह्वान किया था। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी संघ का निर्माण किया और सशस्त्र क्रांति के द्वारा देश को स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में देखने का ख्वाब देखा था। अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया और सांडर्स का वध कर दिया। इसके अलावा अंग्रेजों के काले कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने असेंबली हॉल में बम फेंके। बम फेंकने के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत को ये पता चला कि भगत सिंह सांडर्स की हत्या में शामिल थे तो उन पर फिर मुकदमा चलाया गया। अदालती कार्यवाही के दौरान भगत सिंह ने अपने बयानों और 61 दिन के आमरण व्रत से मुकदमे को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। वे रातों रात करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंख का तारा बन गए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। भगत सिंह की शहादत ने लोगों के मन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि शहीद शब्द उनके नाम के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया।

0: क्या बात है, आज बच्चा पार्टी बड़ी उधम मचा रही है।
1: एग्जाम जो खत्म हो गई है।
0: ओ, तब तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं अब है।
2: दादाजी आज हमको बाहर ले चलो।
0: अरे नहीं भाई, आज तो मुझे बहुत काम है। ऐसा करते हैं अपन परसों चलते हैं। ओहो, अब तुम लोग मानने वाले तो हो नहीं है। चलो ठीक है, गजबीय काका के ढाबे चलते हैं।
2: दादाजी आज एक बात बताना तो भूल ही गई।
0: वो क्या?
2: इसको आज प्राइज मिला है।
0: ओ, किस लिए मिला है?
3: इसने देशभक्ति गीत गाया था।
0: चलो चलो, हमको भी सुनाओ बेटा।

वाह वाह बच्चों, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा। पता है तुम्हें ये गीत राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ है और भगत सिंह और उसके साथी इसे बहुत गाया करते थे।

0: लो ढावा भी आ गया बात करते करते।
1: चलो चलो चलो बच्चों, हाँ धीरे धीरे गाड़ी से उतरो, हाँ हाँ धीरे धीरे।
0: अरे छोटू उस्ताद।
2: हाँ मालिक, आया आया आया।
0: अरे भाई ये गजबीये का

0: मानने वाले नहीं हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें भगत सिंह के बारे में बताता हूँ। अरे बच्चों, जैसे तुम जिद कर रहे हो ना कहानी सुनाने के लिए, वैसे ही जब भगत सिंह छोटे थे तो वो भी जिद किया करते थे अपनी चाची से कहानी सुनाने के लिए, और खूब कहानियां सुना करते थे। लेकिन उनकी चाची देशभक्ति की कहानी सुनाया करती थी। कहानी सुनते सुनते भगत सिंह कहा करते थे कि मैं भी बड़ा होके अंग्रेजों का सफाया करूंगा।
1: भारतीय क्रांतिकारियों की प्रथम पंक्ति में एक से बढ़कर एक महान व्यक्तित्व हुए, जिनमें से एक थे भगत सिंह, शहीदों के शहीद भगत सिंह। 11 नवंबर 1907 को जिला लायलपुर में सरदार किशन सिंह जी के घर जन्मे भगत सिंह का उन्मुक्त बचपन घर के देशभक्तिपूर्ण वातावरण को आत्मसात करता रहा और उसके लक्षण भी दिखने लगे।
2: बेटा भगत, ये क्या कर रहे हो?
3: बंदूके बो रहा हूँ।
4: अरे पुत्र, बंदूके बोके तू क्या करेगा?
3: इनसे जो बंदूके होंगेगी उनसे मैं अंग्रेजों का सफाया करूँगा। हाय मेरा पुत्र, इतनी चिंता करता है मेरी। मैं बड़ा होकर अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल दूंगा।
1: बचपन से ही मेधावी बुद्धि के मालिक भगत सिंह 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते देशभक्ति की भावना के रंग में इतने रंग चुके थे कि जलियांवाला बाग की घटना सुनकर स्कूल से सीधे अमृतसर घटना स्थल पर पहुंच गए और वहां प्रतिज्ञा करके लौटे कि उन्हें देश की आजादी के लिए लड़ना है, और पिता को सूचित कर चल पड़े इस कठोर डगर पर। पहले सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया, फिर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई।
5: साइमन कमीशन,
6: गो बैक, गो बैक।
5: साइमन कमीशन,
6: गो बैक, गो बैक।
0: ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये।
7: हाँ हाँ, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा।

0: यू यू पर इंडियंस जुलूस निकालोगे, आंदोलन करोगे, यू यू यू डॉट इंडियंस।
1: हम तुम्हारी मनमानी नहीं चलने देंगे, साथियों आगे बढ़ो,
2: आग जाओ वरना गोली चलाई जाएगी।
3: साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक।
2: चलाओ लाठियां।
4: जी साहब।
2: खदेड़ दो सबको, मारो।
3: साइमन कमीशन गो बैक।
5: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।

0: लाला जी आप ठीक है ना? लाला जी हम इन अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहेंगे। लाला जी
1: राजगुरु जल्दी आओ, लाला जी के सिर से खून बह रहा है।
0: भगत सिंह लाला जी के सर से खून बह रहा है। लाला जी आप ठीक है ना? हम इन अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहेंगे। लाला जी आप ठीक है? लाला जी
2: आई डिक्लेयर दैट द ब्लो स्ट्रक एट मी विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
0: लाला जी
1: क्या हो रहा है? लाला जी लाला जी को अस्पताल जाना पड़ेगा जल्दी।
3: लाला जी।

0: मुस्लिमों ने लाला जी की, ये राष्ट्र का घोर अपमान है।
1: हाँ, ये राष्ट्र का घोर अपमान
2: है। घोर अपमान है,
1: हम नहीं सहेंगे,
2: हम नहीं सहेंगे अब।
3: हाँ पंडित जी ठीक कहते हैं।
4: हाँ, इन्होंने लाला जी ही नहीं 30 करोड़ भारतीयों पर लाठी बरसाई है। हम इन अत्याचारियों का दमन करेंगे।
0: हाँ भगत सिंह, हम इन अंग्रेजों को इस देश से निकाल कर रहेंगे।
1: हाँ, निकाल कर रहेंगे।
2: हाँ।

0: लाला लाजपत राय की शहादत पर श्रद्धा के फूल अर्पित करते हुए भगत सिंह और साथियों ने जो प्रण किया उसे पूरा करने के लिए तयशुदा स्थान पर पहुंच गए।
1: अगर नहीं किया तो हमारी क्रांति अधूरी रह जाएगी। हमें ये काम करना ही है। राजगुरु बस इशारा होते ही
2: गोली चलानी है।
1: बिल्कुल, और ध्यान रहे निशाना चूकना नहीं चाहिए।
2: भगत सिंह बिल्कुल नहीं चूकेगा।
1: तैयार तो है हम, बस निशाना सही लगे।
2: हाँ भगत सिंह, इशारा हो चुका है।
1: बिल्कुल हाँ ठीक, आगे बढ़ो तुम, ध्यान रखना। हाँ आगे बढ़ो, चलाओ गोली।
2: हाँ
1: चलाओ गोली, चलाओ राजगुरु, चलाओ गोली।
3: अगर नहीं किया तो हमारी क्रांति अधूरी रह जाएगी। हमें ये काम करना ही।
1: भागो राजगुरु, भागो सब यहाँ से।
2: हाँ भगत सिंह
1: जल्दी।
2: हाँ
1: सब अलग अलग निकल जाओ।
2: हाँ निकलो निकलो।
4: काम हुआ भगत सिंह?
1: हाँ पंडित जी, काम तमाम हो गया।
4: ये लो साइकिलें, थाने की तरफ हलचल बढ़ेगी। जल्दी इस तरफ को निकलो। भगत सिंह तुम दुर्गा भाभी के साथ कलकत्ता की रेल पकड़ो, भगवती चरण ने सब इंतजाम कर दिया है।
1: ठीक है।
4: राजगुरु
2: जी
4: तुम भी साथ जाओगे, दोनों भेष बदल कर।
2: जी
4: ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, वहीं मिलेंगे।
1: ठीक है पंडित जी।
0: स्वतंत्रता के आंदोलन को तीव्र गति देने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, जयदेव कपूर और सभी साथी सकुशल कलकत्ता पहुंचे और वहां अगले कदम पर विचार विमर्श हुआ।
1: पंडित जी, सैंडर्स वध तो संपन्न हुआ, क्यों ना असेंबली में बम के धमाकों के साथ अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए।
5: हाँ, हम भी यही चाहते हैं।
4: हाँ भगत सिंह यही ठीक रहेगा, पर सारी योजना क्या होगी ये बताओ।
1: असेंबली जाकर सरकारी नुमाइंदों के सामने बम फेंके जाएं, वहां पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के पर्चे बांटे जाएं।
4: बिल्कुल सही योजना है।
5: हाँ हम सब समर्थन करते हैं।
1: साथियों देश हमारा है और हक कानून इन अंग्रेजों के, जमीन हमारी है और पैदावार इनकी, नदियां हमारी हैं और वाटर टैक्स ये ले, हमारे लिए न वकील न दलील और ना ही अपील। पंडित जी हमारे कानों में हर पल ये गुलामी गाली की तरह गूंजती रहती है।
4: भगत सिंह सोने के प्याले में ढका हुआ सत्य है ये आजादी, विस्फोट करना ही होगा। सांप केंचली मार कर बैठा है हमारी आजादी पर।
2: पंडित जी दुनिया के किसी ताकतवर ने आसानी से दी है कभी आजादी? उससे अधिक ताकतवर बनना ही पड़ता है।
4: ठीक कहते हो राजगुरु, हम काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को नहीं छुड़ा पाए, न हम साइमन कमीशन को वापस भेज पाए और लाला जी को भी खो बैठे।
1: लेकिन साथियों हम कमजोर नहीं है, लाला जी की शहादत ने हमें और मजबूत किया है। असेंबली में बम फेंकना तय हुआ समझे।

0: जिंदाबाद
1: जिंदाबाद।
2: मैं और बटुकेश्वर दत्त बम फेंकेंगे असेंबली में। केंद्रीय असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड सेफ्टी बिल दोनों पास नहीं हो पाए, तो वाइस रॉय के विशेष अधिकार से इसे पास कर दिया गया है। कितनी तानाशाही है सुखदेव।
3: हाँ भगत सिंह, और इसकी घोषणा 8 अप्रैल को होगी।
2: हाँ सुखदेव, यही दिन तय करते हैं, 8 अप्रैल।
4: और मैं एंट्री पास का बंदोबस्त करता हूँ।
3: स्थिति और स्थान का जायजा लेना भी बहुत जरूरी है जयदेव कपूर।
4: यह सब मेरे जिम्मे छोड़ दो।
2: तो तय रहा सब।
0: हाँ तय रहा।

8 अप्रैल 1929 का दिन था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया।

0: उन लड़का लोगों को पकड़ के लाओ।
1: पहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है।
2: हम किसी का नुकसान करने के इरादे से नहीं आए हैं। सरकार को इन धमाकों से भी कुछ समझ में ना आए तो ये पर्चे पढ़ लिए जाएं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति की हत्या करना आसान है, मगर विचारों की नहीं, हम लाला जी की हत्या का और दोनों बिलों का विरोध करते हैं। हम देश की आजादी के लिए हर तरह का बलिदान देने को तैयार हैं। हम आजाद होकर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। ये रहे हमारे हथियार, हमें शौक से गिरफ्तार करें।
3: भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने गिरफ्तारियां दे दी। इसके बाद 7 मई 1929 को भगत सिंह की मांग के मुताबिक जज साहब के सामने उनके बयान हुए।
4: भगत सिंह, क्या तुमने सड़न में बम फेंका?
5: सच है जज साहब, हमने बम फेंके।
4: सार्जेंट हैरी ने आपसे पिस्तौल छीनी?
5: असत्य, हमने भरी हुई पिस्तौल खुद टेबल पर रखी।
4: इट मींस तुम मानते हो कि तुमने कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक किया?
5: जी नहीं जज साहब, हमने कोई अपराध नहीं किया। ना हमारा ऐसा कोई उद्देश्य था और ना ऐसा कोई परिणाम हुआ। हमने सिर्फ अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया है।
4: तो फिर तुमने बम क्यों फेंका?
5: जज साहब, अपनी व्यथा प्रकट करने के लिए दहाड़े हैं हम। हमारे बमों से खाली बेंचों को नुकसान जरूर पहुंचा है, मगर किसी व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आई। हमारे बम सिर्फ धमाका करने वाले थे। अगर हमारी नीयत मानव रक्त बहाने की होती तो हम उसमें और तीखे रसायन डालते और उन्हें खाली बेंचों की तरफ ना फेंकते। हमारे बमों ने अपने ध्येय से अधिक कुछ नहीं किया। सरकार को चेतावनी देना हमारी जिम्मेदारी थी, जिसे हमने पूरा किया। जज साहब, हम अपने कार्य के अनुसार दंड भुगतने को तैयार हैं, और हमने अपनी मर्जी से अपने आप को खुद सरकार के हवाले किया है।
4: क्या यही है आपकी क्रांति?
5: जी हाँ, यही है हमारी क्रांति। इसका उद्देश्य है साम्राज्यवाद का विनाश हो, सार्वभौमिक शक्ति का सूत्रपात हो, स्वतंत्रता और लोक प्रभुता की स्थापना हो। इनकलाब जिंदाबाद।

0: अपनी गिरफ्तारी का अंजाम जानते थे भगत सिंह और अपने बचाव के विरुद्ध भी थे, सो उन्होंने अदालत के कटघरे को ऐसा मंच बना लिया जहां से वे आजादी के संग्राम में कूद पड़ने के लिए देशवासियों का आह्वान कर सकें। जेल यात्राएं सहते हुए उन्होंने लंबी भूख हड़ताल भी की। उसी दौरान उन पर सैंडर्स वध का मुकदमा चला तो उन्होंने सच्चाई के साथ इसकी जिम्मेदारी स्वीकार की। स्पेशल कोर्ट में भी मुकदमा किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा तो स्पेशल ट्रिब्यूनल बना। पेश होने के लिए जब लारी में बिठाकर उन्हें लाया जा रहा था तो लारी में देशभक्ति की भावनाएं हिलोरें ले रही थीं।
1: शहीदों की चिता

0: जुड़ेंगे हर बरस मेले,
1: शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले,
0: वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा,
1: वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।
0: कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा,
1: उरूजे कामयाबी
2: ऑर्डर ऑर्डर
1: हिंदोस्ता होगा,
0: उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा,
1: उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा।
2: ऑर्डर ऑर्डर।

0: आशना होगा।
1: No need of nuisance here.
2: न्यायाधीश महोदय, आपको हमारा देश प्रेम न्यूसेंस लगता है क्या? आप अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं करते? हो सकता है मातृभूमि आपके लिए मिट्टी पत्थरों के बेजान टुकड़े हों, लेकिन हम अपनी मातृभूमि को माँ का दर्जा देते हैं। वंदे
0: मातरम,
2: वंदे
0: मातरम,
2: वंदे
0: मातरम।
2: जय साहब, ना आप हमारी भक्ति भावना को मार सकते हैं और ना हम इसे आपके पैरों तले रौंदता हुआ देख सकते हैं। नतीजा जल्द ही हमारे पक्ष में होगा जज साहब।
1: ऑर्डर ऑर्डर।
0: नतीजा तो हमारे हक में ही होगा।
1: ऑर्डर ऑर्डर।
3: इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
1: ऑर्डर ऑर्डर।
3: इंकलाब जिंदाबाद।

0: जिंदाबाद। आपको हमारी देशभक्ति पर एतराज है तो हमें आपके फैसलों पर एतराज है। हम यह अदालती तमाशा हरगिज नहीं देखना चाहते। आज से हम अदालत का बहिष्कार करते हैं। इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद।
2: नारे की गूंज न्यायाधीशों को विचलित कर देती है। भगत सिंह के अदालत के पूर्ण बहिष्कार के फलस्वरूप बिना वकीलों, दलीलों और गवाहों के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया।
3: भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी की सजा दी जाती है।
4: इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब
5: जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
2: दिसंबर 1930, जेल में रात्रि का समय। भगत सिंह से मिलने आए हैं शिव वर्मा।
6: अरे भगत सिंह, तुमसे मिलने को ही आया है भाई।
7: अरे शिव वर्मा, बेड़ियों के गीत बड़े मधुर सुनाई दिए। आप गले मिलने।
8: अरे यार, गले मिलने ही तो आया हूं भगत सिंह। शायद आखिरी बार, शायद आखिरी बार तुम सलाखों के बाहर बाहें फैला दो और मैं सलाखों के अंदर कर लेता हूं बाहें। पर मिलने की भूख तो रह ही जाएगी दोस्त।
7: हाँ शिव वर्मा, हमारे दिल भी एक साथ ना धड़के, सरकार को खतरा हो जाता है। ले जा रहे हैं ना तुमको दूसरी जेल में।
8: हाँ चलो, मिलने की इजाजत तो मिली।
7: सोचता था क्रांति का नारा देश के कोने कोने में गूंज उठे। और आज इस काल कोठरी में उसकी गूंज सुन रहा हूं। जीवन का कुछ तो मूल्य हुआ।
8: हाँ भाई, इनकलाब का भरपूर जवाब भी तो मिला है, हैं?
7: इस छोटे से जीवन का इससे बढ़कर मूल्य क्या होगा कि ये देश पर कुर्बान हो।
8: हाँ भगत, सही कहा तुमने।
7: सुनो शिव वर्मा, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा कुछ ही दिनों में, लेकिन तुम सब इस राह में थक कर बैठ मत जाना। इस क्रांति की लौ को जलाए रखना जब तक देश में आजादी का उजाला ना फैल जाए।
8: हाँ भगत सिंह, मैं क्या, सारा देश याद रखेगा, सारा देश। अच्छा दोस्त, चलूं।
2: 23 मार्च 1931 का दिन आजादी के दीवानों को फांसी पर चढ़ाया जाना था, पर भगत सिंह की निर्भीकता, प्रतिबद्धता और सहजता तो देखिए। भगत सिंह ने अपने वकील प्राणनाथ से लेनिन का जीवन चरित्र मंगवाया पढ़ने के लिए।
9: कैसे हो भगत सिंह?
7: वकील साहब, प्रसन्न हूं। पुस्तक लाया?
9: हाँ ये लीजिए। भगत सिंह, क्या मैं आपकी आखिरी इच्छा पूछ सकता हूँ?
7: वकील साहब, जीवन में एक ही इच्छा थी कि देश की स्वतंत्रता के लिए जीऊं और मर मिटूं। आखिरी इच्छा भी यही है, फिर जन्म लूं तो भी देश पर कुर्बान होने के लिए।

0: आएगी फसले बहार वकील साहब, जरूर आएगी। आजादी दूर नहीं है, उम्मीद रखिए।
1: भगत सिंह जी, फांसी का हुक्म हो चुका है, चलिए।
0: रुको, जरा रुको। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, चलिए।
1: हथकड़ियां लगाओ इन्हें।
2: जी साहब।
0: हमारे हाथों में हथकड़ियां ना लगाई जाएं। हम चेहरे भी नहीं ढकेंगे, हम आजादी के दीवाने मौत से खुद हाथ मिला रहे हैं। फांसी हमारे लिए सजा नहीं, आत्म बलिदान है। चलो। दिल से निकलेगी ना वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबुए वतन आएगी।

0: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
1: और मैं हूं पूर्वा खले।
0: आज हम अपने कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में बात करेंगे शब्द शिल्पी रामधारी सिंह दिनकर की।
1: ज्ञान और बौद्धिक समृद्धि की धरोहर के क्षेत्र में ऐसे अनेक पुरुष और महिलाएं हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों, काव्य और रचनाओं के माध्यम से समाज को दिशा दी। उनमें एक महान हस्ती हैं जिनका नाम भारतीय साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी न केवल एक संवेदनशील कवि थे बल्कि विचारक, उपन्यासकार, आलोचक और समाज सुधारक भी थे। वे अपने समय के संघर्षशील मनुष्य थे जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से देश के प्रति निष्ठा और मानवता के प्रति करुणा का संदेश दिया।
0: श्रोताओं, ये वो युग था जब भारतीय समाज में सामाजिक विषमताएं, जातिगत भेदभाव, अत्याचार और शोषण की गहराई बढ़ती जा रही थी। ऐसे समय में दिनकर जी के शब्दों ने जनमानस को आवाज दी। उन्होंने समाज के हर शोषित वर्ग की पीड़ा को अपने साहित्य का विषय बनाया। उन्होंने केवल कविता नहीं लिखी बल्कि हर कविता में सामाजिक, राष्ट्रीय और दार्शनिक चेतना को स्थान दिया।
1: ताराशंकर बंदोपाध्याय बांग्ला साहित्य के महान उपन्यासकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने दिनकर जी को शब्दों का शिल्पकार कहा है। ये उपाधि बिल्कुल सटीक है क्योंकि दिनकर जी ने शब्दों के माध्यम से केवल भाव ही व्यक्त नहीं किए बल्कि विचारों के क्रांतिकारी रूप भी बन गए। उनके विचार इतने व्यापक, उनका दृष्टिकोण इतना स्पष्ट और उनका साहित्य इतना संवेदनशील था कि पाठक उसे पढ़ते ही मन से आत्मसात कर लेते थे।
0: दिनकर जी के साहित्य का ये विशेष गुण रहा है कि वे सिर्फ कवि या लेखक नहीं थे बल्कि अपने समय के संघर्षों, सामाजिक विषमताओं और राजनीतिक असमानताओं के प्रति एक सजग प्रहरी बने। उनकी लेखनी ने उन्हें केवल साहित्य का कवि नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का अग्रदूत बना दिया। उनका व्यक्तित्व और लेखन दोनों मिलकर उस युग के हर तबके को एक नई सोच, एक नई दिशा देने का कार्य कर गए। आज हम यहाँ उसी महापुरुष रामधारी सिंह दिनकर के जीवन, साहित्य, विचारधारा और विरासत की विस्तृत समीक्षा करने जा रहे हैं ताकि हम न केवल उनके योगदान को समझ सकें बल्कि आने वाली पीढ़ी भी उनके विचारों से प्रेरित हो सके।
1: रामधारी सिंह दिनकर भारतीय साहित्य के उन चुनिंदा व्यक्तित्वों में से एक हैं जिनका नाम मात्र हिंदी काव्य तक सीमित नहीं है बल्कि वो राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक क्रांति और मानवीय मूल्यों के एक सशक्त प्रतीक के रूप में भी स्थापित हैं। उन्हें युग दृष्टा और हिंदी भाषा के उज्ज्वलतम नक्षत्रों में से एक माना जाता है जिनकी रचनाएं केवल शब्द नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उत्थान की एक जीवंत गाथा है। दिनकर को उनके ओजस्वी शैली और वीर रस से ओतप्रोत कविताओं के लिए ओज के कवि और राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा गया। उन्हें हिंदी साहित्य में भूषण के बाद वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है।
0: हालांकि दिनकर जी को मात्र एक ओजस्वी कवि के रूप में देखना उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होगा। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जहां उनकी कलम ने राष्ट्रीय गौरव और पौरुष का उद्घोष किया, वहीं स्वतंत्रता के बाद यही कलम व्यवस्थागत भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमताओं और निष्क्रियता के खिलाफ एक प्रखर हथियार बन गई। उनका साहित्य एक जटिल विकास को दर्शाता है जहां एक ओर वीर रस का गर्जन है वहीं दूसरी ओर प्रेम और अध्यात्म का गहन चिंतन भी है। आज के इस एपिसोड में उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं, उनकी कालजयी रचनाओं और उनके चिरस्थायी भाव का विस्तृत विश्लेषण हम आप सभी के साथ साझा करेंगे।
1: भारतीय हिंदी साहित्य में जब भी राष्ट्र प्रेम, ओज, क्रांति और जन चेतना की बात आती है तो एक ही नाम सर्वप्रथम स्मरण में आता है, रामधारी सिंह दिनकर। उन्हें जनमानस ने राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी। दिनकर की कविताएं केवल साहित्यिक रचनाएं नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का घोष, जनता की व्यथा का स्वर और भविष्य की दिशा थी। उनके शब्द में वो अग्नि थी जिसने सोई हुई चेतना को जगाया और अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। दिनकर जी का जीवन बचपन की कठिनाइयों से लेकर राष्ट्रीय पहचान तक एक संघर्षमयी और प्रेरणादायी यात्रा है और आज हम उसी यात्रा पर हैं। वे किसान परिवार से निकले, कठिनाइयों में पले बढ़े, लेकिन अपनी मेधा, परिश्रम और अटूट लगन से हिंदी साहित्य में अमर हो गए। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं रामधारी सिंह दिनकर के गांव, जहां उनका जन्म हुआ, उनका बचपन बीता, जहां वो खेले, पढ़े और बड़े हुए।
0: दोस्तों, दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ। ये गांव गंगा के पावन तट पर स्थित है। पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनुरूप देवी था। पिता का निधन दिनकर जी के बचपन में ही हो गया, जिससे परिवार पर आर्थिक संकट छा गया। आपका बचपन अभावों और संघर्षों से घिरा रहा, परंतु इन अभावों ने ही उन्हें संवेदनशील बनाया। माँ ने कठिनाइयों के बीच उन्हें संस्कार और शिक्षा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। गांव का प्राकृतिक वातावरण, गंगा की धाराएं, किसानों का श्रम, समाज की विषमता, इन सबने बाल्यकाल में ही दिनकर जी के मन पर गहरी छाप छोड़ी। यही कारण था कि उनकी कविताओं में प्रकृति और लोक जीवन की झलक बार बार दिखाई देती है।
1: दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। शिक्षा अपने गांव के एक संस्कृत विद्वान के देखरेख में शुरू की गई। फिर उन्होंने स्थानीय सरकारी स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा जारी रखी। दिनकर ने मोकामा हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो उनके घर से बहुत दूर था। वे स्कूल की सभी कक्षाओं में नहीं जा पाते थे। वे लंच ब्रेक के बाद घर के लिए स्टीमर पकड़ने के लिए स्कूल को छोड़ देते थे। उन्होंने अपने गांव के स्थानीय स्कूलों में पढ़ाई की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए पटना शहर चले आए। दिनकर जी के एक छात्र के रूप में पसंदीदा विषय थे इतिहास, राजनीति और दर्शन। आपके रुचि अन्य भाषाओं में भी थी। स्कूल में और कॉलेज में उन्होंने हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, उर्दू और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। दिनकर जी की साहित्यिक यात्रा में वो रविंद्रनाथ टैगोर, कीट्स और मिल्टन से बेहद प्रभावित थे और उन्होंने टैगोर की रचनाओं का बंगाली से हिंदी में अनुवाद भी किया। बिहार के ग्रामीण परिवेश में बिताए गए समय ने उनके दिल में राष्ट्रवाद और साहित्य के प्रति प्रेम के बीज बो दिए। मोकामा घाट हाई स्कूल से उन्होंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। इस समय तक वे अत्यंत मेधावी छात्र के रूप में पहचाने जाने लगे थे। मैट्रिक के दौरान ही वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों से भी प्रभावित हो चुके थे। देश की स्वतंत्रता की लहर ने उन्हें साहित्य और राष्ट्र प्रेम की ओर मोड़ दिया।
0: श्रोताओं, दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उन्होंने इतिहास, राजनीति विज्ञान और दर्शन जैसे विषयों में विशेष योग्यता हासिल की। संस्कृत और हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन उनके व्यक्तित्व को और भी परिपक्व बना गया। शिक्षा ने उनमें एक और वैचारिक दृढ़ता दी तो दूसरी ओर साहित्यिक दृष्टि भी विकसित की। पटना कॉलेज 1863 में स्थापित हुआ था और ये पटना विश्वविद्यालय का सबसे पुराना कॉलेज है, जो दिनकर जी के समय एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान था। दिनकर जी का कॉलेज जीवन उनके भविष्य के साहित्यिक और राजनीतिक करियर की नींव रखने में महत्वपूर्ण था। अपनी स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद दिनकर जी ने एक विद्यालय में अध्यापक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक के पदों पर कार्य किया। इन प्रशासनिक पदों पर रहते हुए भी उनकी साहित्यिक यात्रा अबाध रूप से जारी रही। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्हें बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया। दिनकर जी ने युवावस्था से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी प्रारंभिक कविताएं स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। स्वतंत्रता संग्राम का उत्साह उनके शब्दों में उतरने लगा। फिर 1935 में उनका पहला काव्य संग्रह रेणुका प्रकाशित हुआ। इस कृति में राष्ट्रभक्ति और क्रांतिकारी स्वर स्पष्ट था। इसके बाद 1938 में हुंकार आई, जिसने उन्हें प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। हुंकार ने उन्हें हिंदी जगत में एक ओजस्वी कवि के रूप में स्थापित किया। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन दिनकर जी के जीवन और रचनाओं की प्रेरणा का मुख्य स्रोत रहा। 1920 और 1930 के दशक में जब पूरा देश आंदोलन की लहरों से गुजर रहा था, उस समय दिनकर ने कविता को जनता की आवाज बना दिया। उनकी कविताएं केवल पुस्तकालयों तक सीमित नहीं रही बल्कि जनता के बीच नारों और गीतों की तरह गूंजने लगी। वे क्रांति के कवि बने। यही कारण था कि अंग्रेजी शासनकाल में उनकी कई रचनाएं आपत्तिजनक भी मानी गई।
1: फिर आया सन 1952 जब भारत की पहली संसद का गठन हुआ, तब उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। वे लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, यानी लगभग 12 वर्षों तक। ये एक असाधारण बात थी कि उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मनोनीत किया गया था, फिर भी उन्होंने नेहरू की नीतियों का खुलकर विरोध करने से कभी गुरेज नहीं किया। सन 1962 में चीन से हार के बाद उन्होंने संसद में एक कविता सुनाई जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का सिर झुक गया था। दिनकर जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रबल समर्थन किया था और इसे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में वो देखते थे। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि इस प्रक्रिया में गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने हिंदी की व्यापकता और सरलता को इसकी उपयुक्तता बताया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से भी प्रेरित हुए जिन्होंने भारत को एक राष्ट्रभाषा के बिना अधूरा बताया। दिनकर जी ने हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में महत्व को समझा और राष्ट्र की एकता के लिए हिंदी को बढ़ावा देने की बात कही, परंतु इस प्रक्रिया में अन्य भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं का आदर करने का भी सुझाव दिया।
0: श्रोताओं, उनका सार्वजनिक जीवन उनके साहित्य का ही विस्तार था। उनकी कविताएं केवल कल्पना नहीं थी बल्कि एक सक्रिय नागरिक की आवाज थी जो सत्ता को चुनौती देने से नहीं डरता था। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है जैसी पंक्तियां उनकी इसी राजनीतिक चेतना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनका राज्यसभा में कार्यकाल ये दर्शाता है कि उनकी साहित्यिक निष्ठा किसी भी राजनीतिक पद या व्यक्तिगत संबंध से ऊपर थी। उनके साहित्यिक योगदानों की बात करें तो वीर रस और राष्ट्रभक्ति की रचनाएं उल्लेखनीय है। दिनकर जी की सबसे बड़ी पहचान उनकी वीर रस की ही कविताएं हैं। रेणुका 1935 में प्रकाशित हुई, 1938 में हुंकार, 1938 में ही द्वंद्व गीत और 1946 में कुरुक्षेत्र, और फिर वो कविता जिसे आज भी हर कलाकार कभी न कभी मंच से अपनी आवाज देता रहा है, रश्मिरथी, जो कि प्रकाशित हुई 1952 में। इन रचनाओं में उन्होंने अन्याय के विरुद्ध विद्रोह, स्वतंत्रता का आह्वान और युवाओं को जोश से भरने वाले संदेश दिए।
1: रश्मिरथी से आपकी प्रसिद्ध पंक्ति सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और वहीं दिनकर जी की प्रेम और सौंदर्य पर आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे कि उर्वशी में, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। रश्मिरथी में भी प्रेम और आदर्श का गहरा समन्वय है। इसमें सौंदर्य, प्रेम और जीवन की जटिलताओं का चित्रण है, जैसा कि इस पंक्ति में देखिए। प्रेम केवल हृदय की चाह नहीं, ये जीवन की पूर्णता है।
0: दिनकर जी द्वारा दर्शन और संस्कृति पर आधारित गद्य भी लिखे गए। संस्कृति के 4 अध्याय जो कि 1948 में आए, परशुराम की प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर और शुद्ध कविता की खोज, इनमें उन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपरा का गहन विश्लेषण किया। आपकी प्रसिद्ध पंक्ति, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, दिनकर जी की कुछ प्रमुख कृतियों का विश्लेषण हम आपके साथ करना चाहते हैं। जैसे रेणुका, प्रारंभिक रचना जिसमें राष्ट्रप्रेम और क्रांतिकारी स्वर मुखर है। दूसरी रचना हुंकार, युवाओं को क्रांति और संघर्ष के लिए प्रेरित करने वाली कृति है। कुरुक्षेत्र युद्ध और शांति का दार्शनिक काव्य है। रश्मिरथी महाभारत के कर्ण को केंद्र बनाकर लिखा गया महाकाव्य, कर्ण की त्रासदी, संघर्ष और महानता का चित्रण। उर्वशी प्रेम, सौंदर्य और मानवीय जीवन का अद्भुत समन्वय। और संस्कृति के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति की व्याख्या, उसका इतिहास और भविष्य।
1: दिनकर जी को जनता ने राष्ट्र कवि कहा, कारण था उनकी कविताओं में वो ऊर्जा जो स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन बन गई। उनकी कविताएं केवल किताबों तक नहीं बल्कि जनसभाओं और आंदोलनों तक पहुंच गईं। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में उपनिदेशक के रूप में कार्य किया। बाद में वे पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने। सन 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य चुने गए। संसद में भी वो अपने विचारों से सबको प्रभावित करते थे। उनका मानना था कि साहित्यकार का कर्तव्य केवल लेखन तक सीमित नहीं है बल्कि उसे समाज और राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उनकी कविताएं भारत माता की जय और स्वतंत्रता का घोष थीं। अन्याय और दमन के विरुद्ध विद्रोह उनकी रचनाओं का मुख्य स्वर था। उन्होंने भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी सार्वभौमिकता को दर्शाया। उनकी कविताएं केवल क्रांति की आग ही नहीं बल्कि प्रेम और करुणा का संदेश भी देती हैं।
0: दिनकर जी की काव्य शैली न केवल ओजस्विता और ऊर्जा, सरल भाषा, परंतु गहन अर्थ और पौराणिक संदर्भों का आधुनिक प्रयोग और जनमानस से सीधा संवाद करने वाली है। उनकी कविताएं राष्ट्रवाद और क्रांति का स्वर है। आपकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां जैसे मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, कलम आज उनकी जय बोल जो आग में तप कर निकले हैं, जिस तरह चाहो बजाओ तुम हमें, हम नहीं है फूल हम पत्थर हैं, और जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। श्रोताओं, दिनकर जी को उनकी साहित्य जगत में विशेष योगदान के लिए अनेकों पुरस्कारों से विभूषित किया गया, अनेकों सम्मान उन्हें दिए गए। 1952 में सबसे पहले उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया उनकी रचना कुरुक्षेत्र के लिए। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए। 1969 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए और जनमानस द्वारा राष्ट्रीय कवि की उपाधि प्राप्त की। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में दिनकर जी बीमार चल रहे थे और 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी देह चेन्नई यानी तत्कालीन मद्रास में छोड़ी। उनका शव 25 अप्रैल को पटना लाया गया और गंगा किनारे उनका दाह संस्कार किया गया। 30 सितंबर 1987 को उनकी 79वीं जयंती के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1999 में भारत सरकार ने भारत की भाषाई एकता का जश्न मनाने के लिए हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की 50वीं वर्षगांठ पर दिनकर सहित हिंदी लेखकों पर स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया।
1: श्रोताओं, आइए आपको रामधारी सिंह दिनकर से जुड़ा एक प्रेरणादायक किस्सा सुनाते हैं। दिनकर जी का व्यक्तित्व जितना गंभीर और विचारशील था उतना ही सरल और सहज भी था। उनके मित्र बताते हैं कि वे अत्यंत मिलनसार और सादगी प्रिय व्यक्ति थे। एक बार जब वे छात्र जीवन में थे तो उन्हें आर्थिक तंगी का बेहद सामना करना पड़ा। उस समय उन्हें एक कविता प्रतियोगिता में भाग लेना था, लेकिन उन्हें प्रतियोगिता का प्रवेश शुल्क भी भरना मुश्किल हो रहा था। एक मित्र ने उन्हें प्रोत्साहित किया और खुद अपना बचाया हुआ थोड़ा बहुत पैसा दिनकर जी को दे दिया ताकि वे प्रतियोगिता में भाग ले सकें। दिनकर जी ने उस विश्वास और मित्रता को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने उस प्रतियोगिता में भाग लिया और कविता लिखी जिसमें उन्होंने संघर्ष, मित्रता और आदर्शों का गूढ़ भाव व्यक्त किया। दिनकर जी की कविता इतनी प्रभावशाली थी कि उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से वे सदा यही मानते थे कि सच्चा मित्र जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है। उनके मित्र अक्सर याद करते हैं कि दिनकर जी हमेशा कहते थे, कविता का उद्देश्य केवल शब्दों को सजाना नहीं बल्कि मानवता की सेवा करना है। यह किस्सा न केवल उनकी मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाता है बल्कि ये भी बताता है कि वे संघर्षशील परिस्थितियों में भी कितने सकारात्मक और दृढ़ निश्चयी बने रहे। उनके मित्र इस बात को गर्व से याद करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की मित्रता सच्ची थी और उनकी सादगी और उनके व्यक्तित्व की यही सबसे बड़ी विशेषता भी थी।
0: दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि दिनकर जी बचपन से ही प्रकृति के बेहद निकट रहे। वे खेत खलिहान में काम करने वाले किसानों के बीच बड़े हुए थे और प्रकृति की सरलता और उसके नियमों से गहराई से परिचित थे। उनके दोस्त बताते हैं कि दिनकर जी को अक्सर अपने खाली समय में गांव के खेत खलिहानों में जाकर पेड़ पौधों की देखभाल करना, पक्षियों को खिलाना और मिट्टी से जुड़ी बातें करना बहुत प्रिय था। वे मानते थे कि प्रकृति में ही मानव जीवन का सबसे बड़ा संदेश छुपा है। एक विशेष किस्सा यह भी प्रसिद्ध है कि एक बार पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान दिनकर जी ने अपने एक मित्र के साथ मिलकर एक पेड़ लगवाया। वे कहते थे, हर वृक्ष एक कविता है जो शब्दों से नहीं जीवन से लिखी जाती है। दिनकर जी का प्रकृति से जुड़ाव उनकी कविताओं में भी दिखाई देता है। उनके काव्य संग्रह में प्रकृति के विविध रंग, उसका सौंदर्य, उसकी विशालता, उसके सुख दुख की गहराई बखूबी झलकती है। दिनकर का प्रभाव और आज की प्रासंगिकता की अगर बात करें, दिनकर जी की कविताएं आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी कविताएं युवाओं में उत्साह जगाती हैं, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देती हैं और समाज में नैतिकता और संस्कृति की रक्षा का आह्वान करती हैं। आज जब समाज अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है तो उनकी कई पंक्तियां हमारे लिए बहुत उल्लेखनीय हो जाती हैं, प्रेरक बन जाती हैं। तो आज के इस एपिसोड यानी शब्दों के शिल्पकार में हमने जाना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का संघर्ष, उनके साहित्यिक योगदान और उनकी अमर कृतियां। कैसे एक सामान्य किसान परिवार से निकलकर उन्होंने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। उनकी कविताएं आज भी समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। फिर मिलेंगे किसी और शब्द शिल्पी के साथ, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा और वाचन मेरा यानी संदीप
1: और मेरा यानी पूर्वा खले का।
0: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक कई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी जी सियालकोट आए। वहां उन्होंने लगातार व्याख्यान दिया। उस समय की घटनाओं का वर्णन श्री गुडविन ने किया है। वे मद्रास से जम्मू आकर स्वामी जी से मिले थे और साथ साथ भ्रमण किए थे। उन्होंने लिखा है,
1: यद्यपि स्वामी जी विवेकानंद के भग्न स्वास्थ्य का पुनरुद्धार नहीं हो सका है, तथापि वो पुनः अपने कार्य में लग गए हैं। इस बार उनका कार्य क्षेत्र है उत्तर पश्चिम कश्मीर में। उन्होंने कई सप्ताह बिताए और वहां के महामान्य महाराजा ने स्वामी जी के वक्तव्य पर आकृष्ट होकर उन्हें वचन दिया है कि स्वामी जी यदि उस राज्य में किसी व्यवहारिक योजना को रूपायित करना चाहे तो उन्हें महाराजा की सहायता प्राप्त होगी। इसके बाद कुछ दिन जम्मू में रहकर उन्होंने वहां के विशेष श्रोताओं के समक्ष हिंदी में व्याख्यान दिया। जम्मू से सियालकोट जाकर 31 अक्टूबर की प्रातःकाल लाला मूलचंद MALLB महाशय के घर में आतिथ्य ग्रहण किया। यहां पर उनके दो भाषणों का आयोजन हुआ था, एक अंग्रेजी में 31 अक्टूबर की शाम को और दूसरा हिंदी में। दोनों व्याख्यानों का और यहां तक कि इस काल के उनके समस्त व्याख्यानों का एक सामान्य वक्तव्य ये था कि धर्म के नाम से परिचित होने के लिए उसे व्यवहारिक रूप से ग्रहण करना होगा। मुझे लगता है कि स्वामी जी दिन पर दिन धर्म के इसी पक्ष पर अधिकाधिक बल दे रहे हैं और वो जिन जिन स्थानों को जा रहे हैं वहां वहां के स्थानीय प्रयोजन के अनुसार तथा वहां के लोगों की विशेषताओं को ध्यान में रखकर विविध प्रकार के संस्थाओं की स्थापना करके अपने मत को रूपायित कर रहे हैं। उदाहरणार्थ सियालकोट में एक बालिका विद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने विशेष आग्रह दिखाया और उनके वहां 2 दिन निवास के फलस्वरूप उस प्रस्ताव को कार्यकारी बनाने के लिए लाला मूलचंद को सचिव बनाकर नगर के प्रभावशाली लोगों की एक कमेटी गठित हो गई।
2: 5 नवंबर को स्वामी जी अपनी टोली के साथ रवाना होकर सियालकोट से लाहौर पहुंचे। वहां भी उनके भाषणों का सिलसिला चलता रहा।
0: गुडविन महोदय ने और भी लिखा है,
1: शुक्रवार की शाम को पुरानी हवेली के प्रांगण में उन्होंने हमारी समस्याएं विषय पर एक भाषण दिया। इसमें काफी संख्या में लोग आए थे। जितने लोग आए थे उन सभी के लिए उस प्रांगण में यथेष्ट स्थान नहीं था और बहुत से लोगों को निराश करना पड़ेगा, ये सोचकर ऐसा लग रहा था कि शायद सभा ही ना हो सके। कम से कम 2000 श्रोताओं को लौटा देने के बाद भी पूरे 4000 श्रोताओं को एक बड़ा मनोहारी व्याख्यान सुनने को मिला। परवर्ती मंगलवार को प्रोफेसर बोस के बंगाल सर्कस के पंडाल में स्वामी जी का भक्ति पर व्याख्यान सुनने को एक विशाल श्रोता मंडली एकत्र हुई थी। इसके परवर्ती शुक्रवार 12 नवंबर को तृतीय व्याख्यान ने विपुल सफलता अर्जित की। इस भार व्यवस्था का पूरा भार लिया था लाहौर के 4 महाविद्यालयों के छात्रों ने और वो सर्वांग सुंदर बन पड़ा था। श्रोताओं की संख्या इतनी अधिक नहीं थी कि कोई असुविधा उत्पन्न हो, तथापि इसमें लाहौर के सभी श्रेणियों के चुने हुए लोग उपस्थित थे। उक्त संध्या को व्याख्यान का विषय था वेदांत। स्वामी जी ने 2 घंटे से भी अधिक समय तक अद्वैतवाद तथा भारतीय धर्म के विषय में एक ऐसा भाषण दिया जो अति उच्च कोटि का हुआ था।
2: गुडविन महोदय खुद उन भाषणों से बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने आगे कहा,
1: स्वामी जी के भारत में अब तक हुई सभी व्याख्यानों में सर्वोत्तम

0: वे निर्धारित हुआ गरीबों की सेवा, यथा संभव उन्हें प्रत्येक मोहल्ले से ढूंढ निकालना होगा, और निर्धन रोगियों की सेवा शुश्रूषा तथा निर्धनों के लिए निशा विद्यालय की व्यवस्था करनी होगी।
1: लाहौर में स्वामी जी जितने दिन रहे, प्रायः प्रतिदिन वे विभिन्न संप्रदाय के लोगों से मिलते थे। वहाँ आर्य समाज और सनातन धर्मावलंबियों में काफी झगड़ा था। समाजी मूर्ति पूजा के विरुद्ध टिप्पणी किया करते थे। स्वामी जी ने प्राचीन ग्रंथों का उदाहरण देकर उन्हें समझाया था कि मूर्ति पूजा कैसे और कब शुरू हुई थी और उसका औचित्य क्या है। इसी तरह उन्होंने दोनों दलों में मेल मिलाप करवाया।
2: उन्हीं दिनों लाहौर में ग्रेट इंडियन सर्कस आया हुआ था। एक दिन उसके मालिक बाबू मोतीलाल बोस किसी कार्यवश नागेंद्र नाथ गुप्त के घर आए हुए थे। स्वामी जी ने देखते ही पहचान लिया कि वे उनके बचपन के मित्र हैं और तुरंत उनके साथ दोस्त के समान दिल खोल कर वार्तालाप करने लगे। बचपन में ये दोनों एक ही अखाड़े में व्यायाम करते थे। अपने बाल संगी के अपूर्व तेज प्रतिभा और शक्तिपूर्ण चेहरा देख कर मोती बाबू की आंखें चौंधिया गईं। स्वामी जी जितना ही उनके साथ अपनों के समान व्यवहार और वार्तालाप करने का प्रयास करते, वे उतने ही अधिक संकुचित महसूस करते। आखिरकार खूब साहस जुटाकर मोती बाबू ने अत्यंत दीन स्वर में स्वामी जी से कहा,
3: भाई अब मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? तुम तो इतने बड़े गुरु हो गए हो, हाँ?
4: क्यों रे मोती, तू पागल हो गया है क्या? मैं क्या हो गया हूँ? अरे मैं तो वही नरेन हूँ और तू भी तो वही मोती है, इसमें छोटे बड़े का सवाल ही नहीं उठ सकता।
1: दोनों दोस्त गले लग गए। स्वामी जी के साथ एक अन्य सुविख्यात व्यक्ति की भेंट उल्लेखनीय है। लाहौर के FC कॉलेज के गणित के प्राध्यापक श्रीयुत गोस्वामी स्वामी जी के साथ रहकर बड़े ही उपकृत तथा आनंदित हुए थे। बाद में संन्यास लेकर ये स्वामी राम तीर्थ के नाम से सुपरिचित हुए तथा स्वामी जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अमेरिका तथा स्वदेश में वेदांत प्रचार के कार्य में लग गए। इनके अनेक शिष्य तथा भक्त हुए और अपनी प्रकाशित व्याख्यान माला के द्वारा ये उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोगों के बीच बड़े लोकप्रिय हुए। इन्हीं के नेतृत्व में लाहौर के छात्रों ने स्वामी जी के व्याख्यानों का आयोजन किया था। स्वामी जी के प्रति इतनी असीम श्रद्धा थी और एक दिन उन्होंने स्वामी जी को उनके संगियों सहित अपने घर में निमंत्रित करके भोजन कराया था। इस भोज में श्री गुडविन भी उपस्थित थे। भोज के अंत में स्वामी जी ने एक भजन गाया था।

0: जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहूं होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम।
1: लाहौर में स्वामी जी 10-11 दिन रहे। व्याख्यानों और स्वामी जी के प्रभाव के विषय में प्राध्यापक तीर्थराम ने पंडित दीनदयाल शर्मा व्याख्यान वाचस्पति के नाम एक पत्र लिखा था।
2: तीर्थराम स्वयं ही वेदांति थे, इस कारण स्वाभाविक रूप से भक्तिवाद के प्रति उनका वैसा आकर्षण न था और उस विषय पर स्वामी का व्याख्यान अपूर्व रह जाने से उसका यथोचित प्रभाव भी नहीं हो सका था। इसलिए तीर्थराम के पत्र में उसके विषय में थोड़ी कमी रहने पर भी बाकी व्याख्यानों की उन्होंने उच्च सुर में प्रशंसा की है। पत्र इस प्रकार है।
3: श्री महाराज जी प्रणाम। 10 दिनों तक यहाँ निवास करने के बाद स्वामी विवेकानंद जी कल देहरादून के लिए रवाना हो गए। उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी में 3 व्याख्यान दिए। स्वामी जी यहाँ सनातन धर्म सभा के अतिथि थे और उन्होंने राजा ध्यान सिंह की हवेली में निवास किया। उनका पहला एवं तीसरा व्याख्यान इसी स्थान पर हुआ था। हाँ, आजकल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनके साथ 3 सन्यासी और एक अंग्रेज महिला सहित 3 इंग्लैंड वासी हैं। इन अंग्रेजों में एक संवाददाता भी थे। अब व्याख्यान के दौरान ये स्वामी जी के भाषण लिख लेते और ब्रह्मवादिन तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं के संपादकों के पास उन्हें भेज देते। ये अंग्रेज बड़े सज्जन, बड़े कर्म कुशाल हैं और स्वामी जी के प्रति उनकी विशेष भक्ति भी है। अन्य 2 अंग्रेज भी बड़े धनाढ्य हैं और स्वामी जी का व्यवहार सामान्यतः यही लोग वहन करते हैं। इसी बीच पहला और दूसरा व्याख्यान ट्रिब्यून में प्रकाशित हो चुका है। संभवतः तीसरा व्याख्यान भी उसी पत्र में मुद्रित होगा। पहले व्याख्यान का विषय था हिंदू धर्म के सामान्य आधार। व्याख्यान कुल मिलाकर अच्छा ही हुआ, यहाँ तक कि अनेक लोगों की दृष्टि में यह अति उत्तम भी रहा। हाँ।
1: उन्होंने आगे और लिखा है।
3: द्वितीय व्याख्यान का विषय था भक्ति और तीसरे व्याख्यान का विषय वेदांत था और ये पता है पूरे 2.5 घंटे तक चला। श्रोतागण इतने तल्लीन हो गए थे कि इसके द्वारा एक ऐसी परिवेश की सृष्टि हुई कि लोग स्थान काल तक की सुध भूल गए थे। और संक्षेप में कहा जाए तो ये एक ऐसी सफलता थी जैसी कदाचित ही कभी दीख पड़ती है। श्रोता काफी संख्या में उपस्थित थे और वे चाहे अंग्रेज रहे हों या मुस्लिम, आर्य समाजी रहे हों या ब्रह्म समाजी, ये सभी के लिए आंखें खोलने वाला सिद्ध हुआ। मिशन कॉलेज के प्रिंसिपल तथा अन्य प्राध्यापक भी इससे काफी लाभान्वित हुए थे।
2: तीर्थराम प्रभावित होकर आगे लिखते हैं।
3: व्याख्यान तो अच्छे हुए ही, परंतु इनकी तुलना में अनौपचारिक वार्तालाप के दौरान स्वामी जी का ज्ञान और भी सुंदर ढंग से अभिव्यक्त हुआ था। आर्य समाज तथा ब्रह्म समाज के नेताओं के साथ उनकी चर्चा के दौरान में उपस्थित था। उन्होंने उन लोगों के प्रश्नों के ऐसे तीक्ष्ण उत्तर दिए कि लोग हतप्रभ होकर लौटे। तथापि मजे की बात तो ये रही कि उन्होंने ऐसे एक भी शब्द को उच्चारण नहीं किया जो उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाता हो। विद्वता भी इनमें यथेष्ट है। उन्हें बहुत से श्रुति वाक्य कंठस्थ हैं। उन्होंने ब्रह्म सूत्र, शंकर भाष्य, श्री भाष्य, माधव भाष्य का अध्ययन किया है और वल्लभाचार्य के अणुभाष्य को भी उन्होंने पढ़ने का संकल्प लिया है। सांख्य एवं योग में उनकी गहरी पैठ है तथा भगवत गीता के वे अपूर्व व्याख्याता हैं। फिर वे गाते तो अत्यंत मधुर हैं, जिसमें कृपा और प्रीति का भाव है।
2: तीर्थराम जी स्वामी जी से बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपने प्रेम के प्रतीक स्वरूप स्वामी जी को एक सोने की घड़ी उपहार में दी थी। स्वामी जी ने सहर्ष उस घड़ी को स्वीकार किया और कहा,
0: वाह, बहुत सुंदर घड़ी है, इसे तुम ही अपनी जेब में रख लो, मैं तुम्हारी जेब से ही इस घड़ी का उपयोग करूंगा।
1: तीर्थराम समझ गए स्वामी जी को कोई भी लालच छू नहीं सकता, सोना भी नहीं। लाहौर की एक और घटना के बारे में सुनिए। श्रीयुत नागेंद्रनाथ गुप्त की स्मृति में कथा से भी लाहौर की 2-1 छोटी पर रोचक घटनाओं का पता चलता है। स्वामी जी और नागेंद्र बाबू एक दिन नियंत्रित होकर श्रीयुत बख्शी जय श्री राम के घर गए। जय श्री राम स्वामी जी से पहले ही धर्मशाला नामक स्थान में मिल चुके थे। उस घर में पहुंचते ही गृह स्वामी ने स्वामी जी को धूम्रपान हेतु एक सुंदर नया हुक्का दिया, परंतु हुक्के को मुंह में लगाने के पूर्व ही स्वामी जी ने उन्हें सावधान करते हुए कहा,
0: यदि जाति भेद के विषय में आपकी दृढ़ आस्था हो तो मुझे अपना हुक्का मत दीजिएगा, क्योंकि कल यदि कोई और भी धूम्रपान के लिए मुझे अपना हुक्का दे तो मैं आनंद पूर्वक उसे पीऊंगा। कारण यह है कि मैं जाति पाति की सीमा के परे जा चुका हूँ।
1: गृह स्वामी जी ने सविनय कहा कि स्वामी जी के धूम्रपान करने पर वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे।
2: एक दिन शाम को वे चिंतित मुख मुद्रा में नगेंद्र बाबू के पास आकर बोले, यदि इससे देश का किसी प्रकार से कल्याण हो तो मैं प्रसन्न चित्त से जेल जाने को तैयार हूँ। स्वामी जी स्वदेश लौटने के बाद उस गौरव का उपभोग करने के बजाय अगर आवश्यकता हो तो आत्म बलिदान के द्वारा भी देश का मंगल करने की सोच रहे थे और अंग्रेज सरकार के अत्याचार के फलस्वरूप अनेक वरेण्य देशभक्तों को कारावास स्वीकार करना पड़ रहा था। ये सोचकर उनका चित्त उस समय दुख के भार से पीड़ित था। प्रसंगतः आपको जानकारी दे दूं कि 27 जुलाई 1897 को बाल गंगाधर तिलक बंबई सरकार द्वारा राजद्रोह के अपराध में पकड़ लिए गए थे और अदालत में विचार होने के बाद उन्हें 1.5 वर्ष का कारावास का दंड मिला था। इन्हीं दिनों स्वामी जी जापान तथा जापानियों के देश प्रेम की खूब प्रशंसा करते हुए कहते थे,
0: उनका स्वदेशी हमारे लिए धर्म है, उनकी राष्ट्रीय जनध्वनि है, महामहिम जापान दीर्घजीवी हो, उनके लिए सर्वप्रथम और सबसे ऊपर स्वदेश का स्थान है। स्वदेश के सम्मान तथा अखंडता की रक्षा के लिए उनके द्वारा कोई भी बलिदान असंभव नहीं है।
1: लाहौर के बाद स्वामी जी की सिंध जाने की बड़ी इच्छा थी, परंतु विविध कारणों से उनका वहां जाना नहीं हो सका और उन्होंने लाहौर से देहरादून की यात्रा की। उन्होंने एक पत्र में देहरादून जाने के कारण बताए थे,
0: प्रथमतः तो कैप्टन तथा श्रीमती सेवियर जो इंग्लैंड से आकर पिछले लगभग 9 महीनों से मेरे साथ घूम रही हैं, देहरादून में जमीन खरीद कर एक अनाथालय बनाने के लिए विशेष उत्सुक हैं। द्वितीय मेरा उद्देश्य है कि कलकत्ते में एक मठ बने, पर उसके संबंध में भी मैं कुछ नहीं कर सका हूं। इसके अतिरिक्त देशवासियों ने भी जो पहले मठ को सहायता देते थे वो बंद कर दी है। उनकी धारणा है कि मैं इंग्लैंड से काफी धन लेकर लौटा हूं। इतना ही नहीं, इस बार श्री राम कृष्ण का महोत्सव तक होना कठिन है, क्योंकि विलायत हुआने के कारण रासमणि के उत्तराधिकारी मुझे उद्यान में जाने नहीं देंगे। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि राजपूताना आदि में मेरे जो 2-4 मित्र हैं उनसे मिलकर कलकत्ते में एक केंद्र बनाने के लिए प्रयास करना। कलकत्ते में एक मठ स्थापित हो जाने पर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, तभी मुझे विश्वास होगा कि जीवन भर दुख कष्ट उठाकर मैंने जो भी कार्य किया है वो मेरे शरीर त्याग के बाद समाप्त नहीं हो जाएगा। आज ही देहरादून जा रहा हूँ।
2: देहरादून से स्वामी जी राजपुताना की ओर अग्रसर हुए। उनका गंतव्य स्थान खेतड़ी था। राजा अजीत सिंह उस समय तक इंग्लैंड के राज दरबार से लौट आए थे। बंबई में उनके जहाज से उतरने पर स्वामी जी के निर्देशानुसार रामकृष्ण मिशन की ओर से उनकी संवर्धना की गई। उस समय राजा अपने गुरुदेव का दर्शन करने को आकुल थे और आचार्य भी अपने सुयोग्य शिष्य को दर्शन देने के लिए उत्सुक थे। अतः वे सहारनपुर, दिल्ली, अलवर तथा जयपुर होते हुए खेतड़ी की ओर चल पड़े। दिल्ली में उन्होंने मात्र 4-5 दिन ही निवास किया।
1: दिल्ली से स्वामी जी 1 दिसंबर की ट्रेन से अलवर की ओर चले। चारों ओर फैले बालू के ढूंढों से बीच से गुजरते हुए अंत में ट्रेन जब रेवाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी तो पता चला कि खेतड़ी नरेश के लोग स्वामी जी को ले जाने के लिए पालकी, ऊंट, घोड़े आदि विविध प्रकार के वाहनों सहित वहां उपस्थित हैं। खेतड़ी उन दिनों जयपुर के अधीन एक सामंती राज्य था। जयपुर से रेगिस्तान के रास्ते उसकी दूरी लगभग 90 मील थी, परंतु रेवाड़ी से ये दूरी लगभग 20 मील कम थी। राजा अजीत सिंह ने इस छोटे मार्ग को ही स्वामी जी की यात्रा के लिए उत्तम समझा था।
2: खेतड़ी पहुंचकर स्वामी जी महाराजा के अतिथि के रूप में रहे। पुरानी बातों को याद कर स्वामी जी ने कहा था,
0: यहीं पर एक दिन मैं साधारण फकीर के वेश में आया था। तब राजकीय रसोईया बड़ा नाक भों चढ़ाकर शाम को थोड़ा सा कुछ खाने को देता था और अब पलंग के नर्म गद्दे पर सोने की व्यवस्था, कितने ही लोग हाथ जोड़े सेवा के लिए तैयार खड़े हैं। ये बात कितनी सत्य है, अवस्था पूज्यते राजन, ना शरीरम शरीरिणाम।
1: खेतड़ी नरेश ने स्वयं ही 12 मील पथ अग्रसर होकर स्वामी जी की चरण वंदना की और उन्हें अपने 6 घोड़ों के रथ पर बैठाकर राजधानी ले आए। खेतड़ी राज्य में उस समय महासमारोह चल रहा था। राजा केवल कुछ दिनों पूर्व ही यूरोप भ्रमण कर स्वदेश लौटे थे। उसके उपलक्ष्य में प्रजा ने उनके अभिनंदन और अपने हर्षोल्लास के लिए महोत्सव का आयोजन किया था। इस पर राजगुरु के आगमन से सबका उत्साह दुगना हो गया। इसी कारण इस उपलक्ष्य में वहां दिन भर भोज, आतिशबाजी, आलोक सज्जा, संगीत आदि विविध प्रकार के समारोह का आयोजन चलता रहा। राज्य के विशिष्ट जन भी उनका सत्कार करने को एकत्र हुए। सम्मेलन के स्थान पर स्वामी जी और राजा के उपस्थित होने पर दोनों की अभ्यर्थना के उपरांत अभिनंदन पत्र दिया गया।
2: स्वागत सभा में खिचड़ी के लोगों ने अपनी परंपरागत रीति के अनुसार 5 थालियों में स्वर्ण मुद्राएं भरकर राजा को उपहार दिया। फिर राजा ने चढ़ावे का अधिकांश भाग राज्य में शिक्षा कार्य हेतु दान कर दिया। राजा के भेंट देने के उपरांत उपस्थित सभी राज कर्मचारी तथा प्रजावृंद एक एक कर स्वामी जी के सामने से होकर जाने लगे और प्रत्येक ने उन्हें प्रणाम करके 2 रौप्य मुद्राएं प्रणामी के रूप में दी। कार्यक्रम में कुल 2 घंटे लगे थे। राजा जी ने खेतड़ी से विदाई के समय स्वामी जी को 3,000 रुपए अर्पित किए थे। उन्हें स्वामी सदानंद तथा स्वामी सच्चिदानंद के हाथों मठ भेज दिया गया।
1: स्वामी जी के लिए खेतड़ी का काम जितना आनंददायक था उतना ही विश्रामदायक भी था। व्याख्यान देने और अपने लिए आयोजित समारोह में भाग लेने के अतिरिक्त बचे हुए समय के दौरान वे अश्वरोहण, विभिन्न स्थानों का परिदर्शन और अपने संगियों और राज परिवार के लोगों के साथ वार्तालाप किया करते थे।
2: एक बार जब खेतड़ी नरेश और स्वामी जी अश्वरोहण करते हुए चले जा रहे थे, स्वामी जी ने देखा कि राजा के हाथ से काफी खून बह रहा है। स्वामी जी के मार्ग से एक कंटीले वृक्ष की शाखा को अपने हाथ से हटाकर पकड़े रहने के फलस्वरूप ही ऐसा हुआ होगा। स्वामी जी के इस विषय में आपत्ति प्रकट करने पर राजा ने उसे हंसकर उड़ा दिया। उन्होंने कहा था, क्या सर्वदा धर्म रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है स्वामी जी? युवा राजा वस्तुतः एक सच्चे क्षत्रिय थे।
1: खेतड़ी से स्वामी जी ब्रह्मचारी कृष्णलाल को साथ लेकर कलकत्ते की ओर चल पड़े। रास्ते में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, इंदौर, खंडवा, रतलाम आदि स्थानों से होकर वे लौटे। कलकत्ता लौटने के तुरंत बाद भगिनी निवेदिता मुंबासा नामक जहाज से कलकत्ता आई। स्वामी जी ने स्वयं जाकर कलकत्ता बंदरगाह पर उनका स्वागत किया।
2: यहाँ पर निवेदिता के भारत आगमन के विषय में 2-4 बातें कहना आवश्यक होगा। स्वामी जी की हार्दिक इच्छा थी कि निवेदिता भारत वर्ष में आकर भारतीय नारियों की सेवा में लग जाएं, परंतु वे निवेदिता की स्वाधीन इच्छा में हस्तक्षेप करने को प्रस्तुत न थे। विशेषकर वे जानते थे कि भारतीय जीवन धारा इंग्लैंड की तुलना में इतनी भिन्न है और यहाँ की आर्थिक अवस्था भी इतनी खराब है कि संभव है निवेदिता उसके साथ सामंजस्य बनाने में बिल्कुल ही असमर्थ हो। अतः यद्यपि निवेदिता भारत आने का आग्रह व्यक्त कर रही थी, तदापि स्वामी जी ने उन्हें सब बातों का विचार करके निवेदिता के प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया। बाद में जब वे समझ गए कि निवेदिता का संकल्प अटल और विश्वसनीय है, तब भी उन्होंने अपने एक पत्र 29 जुलाई 1897 में उनके समक्ष भारतीय परिस्थितियों का स्पष्टीकरण किया और कहीं वे बाद में वास्तविकता को जानने के बाद पश्चाताप न करें, इसलिए उन्हें पहले से ही सावधान कर दिया और इसके साथ ही अपना आमंत्रण भेजते हुए लिखा,
0: मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कहता हूँ, अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है भारत के कार्य में तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। भारत के लिए, विशेषतः भारत के नारी समाज के लिए पुरुष की अपेक्षा नारी की एक सच्ची सिहिनी की आवश्यकता है। भारत वर्ष अब भी महीयसी नारियों को जन्म नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसे अन्य राष्ट्रों से उन्हें उधार लेना पड़ेगा। तुम्हारी शिक्षा, निष्ठा, पवित्रता, असीम प्रेम, दृढ़ता और सर्वोपरि तुम्हारी धमनियों में प्रवाहित होने वाले केल्टिक रक्त के कारण तुम एक ठीक वैसी ही नारी हो जिसकी आज आवश्यकता है। परंतु कठिनाइयां भी अनेक हैं। यहां पर दुख, अंधविश्वास तथा दासत्व का जो साम्राज्य है, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। इस देश में आने से तुम्हें अर्धनग्न नर नारियों के ऐसे समूह के बीच निवास करना होगा जिनमें जाति एवं स्पर्श विषयक अद्भुत विचार हैं, जो भय अथवा घृणा के कारण गोरों से दूर ही रहना चाहते हैं और गोरे लोग भी उनसे अत्यंत घृणा करते हैं। दूसरी ओर गोरी नस्ल के लोग भी तुम्हें सनकी समझेंगे और तुम्हारी हर गतिविधि को शंका की दृष्टि से देखेंगे। यदि तुम इन सब बातों के उपरांत भी कर्म में लगे रहने का साहस करो तो फिर तुम्हारा शत बार स्वागत है। कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व तुम्हें भली भांति विचार कर लेना होगा और इस कार्य के दौरान बाद में यदि तुम कभी असफल या संतुष्ट हो भी जाओ तो मेरी ओर से यह निश्चित रूप से जान लो कि भले ही तुम भारत के लिए कार्य करो या ना करो, वेदांत को त्याग दो या उसे धरे रहो, मैं आमरण तुम्हारे साथ हूं। हाथी के दांत और मर्द की बात, एक बार जो निकल आते हैं फिर वापस नहीं जाते।
1: इसके साथ ही एक अन्य विषय में भी उन्होंने निवेदिता को सावधान कर दिया। मिस मूलर का स्वभाव स्वामी जी बड़ी अच्छी तरह समझ गए थे। वे अत्यंत हठी और हर मामले में अपना मत चलाने को व्यग्र थी। ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर कार्य करने पर बात बात में कलह के बीच में पड़कर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या फिर अपने व्यक्तित्व को पूर्णतः भुलाकर उसी व्यक्ति का सर्व प्रकार से अनुसरण करना पड़ता है। स्वामी जी जानते थे कि निवेदिता स्वाभाविक रूप से ही इस नवीन क्षेत्र में स्वाधीनता पूर्वक अपना कार्य करना पसंद करेगी और अपने व्यक्तित्व का वे इस प्रकार पूर्ण रूपेण विसर्जन भी नहीं कर सकेगी। अतएव उन्होंने निवेदिता को सावधान करते हुए लिखा,
0: तुम्हें अपने ही पांव पर खड़े रहना होगा और मिस मूलर या किसी अन्य पर निर्भर होने से काम नहीं चलेगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। दिन के ठीक 12 बजे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। हमारे कार्यक्रमों को आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद से। दोपहर कालीन सभा में आप सभी का हम पुनः स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, तराने आजादी।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ही राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा पूर्ण आयोजन, प्रवेश निःशुल्क।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती।

दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादन और संगीत दोनों ही फन के महारथी हैं। उन्हें संगीत की दुनिया का लिविंग लेजेंड कहा जाता है। तबले पर अपनी उंगलियों और हाथ की थाप से जादू पैदा करने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन अब आपसे खुद मुखातिब हैं।

आप सबको हम सबका नमस्कार, और थोड़ी सी तालियां बाद के लिए भी बजा के रखिए ना, कुछ गलत उलट बजा दिया तो ताली बजा देना। आप सब यहाँ हैं, मन को ज़रा अच्छा लगा कि, लेकिन आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी देर आपके सामने ताल और सुर की चर्चा होगी, और मेरे साथ मंच पर बैठे हुए हैं, पहले तो ये कह दूं, तो भोपाल में एक सारंगी मेला होता है, तो सारंगी यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध साज है, और यहाँ बड़े गुणीजन सारंगी के रहे हैं, जैसे उस्ताद लतीफ खान साहब इत्यादि। तो लेकिन भोपाल के अलावा हिंदुस्तान में कुछ जगह को छोड़ के सारंगी कम बजती है, और ये एक बड़े मतलब ढारस बंधाने वाली बात है कि युवक कलाकार सारंगी लेकर उसका रियाज करके आपके सामने इस सास को जीवित रखने की चेष्टा में लगे हुए हैं। इनके चचा, जिनके साथ मुझे 30 साल तक संगत करने का आशीर्वाद मिला है, जिनका नाम उस्ताद सुल्तान खान साहब रहा है, तो उनके ये भतीजे हैं, और मेरे ख़्याल से आज हिंदुस्तान में जो चंद बहुत ही जैसे फिल्मों में कहते हैं ना धुरंधर बजाने वाले हैं, उनमें से एक हमारे दिलशाद भाई हैं। इन्होंने मुझे कुछ दिया था कि मेरी भी तारीफ करते ना, तो कर डाली। सॉरी, हाँ, मेरी मजाक करने की आदत है, आप बुरा मत मानिए। तो थोड़ी देर बजाएंगे, लय ये सेट करेंगे, उसके बाद जो भी शुरू होगा। खान साहब ने राग सरस्वती चुना है, तो तीन ताल मैं कंफर्म कर रहा था, राग का नहीं ताल का, कि मुझे क्या ताल बजाना है, तो तीन ताल 16 मात्रे का बजेगा। तो उसमें शुरुआत जो होती है पेशकार की, तीन ताल के शब्दों को लेके उस पर बढ़ंत करना है, तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो कुछ देर चलेगी, ये बर्दाश्त कर लीजिएगा, उसके बाद फिर देखेंगे क्या क्या करना है। वैसे पेशकार जितनी मेरी सोच है, ये एक हम गुणीजनों को, गुरुदेवों को, और जिन जिन से इस संगीत को आशीर्वाद मिला है, चाहे वो भगवान शिव हों या गणेश जी हों, इन सब से ये ताल की विद्या चली आई है। भरता के नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब शिव जी ने तांडव किया और वो उसमें इतने मुग्ध हो गए कि धरती भी ख़त्म होने जा रही थी, तो भगवान सब गौरी जी के पास गए और गौरी जी से कहा कि आप जाके उनको शांत करिए, वरना पृथ्वी भी तबाह हो जाएगी। तो गौरी जी आई और उन्होंने लास्य भाव का नृत्य किया और शिव जी को शांत किया, ये एक इतिहास है। तो कहते हैं कि शिव जी के तांडव का जो शब्द है ता, और गौरी के नृत्य लास्य नृत्य का जो शब्द है ला, उससे उनको मिल के बनता है शब्द ताल। तो गुणीजनों का जो आशीर्वाद है, तो हम जब पेशकार शुरू करते हैं तो उनको अपनी निगाहों में रख के उनको प्रणाम करते हैं, ये एक तरीके से एक पूजा का समय होता है हमारे लिए। तो आपसे भी यही गुजारिश है कि अपने अपने गुरुजन को याद करिए, जब ये चल रहा है उनको नमन करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि विद्या देने वाले की बिना ये सारे काम अधूरे रह जाते हैं। तो शुरू पेशकार से होगा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो लेकिन राग और ताल दोनों की साथ में चर्चा होगी,
तो थोड़ी बहुत दिलशाद भाई भी राग की चर्चा करेंगे। तो राग सरस्वती और ताल तीन ताल 16 मात्रे का, और साथ साथ में ये जो बज रहा है ये कौन से ताल में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लोगों का तालमेल साथ ही रहे।

इसी कायदे को मेरठ में उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब ने उल्टा किया, तेरे किट को किट तक कर दिया। सो तेरे किट, किट यहाँ लगता है, तेरे किट, सो तेरे की जगह किट से

शिवजी के डमरू से, उनके डमरू से जो शब्द निकले उसको गणेश जी ने लेके पखावज की जबान पैदा की, तो मेरे दिल में एक एक बात आई कि ऐसे कैलाश पर्वत कर शिवजी मस्त मगन डमरू बजा रहे हैं और शिष्यगण शंख बजा रहे हैं, तो वो क्या वातावरण, क्या वाणी होगी। तो उसका एक मतलब, हम लोग तो इस लायक नहीं है कि उसके बारे में सोच भी सकें, लेकिन एक जरा सा पूजा के रूप में।

तो तकते रिकेटे जब बजती है तो हाथ से बजती है, इसमें जो तक है ये बीच की उंगली से लगती है सिर्फ, लेकिन उसका वजन उतना ही होना चाहिए जैसे पूरे हाथ का होता है।

फरमाइशी चक्करदार बेदम। धिन धिन धड़े धड़े गिये धड़े गिये धन कर धन अगर धन तरकर तरकर आने का तथा नगदत्ते का ताक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्तिक धनाकर्

चक्करदार हैं, इनको लाहौरी गद भी कहते हैं। इसका कारण ये है कि दिल्ली के एक गुरुजन के की लड़की की शादी, नहीं कि लड़के की शादी पंजाब के एक गुरुजन की लड़की से हुई। तो जब शादी हुई तो संगीत जो की सेवा जो करते हैं उनके पास पैसा वैसा तो कुछ होता नहीं है उस ज़माने में, राशन वगैरह सब नवाबों महाराजों के यहाँ से आता था। तो बाकी जो भी है तो शादी में दूल्हा मियाँ को क्या दें, लेकिन क्योंकि दोनों घर संगीत के थे होते थे तो गुरुजन ने अपने सन इन लॉ को, दामाद को 500 बंदिशें या गतें दी। तो वो लाहौर से वो दामाद अपनी नई बीवी को लेके घर आए, तो तब से जब उसकी चर्चा हिंदुस्तान में हुई, अभी भी बनारस में बजती हैं, लखनऊ में बजती हैं, जगह फरक्काबाद में बजती हैं, तो उनको लाहौरी गत कह के बजाया जाता है। तो ये उस लाहौरी गतों में से है कि ये 350 साल पुरानी बात है।

धान धान धा ता। और क्योंकि ये पखावच की, ये पंजाब की है, इसलिए इसमें पखावच का दखल ज्यादा है। धान धान धा ता धक त्रिक त्रिक धक त्रिक धागे ते टिक धे टिक ते धा के नडान त्रिक त्रिक धागे दे नगे ते टिक तान क त्रिक त्रिक धा तान धा नगे ते टिक तान क त्रिक त्रिक धा तान धा धगे ते टिक तान क त्रिक त्रिक धा तान धा धान तान धा ता धक त्रिक त्रिक धक त्रिक धागे ते टिक धे टिक ते धा के नडान त्रिक त्रिक धागे दे नगे ते टिक तान क त्रिक त्रिक धा तान धा नगे ते टिक तान क त्रिक त्रिक धा तान धा नगे ते टिक तान क त्रिक त्रिक धा तान धा धान तान धा ता धक त्रिक त्रिक धक त्रिक धागे ते टिक धे टिक ते धा के नडान त्रिक नगद टिकता नगद टिकता नगद टिकता नगद टिकता।

तो मैंने पढ़ दी, आपने सुन ली, बोल हैं अच्छे हैं, खुशनुमा हैं उनके कॉम्पोजिशन, लेकिन मैं अगर इसको एक आपको चित्र खींच के दूं तो फिर उसका अलग मायने पैदा हो जाता है। आप लोग सब आए, आप सबको निमंत्रण गया होगा या नहीं भी गया होगा, जिनको नहीं गया होगा वो लेट आके सामने बैठ गए। तो अगर मेरी तरफ से आपको निमंत्रण पहुंचा होता तो वो तबले की जबान में क्या होता? तो आइए बैठिए, थोड़ा रेस्ट करिए, कुछ समोसा खाइए, चाय पीजिए, मतलब रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद प्रोग्राम सुनिए और घर जाइए, इतनी सी बात है। तो छोटी सी बंदिश में ये सब बात आ रही है। धगित तकिट धा धिड़े नगिट तके नगित टिकिड़ा त्रिकिट दिखता त्रिकिट दिखता नगदे दा। प्रोग्राम सुनिए, गिते टेका था गदी के ना, और फिर घर जाइए, धिड़े नगिट दिखता

जंगल में हिरण घूम रहा है या घूम रही है, आजकल दोनों का देना पड़ता है, मेल फीमेल। तो खाना ढूंढ रही है, नहीं मिला, शिकारी को देखा, घबरा के दौड़ गए। तो जब हिरण दौड़ता है या दौड़ती है तो उनकी एक बड़ी खूबसूरत चाल होती है, गति होती है, जैसे आधा उड़ रहे हैं और आधा दौड़ रहे हैं ऐसे। तो उसको बोलों में भी दिखाना है, और जब उसके मतलब निकास में भी हाथ से निकल रहा है उसमें भी वो अंदाज आना चाहिए। तो छोटी सी चीज़ है, बंदिश, इसको हिरण परण कहते हैं। तो हिरण घूम रहा है जंगल में या भोपाल में कहीं, न्यू मार्केट में वगैरह में कहीं, ढाबे भी सब बंद, तो कहाँ जाए। शिकारी

जब बारिश है तो घने बादल भी होते हैं, और वो तो मैं आपको साउंड में नहीं दिखा सकता, लेकिन उसका फीलिंग क्या है वो देखिए।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन। सारंगी पर संगत कर रहे थे जनाब दिलशाद खान और तानपुरे पर धानी गुंदेचा। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन अपने तबले की गूंज से लोगों के दिलों को रोशन करते रहें, इसी उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम से। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक कई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा पूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
3: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती और मैं आपको सुनाऊंगी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी ममता। बाबू राम रक्षादास दिल्ली के एक ऐश्वर्यशील खत्री थे। बहुत ठाट बाट से रहते थे, बड़े बड़े अमीर उनके यहाँ आते थे, हमेशा आदर सत्कार हुआ करता था। पूरे मोहल्ले में धूम थी, रोज ही दरवाजे पर किसी न किसी बहाने इष्ट मित्र एकत्रित होते थे, टेनिस खेलते थे, हारमोनियम के मधुर स्वरों से जी बहलाते, चाय पानी होता और क्या चाहिए। समाज की भी वो बहुत सेवा करते थे। समाज सुधार के लिए दिल्ली में सोसाइटी थी, बाबू साहब उसके सेक्रेटरी थे और इस कार्य को असाधारण उत्साह से वो पूरा भी करते थे। जब उनका नौकर बीमार हुआ तो उन्होंने उसकी सेवा की थी। मिस्टर राम रक्षा का जातीय उत्साह यहीं तक सीमाबद्ध नहीं था, वे सामाजिक कुप्रथाओं और अंधविश्वास के प्रबल शत्रु थे। होली के दिनों में जबकि मोहल्ले में सर्वहारा वर्ग नशे करके गाते बजाते थे तो उन्हें बहुत शोक होता था। ये उनके प्रशंसनीय प्रयत्न थे जिन्होंने मुख्य होली के दिन दिल्ली में हलचल मचा दी थी। फाग गाने के अपराध में हजारों आदमी पुलिस के पंजे में आ गए थे। सैकड़ों घरों में मुख्य होली के दिन शोक की लहर फैल गई थी। इधर उनके दरवाजे पर हजारों पुरुष स्त्रियां अपना दुखड़ा रो रही थीं। उधर बाबू साहब के हितैषी मित्रगण अपने उदाशील मित्र के सद्व्यवहार की प्रशंसा करते थे। बाबू साहब दिन भर में इतने रंग बदलते थे कि उन पर पेरिस की परियों को भी ईर्ष्या हो सकती थी। कई बैंकों में उनके हिस्से थे, कई दुकानें थी, किंतु बाबू साहब को इतना अवकाश नहीं था कि उनकी कुछ देखभाल करते। अतिथि सत्कार एक पवित्र धर्म है, वे सच्ची देश हितेशिता की उमंग से कहा करते थे। अतिथि सत्कार आदिकाल से भारतवर्ष के निवासियों का एक प्रधान और सराहनीय गुण है। अभ्यागतों का आदर सत्कार करने में हम अद्वितीय हैं, हम इससे संसार में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। मिस्टर राम रक्षा आवश्यकताओं से भी बेपरवाह नहीं थे, वे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में पूर्ण रूप से योग देते थे। यहाँ तक कि प्रतिवर्ष 2 बल्कि कभी कभी 3 वक्तृताएं अवश्य तैयार करते थे। भाषणों की भाषा अत्यंत उपयुक्त, ओजस्वी और सुंदर होती थी। व्याख्यान समाप्त होने पर उनके मित्र उन्हें गोद में उठा लेते थे और आश्चर्यचकित होकर कहते थे, वाह, आपकी भाषा में जादू है। सारांश ये कि बाबू साहब का ये जातीय प्रेम और उद्योग केवल बनावटी, सहायता शून्य और फैशनेबल था। यदि उन्होंने किसी सुद्योग में भाग लिया भी तो वो सम्मिलित कुटुंब का विरोध था। अपने पिता के पश्चात वे अपनी विधवा माँ से अलग हो गए थे। इस जातीय सेवा में उनकी स्त्री विशेष सहायक थी। विधवा माँ अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रह सकती थी, इससे बहू की स्वाधीनता में विघ्न पड़ने से मन दुर्बल और मस्तिष्क शक्तिहीन हो जाता है। बहू को जलाना या कुढ़ाना सास की आदत नहीं थी, इसलिए बाबू राम रक्षा अपनी माँ से अलग हो गए थे। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने मात्र ऋण का विचार करके 10,000 रुपए अपनी माँ के नाम जमा कर दिए थे ताकि उसके ब्याज से उनका निर्वाह होता रहे। किंतु बेटे के इस उत्तम आचरण पर माँ का दिल ऐसा टूटा कि वो दिल्ली छोड़कर अयोध्या चली गईं, तब से वहीं हैं। बाबू साहेब कभी कभी मिसेज राम रक्षा से छिपकर उनसे मिलने अयोध्या जाते हैं, किंतु वो दिल्ली आने का नाम कभी नहीं लेती। हाँ, यदि कुशल क्षेम की चिट्ठी पहुंचने में कुछ देर हो जाती है तो विवश होकर समाचार पूछ लेती थी। उसी मोहल्ले में एक सेठ गिरधारी लाल रहते थे। उनका लाखों का लेन देन था, वे हीरे और रत्नों का व्यापार करते थे। बाबू राम रक्षा के दूर के नाते में वो साड़ू भी होते थे। पुराने ढंग के आदमी थे, प्रातःकाल यमुना स्नान, गाय को अपने हाथों से झाड़ना पोछना, उनसे मिस्टर राम रक्षा का स्वभाव नहीं मिलता था। परंतु जब कभी रुपयों की आवश्यकता होती तो वो सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से बेखटके मांग लिया करते थे। केवल 4 अंगुल के पत्र पर रुपया मिल जाता था, ना कोई दस्तावेज, ना स्टाम्प, ना साक्षियों की आवश्यकता। मोटर कार के लिए 10,000 की आवश्यकता हुई, वहां से आ गया। घुड़दौड़ के लिए एक ऑस्ट्रेलियन घोड़ा 1,500 में लिया था, उसके लिए भी रुपया सेठ जी के यहाँ से आया। धीरे धीरे यही कोई 20,000 का अब मामला हो चुका था। सेठ जी सरल हृदय के आदमी थे, समझते थे कि उनके पास दुकानें हैं, बैंकों में रुपया है, जब जी चाहेगा रुपया वसूल कर लेंगे। किंतु जब 2-4 साल बीत गए, सेठ जी के तकाजों की अपेक्षा मिस्टर राम रक्षा की मांग बढ़ गई तो गिरधारी लाल को भी संदेह हो गया। वो एक दिन राम रक्षा के मकान पर आए और सभ्य भाव से बोले, भाई साहब, मुझे एक हुंडी का रुपया देना है, यदि आप मेरा हिसाब कर दें तो अच्छा होगा। ये कहकर हिसाब के कागजात और उनके पत्र उन्होंने दिखा दिए। मिस्टर राम रक्षा किसी गार्डन पार्टी में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो रहे थे तो बोल उठे, इस समय क्षमा कीजिए, फिर देख लूंगा, थोड़ा जल्दी है। गिरधारी लाल को बाबू साहब की रुखाई पर क्रोध आ गया, वे गुस्सा हो गए। आपको जल्दी नहीं है, मुझे तो है, 200 रुपए मासिक की मेरी हानि हो रही है। मिस्टर राम रक्षा ने असंतोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी, पार्टी का समय बहुत करीब था। वो बहुत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, मैं बड़ी जल्दी में हूँ, इस समय मेरे ऊपर कृपा करो, मैं कल स्वयं उपस्थित हूँगा। सेठ जी एक माननीय और धन संपन्न आदमी थे, वे राम रक्षा के इस कुरुचिपूर्ण व्यवहार पर जल गए। उन्होंने कहा, मैं इनका महाजन हूँ, इनसे धन में मान में ऐश्वर्य में बड़ा हूँ, चाहूँ तो ऐसे को तो मैं नौकर रख लूँ, इनके दरवाजे पे आऊँ और आदर सत्कार की जगह ऐसा रूखा बर्ताव, वो हाथ बांधे मेरे सामने ना खड़ा रहे, किंतु क्या मैं पान इलायची इत्र आदि से भी सम्मान करने के योग्य नहीं। वो तिनक गए और बोल उठे, अच्छा तो कल हिसाब साफ हो जाए। राम रक्षा ने भी अकड़कर उत्तर दे दिया, हो जाएगा। राम रक्षा के गौरवशील हृदय पर सेठ जी के इस बर्ताव के प्रभाव का कुछ खेदजनक असर न हुआ। इस काठ के कुंदे ने आज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी, वो मेरा अपमान कर गया। अच्छा, तुम भी इसी दिल्ली में रहते हो और हम भी यहीं हैं, निदान दोनों में गांठ पड़ गई। बाबू साहब की तबीयत ऐसी गिरी कि हृदय में ऐसी चिंता उत्पन्न हुई कि पार्टी में जाने का ध्यान जाता रहा और वो देर तक इसी उलझन में पड़े रहे। फिर सूट उतार दिया और सेवक से बोले, जा मुनीम जी को बुलाकर लाओ। मुनीम जी आए, उनका हिसाब देखा गया, फिर बैंकों का अकाउंट। किंतु जैसे जैसे इस घाटी में उतरते गए, वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता गया। बहुत कुछ टटोला गया, कुछ हाथ नहीं था। अंत में निराश होकर वो आराम कुर्सी पर पड़ गए और उन्होंने एक ठंडी सांस ले ली। दुकानों का माल बिका, किंतु रुपया बकाया था वो डूब गया। कलकत्ते के व्यापारियों से जो माल मंगाया था, रुपया चुकाने की तिथि सिर पर थी और रुपया वसूल नहीं हुआ। रात भर करवटे बदलते रहे चिंता में। अब क्या करना चाहिए, गिरधारी लाल सज्जन पुरुष हैं, यदि सारा कच्चा हाल उन्होंने सुना तो अवश्य मान जाएंगे, किंतु ये कठिन कार्य है। जैसे जैसे सुबह हो रही थी, वैसे ही उनका दिल बैठा जा रहा था। कच्चे विद्यार्थी की जो दशा परीक्षा के निकट आने पर होती है, वही हाल अब राम रक्षा की थी। वो पलंग से ना उठे, हाथ मुंह भी नहीं धोया, खाने को कौन कहे। इतना जानते थे कि दुख पड़ने पर कोई साथी नहीं है, इसलिए एक आपत्ति से बचने के लिए कई आपत्तियों का बोझ नहीं उठाना पड़े। इस ख्याल से मित्रों को इस मामले की खबर तक नहीं थी। रोगी को जब जीने की आशा नहीं होती तो औषधि भी छोड़ देता है। मिस्टर राम रक्षा जब इस कुत्थी को ना सुलझा पाए तो चादर तान ली और मुंह लपेट कर सो गए। शाम को एकाएक उठकर देखा, सेठ जी के यहाँ पहुंच गए और कुछ असावधानी से बोले, महाशय, मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता। सेठ जी ने भी घबरा कर बोला, क्यों, क्या हो गया। राम रक्षा ने कहा, इसलिए कि मैं इस समय दरिद्र निहंग हूँ, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, आप अपना रुपया जैसे चाहे वैसे वसूल कर लें। जब ये हाल था तो आपको उचित नहीं था कि मेरे गले पर छुरी फेरते, सेठ जी ने भी कह दिया। तब राम रक्षा ने अभिमान से कहा, मैं आपके यहाँ उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूँ। ये कहकर मिस्टर राम रक्षा वहां से चले गए। सेठ जी ने तुरंत नालिश कर दी, 20,000 रुपए मूल, 5,000 रुपए ब्याज, डिग्री हो गई, मकान नीलाम पर चढ़ गया, 15,000 की जायदाद 5,000 में निकल गई, 10,000 की मोटर 4,000 में बिक गई, सारी संपत्ति उड़ जाने पर कुल मिलाकर 16,000 से अधिक रकम न खड़ी हुई। सारी गृहस्थी नष्ट हो गई, तब भी 10,000 के ऋणी वो रह गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली म्युनिसिपलिटी के मेंबरों का चुनाव हुआ। सेठ गिरधारी लाल के मोहल्ले में उनके एक और प्रतिवादी थे, नाम था मुंशी फैजुल रहमान खां, बड़े जमींदार और प्रसिद्ध वकील थे। बाबू राम रक्षा ने अपनी दृढ़ता, साहस, बुद्धिमानी और मृदु भाषण में मुंशी साहब की सेवा करनी आरंभ कर दी। सेठ जी को परास्त करने का ये अपूर्व अवसर हाथ आया। वे रात और दिन इसी धुन में लगे रहते। उनकी मीठी और रोचक बातों का प्रभाव उपस्थित जनों पर बहुत पड़ता। एक बार अपने असाधारण श्रद्धा उमंग में उन्होंने कहा, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मुंशी फैजुल रहमान से अधिक योग्य आदमी आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। ये वो आदमी है जिनकी गजलों पर कवि जनों में वाह वाह मच जाती है। ऐसे श्रेष्ठ आदमी की सहायता करना मैं अपना जातीय और सामाजिक धर्म समझता हूँ। अत्यंत शोक का विषय है कि बहुत से लोग इस जाति और पवित्र काम को व्यक्तिगत लाभ का साधन बनाते हैं। धन और वस्तु है, श्रीमान वायसराय के दरबार में प्रतिष्ठित होना और वस्तु, किंतु सामाजिक सेवा और जाति चाकरी और चीज है। वो मनुष्य जिसका जीवन ब्याज प्राप्ति, बेईमानी, कठोरता और निर्दयता और सुख विलास में व्यतीत होता है, इस सेवा के योग्य कभी नहीं है। सेठ गिरधारी लाल इस अनुक्तिपूर्ण भाषण पर हाल सुनकर क्रोध से आग हो गए। क्या मैं बेईमान हूं, ब्याज का धन खाता हूं, विषयी हूं, कुशल हूं, जो तुमने मेरा नाम नहीं लिया, किंतु अब भी तुम मेरे हाथ में हो। मैं अब भी तुम्हें जिस तरह चाहूं नचा सकता हूं। खुशामदियों ने आग पर तेल डाल दिया। इधर राम रक्षा अपने काम में तत्पर रहे, यहां तक कि वोटिंग डे आ गया। मिस्टर राम रक्षा को उद्योग में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई। आज वो प्रसन्न थे। गिरधारी लाल को नीचा दिखाऊंगा, आज उसको पता पड़ेगा कि धन संसार में सभी पदार्थों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जिस समय फैजुल रहमान के वोट अधिक निकलेंगे और मैं तालियां बजाऊंगा, उस समय गिरधारी लाल का चेहरा देखने योग्य होगा। मुंह का रंग बदल जाएगा, हवाइयां उड़ने लगेंगी और वो मुझसे आंख न मिला पाएगा। शायद फिर मुझे मुंह ना दिखा सके। इन्हीं विचारों में मग्न राम रक्षा शाम को टाउन हॉल में पहुंच गए। उपस्थित जनों ने बड़ी उमंग के साथ उनका स्वागत किया। वोटिंग आरंभ हुई। मेंबरी मिलने की आशा रखने वाले महानुभाव अपने अपने भाग्य का अंतिम फल सुनने के लिए आतुर थे। 6 बजे चेयरमैन ने फैसला सुना दिया। सेठ जी की हार हो गई। फैजुल रहमान ने मैदान मार लिया। राम रक्षा ने तो हर्ष के मारे आवेग में टोपी हवा में उछाल दी और स्वयं भी कई बार उछल पड़े। मोहल्ले वालों को अचंभा हुआ। चांदनी चौक से सेठ जी को हटाना, मेरू को स्थान से उखाड़ना था। सेठ जी के चेहरे से राम रक्षा की जितनी आशाएं थी वो सब पूरी हो गई और उनका रंग फीका पड़ गया। खेद और लज्जा की मूर्ति बन गए। सेठ जी ने बहुत रोकना चाहा, परंतु आंखों से आंसू डबडबा ही गए। किंतु बाबू राम रक्षा बहुत देर तक इस आनंद का मजा ना लूट पाए। सेठ जी को बदला लेने के लिए बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करना पड़ा। सभा वर्जित होते ही जब बाबू राम रक्षा सफलता की उमंगों में ऐंठते, मूछों पर ताव देते और चारों ओर गर्व की दृष्टि डालते हुए बाहर आए, तो दीवानी के 3 सिपाहियों ने आगे बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखा दिया। आपकी बाबू राम रक्षा के चेहरे का रंग उतर गया और सेठ जी के इस मनोवांछित दृश्य से आनंद उठाने की बारी थी। गिरधारी लाल ने आनंद की उमंग में तालियां तो नहीं बजाई, परंतु मुस्कुरा कर मुंह फेर लिया और रंग में भंग पड़ गया। मिस्टर राम रक्षा के घर पर ज्यों ही ये खबर पहुंची, कोहराम मच गया। उनकी स्त्री पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश में आई तो रोने लगी। रोने से छुट्टी मिली तो उन्होंने गिरधारी लाल को कोसना शुरू कर दिया। मिसेज राम रक्षा बहुत देर तक अपने विचारों में डूबी रही। रात करवटे बदलने में बीत गई। गिरधारी लाल बड़ा बदमाश और घमंडी है। मेरा सब कुछ लेकर भी उसे संतोष नहीं है। इतना भी इस निर्दय कसाई ने नहीं देखा। भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से मिलकर एक रूप धारण हुआ और क्रोधाग्नि को दहलाकर और प्रबल हो गई। ज्वालामुखी शीशे में जब सूर्य की किरणें एक होती हैं तब अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी तरह इस स्त्री के हृदय में रह रहकर क्रोध की एक असाधारण लहर उत्पन्न हो रही थी। बच्चे ने मिठाई के लिए हट किया, उस पर बरस पड़ी। मेहरी ने चौका बर्तन करके चूल्हे में आग जला दी तो उसके पीछे पड़ गई। मैं तो अपने दुखों को रो रही हूँ। इस चुड़ैल को रोटियों की धुन सवार है। और हुआ ये कि 9 बजे उससे रहा नहीं गया और उसने एक पत्र लिखकर अपने हृदय की ज्वाला ठंडी कर ली। सेठ जी, तुम्हें अब अपने धन के घमंड ने अंधा कर दिया है। किंतु किसी का घमंड इसी तरह सदा नहीं रहता, कभी न कभी सिर अवश्य नीचा होता है। अफसोस कि कल शाम को जब तुमने मेरे प्यारे को पकड़वाया, मैं वहां मौजूद नहीं थी, नहीं तो अपना और तुम्हारा रक्त एक कर देती। तुम धन के मद में भूल गए हो, मैं उसी समय तुम्हारा नशा उतार देती। एक स्त्री के हाथों अपमानित होकर तुम फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इसका बदला तुम्हें किसी न किसी तरह जरूर मिलेगा। मेरा कलेजा उस दिन ठंडा होगा जब तुम निर्वश हो जाओगे और तुम्हारे कुल का नाम मिट जाएगा। सेठ जी पर यह फटकार पड़ी तो वो क्रोध से आग बबूला हो गए। ये भी ध्यान नहीं रहा कि एक सताई हुई स्त्री की ये मानसिक दुर्बलता का विचार है। उसकी धनहीनता विवशता पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई। मरे हुए को मारने का उपाय वो फिर सोचने लगे। तीसरे दिन सेठ गिरधारी लाल पूजा के आसन पर बैठे। मेहरा ने आकर कहा, सरकार कोई स्त्री आपसे मिलने आई है। सेठ जी ने कहा, कौन स्त्री? नौकर ने कहा, सरकार मुझे क्या मालूम, लेकिन है कोई भले मानुष, रेशमी साड़ी पहने हैं, हाथ में सोने के कड़े हैं, पैरों में टाट के स्लीपर हैं, बड़े घर की स्त्री जान पड़ती है। यूं तो साधारण सेठ जी पूजा के समय किसी से नहीं मिलते, कोई भी कितना ही काम क्यों ना हो, ईश्वर उपासना उनके लिए जरूरी है। किंतु ऐसी दशा में जबकि किसी बड़े आदमी की स्त्री उनसे मिलने आई है, तो वो थोड़ी देर के लिए पूजा में विलंब करना उचित समझ बैठे। ऐसा विचार करके वो बोल दिए, बुला लाओ। जब स्त्री आई तो सेठ जी स्वागत के लिए खड़े हो गए। अत्यंत कोमल वचनों में, कारुणिक शब्दों में बोले, माता कहाँ से आना हुआ? जब ये उत्तर मिला कि वो अयोध्या से आई हैं, तो आपने उन्हें फिर एक बार दंडवत किया। चीनी और मिश्री से भी अधिक मधुर और नवनीत से भी अधिक चिकने शब्दों में कहा, अच्छा आप श्री अयोध्या से आई हैं, आपकी नगरी का क्या कहना, देवताओं की पूरी है, बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए, और यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ माते? तब उस स्त्री ने उत्तर दिया, घर तो मेरा यही है। सेठ जी का मुख पुनः मधुरता का चित्र बन गया। वो बोले, अच्छा तो मकान आपका यहीं इसी शहर में है, तो आपने माया जंजाल को त्याग दिया। ये तो मैं पहले ही समझ गया था, ऐसी पवित्र आत्माएं संसार में बहुत थोड़ी हैं, ऐसे देवियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। आपने मुझे दर्शन दिया, बड़ी कृपा की, मैं इस योग्य नहीं जो आप जैसी विदुषियों की सेवा कर सकूं, किंतु जो काम मेरे योग्य हो, जो कुछ मेरे लिए हो सकता हो, उसे करने के लिए मैं सब भांति तैयार हूं। यहां सेठ साहूकार ने मुझे बदनाम कर रखा है, मैं सबकी आंखों में खटकता हूं। इसका कारण सिवा इसके और कुछ नहीं कि लोग जहां लोभ का ध्यान रखते हैं, वहां मैं भलाई रखता हूं। यदि कोई बड़ी अवस्था का वृद्ध मनुष्य मुझसे कुछ कहने सुनने के लिए आता है, तो विश्वास मानिए मुझसे उसका वचन टाला नहीं जाता। कुछ बुढ़ापे का विचार, कुछ उसके दिल टूट जाने का डर, कुछ ये ख्याल कि कहीं ये विश्वासघातियों के फंदे में ना फंस जाऊं, मुझे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवश कर देता है। मेरा सिद्धांत है कि अच्छी जायदाद और कम ब्याज। किंतु इस प्रकार बातें आपके सामने करना व्यर्थ है माता जी, आपसे तो घर का मामला है। मेरे योग्य जो काम हो, उसके लिए मैं सिर आंखों से तैयार हूं। तब वृद्ध स्त्री ने कहा, मेरा काम आप ही से हो सकता है। सेठ जी ने तो प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, आज्ञा दीजिए। स्त्री ने कहा, मैं आपके सामने भिखारिन बनकर आई हूं, आपको छोड़कर कोई मेरा सवाल पूरा कर ही नहीं सकता। सेठ जी ने भी तत्पर होकर कहा, कहिए कहिए। तब स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, आप राम रक्षा को छोड़ दीजिए। सेठ जी के मुंह का रंग उतर गया, सारे हवाई किले जो अभी अभी तैयार हुए थे सारे गिर पड़े। उसने मेरी बहुत हानि की है, उसका घमंड तोड़ डालूंगा तब छोड़ूंगा, सेठ जी ने बोल दिया। तब स्त्री ने कहा, तो क्या कुछ मेरे बुढ़ापे का, मेरे हाथ फैलाने का, कुछ अपनी बड़ाई का विचार ना करोगे? बेटा ममता बुरी होती है, संसार से नाता टूट जाए, धन जाए, धर्म जाए, किंतु लड़के का स्नेह हृदय से नहीं जाता। संतोष सब कुछ कर सकता है, किंतु बेटे का प्रेम माँ के हृदय से नहीं निकल सकता। इस पर हाकिम का, राजा का, यहाँ तक कि ईश्वर का भी बस नहीं है। मुझ पर तरस खाओ, मेरे लड़के की जान छोड़ दो बेटा, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा, मैं जब तक जीऊँगी तुम्हें आशीर्वाद देती रहूँगी। सेठ जी का हृदय कुछ पसीज गया, पत्थर की तह में पानी रहता है, किंतु तत्काल ही इन्हें मिसेज राम रक्षा के पत्र का ध्यान आ गया। तो वो बोल उठे, मुझे राम रक्षा से कोई उतनी शत्रुता नहीं है। यदि उन्होंने मुझे ना छेड़ा होता तो मैं ना बोलता। आपके कहने से मैं अब भी उनका अपराध क्षमा कर सकता हूँ, परंतु उनकी बीवी साहिबा ने जो मुझे पत्र भेजा है उसे देखकर मेरे शरीर में आग लग गई है। दिखाऊं आपको? राम रक्षा की माँ ने पत्र लेकर पढ़ लिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो भीगी आंखों से बोली, बेटा इस स्त्री ने मुझे भी दुख दिया है। उसने मुझे देश से निकाल दिया। उसका मिजाज और जुबान उसके वश में नहीं है, किंतु इस समय उसने जो गर्व दिखाया है उसका तुम्हें ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम उसे भुला दो। तुम्हारा देश देश में नाम है बेटा। ये नेकी तुम्हारे नाम की और भी फैल जाएगी। मैं तुमसे प्रण करती हूँ कि सारा समाचार राम रक्षा से लिखवा कर किसी अच्छे समाचार पत्र में छपवा दूंगी। राम रक्षा मेरा कहना नहीं टालेगा। तुम्हारे इस उपकार को वो कभी नहीं भूलेगा बेटा। जिस समय ये समाचार संवाद पत्रों में छपेंगे उस समय हजारों मनुष्यों को तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा होगी। सरकार में तुम्हारी बड़ाई होगी और मैं सच्चे हृदय से कहती हूँ कि शीघ्र ही तुम्हें कोई ना कोई पदवी जरूर मिल जाएगी। राम रक्षा की अंग्रेजों से बहुत मित्रता है, वे उसकी बात नहीं टालेंगे। सेठ जी के हृदय में अब गुदगुदी हो गई। यदि व्यवहार में वो पवित्र और माननीय स्थान प्राप्त हो जाए जो माता जी कह रही हैं, जिसके लिए हजारों खर्च किए, हजारों डालियां दी, हजारों अनुनय विनय की, हजारों खुशामदे की, खानसामों की झिड़कियां सही, बंगलों के कई चक्कर लगाए, तो इस सफलता के लिए ऐसे कई हजार में खर्च कर सकता हूँ। निसंदेह मुझे इस काम में राम रक्षा से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, किंतु इन विचारों को प्रकट करने से क्या लाभ? उसने कहा, माताजी मुझे नाम नमूद की बहुत चाह नहीं। बड़ों ने कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। मुझे तो आपकी बात का ख्याल है। पदवी मिले तो लेने से इनकार नहीं और ना मिले तो तृष्णा नहीं, परंतु ये तो बताइए कि मेरे रुपयों का क्या प्रबंध होगा? आपको मालूम होगा कि मेरे 10,000 रुपये आते हैं, वो कैसे मिलेंगे? तब राम रक्षा की माँ ने कहा, तुम्हारे रुपए की जमानत मैं करती हूँ। ये देखो बंगाल बैंक की पासबुक है, इसमें मेरा 10,000 रुपया जमा है। उस रुपए से तुम राम रक्षा को कोई व्यवसाय करा दो। तुम उस दुकान के मालिक रहोगे, राम रक्षा को उसका मैनेजर बना दो। जब तक वो तुम्हारे कहे पर चले निभाना, नहीं तो दुकान तुम्हारी। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। मेरी खोज खबर लेने वाला ईश्वर है। मेरा राम रक्षा अच्छा रहे, इससे अधिक मुझे और नहीं चाहिए। ये कहकर पासबुक सेठ जी को दे दी। माँ के अथाह प्रेम ने सेठ जी को विहल कर दिया। पानी उबल पड़ा और पत्थर के नीचे ढक गया। ऐसे पवित्र दृश्य देखने के लिए जीवन में कम ही अवसर मिलते हैं। सेठ जी के हृदय में परोपकार की लहर उठ गई, आंखें डबडबा आई। जिस प्रकार पानी के बहाव से कभी कभी बांध टूट जाता है, उसी प्रकार परोपकार की एक उमंग ने स्वार्थ और माया के बांध को तोड़ दिया। वे पासबुक वृद्ध स्त्री को वापस देकर बोले, माताजी ये अपनी किताब ले लो, मुझे अब अधिक लज्जित ना करो। ये देखो राम रक्षा का नाम वही से उड़ा देता हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना सब कुछ पा लिया। आज तुम्हारा राम रक्षा तुमको मिल जाएगा। इस घटना के 2 वर्ष बाद टाउन हॉल में बड़ा जलसा हुआ। बैंड बज रहा था, झंडियां और ध्वजाएं वायुमंडल में लहरा रही थी। नगर के सभी माननीय पुरुष उपस्थित थे। एकाएक मुश्की घोड़ों की एक फिटन अहाते में प्रवेश हुई। सेठ गिरधारी लाल बहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए उसमें से उतरे। उनके साथ फैशनेबल नवयुवक अंग्रेजी सूट पहने मुस्कुराते हुए उतरा। ये मिस्टर राम रक्षा थे। वे अब सेठ जी की एक खास दुकान के मैनेजर हैं। केवल मैनेजर ही नहीं, किंतु उनके मैनेजिंग प्रोप्राइटर ही समझ लीजिए। दिल्ली दरबार में सेठ जी को राय बहादुर का पद मिला है। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियमानुसार इसकी घोषणा करेंगे और सूचित करेंगे कि नगर के माननीय पुरुषों की ओर से सेठ जी को धन्यवाद देने के लिए ये बैठक हुई है। सेठ जी की ओर से धन्यवाद का वक्तव्य मिस्टर राम रक्षा करेंगे। जिन लोगों ने उनकी वक्तृताएं सुनी वो बहुत उत्सुकता से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बैठक समाप्त होने पर सेठ जी राम रक्षा के साथ अपने भवन पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज वही वृद्धा उनसे मिलने आई है। सेठ जी दौड़कर राम रक्षा की माँ के चरणों से लिपट गए। उनका हृदय इस समय नदी की भांति उमड़ रहा था। राम रक्षा एंड फ्रेंड्स नामक चीनी बनाने का कारखाना अब बहुत उन्नति पर है। राम रक्षा अब भी उसी ठाट बाट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु पार्टियां कम देते हैं। दिन भर में 3 से अधिक सूट नहीं बदलते। वे अब उस पत्र को जो उनकी स्त्री ने सेठ जी को लिखा था संसार की एक बहुत अमूल्य वस्तु समझते हैं, और मिसेज राम रक्षा को भी अब सेठ जी के नाम को मिटाने की अधिक चाह नहीं है, क्योंकि अभी हाल में जब लड़का पैदा हुआ तब मिसेज राम रक्षा ने अपना सुवर्ण कंकन धाय को उपहार दिया था और मनो मिठाई बांटी थी। ये सब हो गया, किंतु वो बात जो अब होनी चाहिए थी नहीं हुई। राम रक्षा की माँ अब भी अयोध्या में रहती है और अपनी पुत्र वधू की सूरत कभी नहीं देखना चाहती।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक कई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम

0: हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं। नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना, एक अलग तरह की संस्कृति और एक अलग तरह का नजारा।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने फिरने के लिए।
0: और इन सब का अपना एक अलग ही आनंद होता है।
1: हो भी क्यों ना,
0: एक अलग ही रोमांच है। इस रोमांच की तमन्ना हमें मजबूर करती है कि हम अपने खोल से बाहर निकले और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी विविध है।
1: बिल्कुल ठीक कहा कंचन तुमने, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक अगर हम घूमने नहीं निकले। एक बात बताऊं तुम्हें?
0: हाँ?
1: प्रसंगवश हमें 14वीं सदी के एक यात्री इब्न बतूता की याद आती है। मोरक्को के टेंजियर शहर का वो रहने वाला था।
0: हाँ?
1: और पैदाइशी तौर पर उसे घूमने का जबरदस्त जज्बा था। वह कहता था कि मुझे वो ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए जो किताबों में लिखा है भाई, मैं तो चीजों को अपनी आंखों से देखना, उन्हें महसूस करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ।
0: हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में।
1: अच्छा?
0: वो कहते थे कि मैं दुनिया देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ, और घुमक्कड़पन के इसी उन्माद में 22 साल का ये युवक अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा, ऐसे जैसे चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर निकल पड़ता है।
1: बिल्कुल ठीक।
0: 14वीं सदी का माहौल आज जैसा तो नहीं होगा तब। उस जमाने में अकेले तो क्या, कारवा के साथ चलने पर भी जान की कोई गारंटी नहीं होती थी।
1: हाँ, आपको घर बैठे घुमाने का रोमांच अनुभव कराने के लिए चलो आज हम आपको सैर पर ले चलते हैं, एक रेडियो यात्रा पर। इस कड़ी में सबसे पहले हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में।
0: वाह, वाराणसी से मुझे कहावत याद आ गई।
1: कौन सी?
0: शाम अवध सुबह काशी, यानी अवध की शाम और काशी की सुबह बड़ी ही सुहानी होती है।
1: ये तो ठीक है।
0: सच बात है, काशी यानी कि वाराणसी में सुबह मुंह अंधेरे ही हर हर गंगे हर हर महादेव करती टोलियां जब गंगा तट की तरफ बढ़ती हैं, तो मन एक बार की भक्तिमय हो उठता है। सूरज के जगने से पहले ही ये शहर जग पड़ता है, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और गंगा का घाट चहल पहल से भर जाता है।
1: काशी नगरी पूरी दुनिया में सबसे निराली है। भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, और मानता तो यह भी है कि यह शहर दुनिया में होकर भी मानो दुनिया में नहीं है, और इसलिए जब पूरा विश्व प्रलय में डूब जाएगा तो कहते हैं तब काशी ही अपनी जगह पर कायम रहेगी। ऐसी मान्यता लोगों में आदिकाल से चली आ रही।
0: और काशी को वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वरुणा और असी नदियों के बीच बसा हुआ है। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों ही नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों ने अपने प्यार भरे आलिंगन में इस शहर को ऐसे पाला है जैसे दो माताएं किसी बच्चे को पालती हैं।
1: वाह वाह, क्या कल्पना करी है तुमने। दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों का उत्थान और पतन होता रहा है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को ही ले लो। आज से 5000 साल पहले बसे इन शहरों में अब केवल मलबे ही मलबे बचे हैं, लेकिन वाराणसी शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे पुराना शहर है जो लगातार जिंदा है, अनवरत धड़क रहा है। और हो भी क्यों ना, शिव जी की खास पसंद जो है ये काशी।
0: हाँ, और इसके बारे में मार्क ट्वेन ने तो ये भी कहा था कि ये शहर ओल्डर देन हिस्ट्री है। वे लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है, और इन सब की आयु को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये शहर इससे भी दुगना पुराना है।
1: वाराणसी शहर इतना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ में इसे काशी कहकर के पुकारा गया है। काशी शब्द का अर्थ होता है सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का शहर या ज्योति का शहर।
0: और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक होता है। धर्म का भी और जागरण का भी।
1: बिल्कुल,
0: ये हम नहीं कहते, हमारे पुराने श्लोक कहते हैं।
1: कौन से श्लोक?
0: अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर, और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपको बता दें कि ये पंक्तियां वृदारण्यक उपनिषद के नवरस मंत्र से ली गई हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन वाराणसी के संदर्भ में प्रकाश का अर्थ ज्ञान नहीं, जागरण नहीं, बल्कि कुछ और ही है, और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: ऋग्वेद के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें पूरा का पूरा एक काशी खंड ही है।
1: अच्छा।
0: और इस खंड में 15,000 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं,
1: क्या?
0: अखिल विश्व के तीनों लोकों में केवल एक ही शहर मेरा है और वो है काशी।
1: भाई वाह, क्या बात है।
0: और इसी शहर में मेरा शाही महल भी है।
1: श्रोताओं, अगर आप भूल रहे हो तो हम आपको याद दिला दें कि गंगा भी शिव की जटा से ही निकली है, यानी हर तरह से वाराणसी शिव में है। तभी तो हर हर गंगे यहाँ का सबसे बड़ा मंत्र है।
0: और रामायण व महाभारत ग्रंथों में भी वाराणसी की चर्चा बारंबार मिलती है। गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका समय भी आज से लगभग 2,500 साल पहले का है।
1: बिल्कुल।
0: ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पहला उपनिषद ऋषिपत्तन में दिया था। ये ऋषिपत्तन ही आज सारनाथ है, जो वाराणसी से ही लगा हुआ है, जैसे कि भोपाल और बैरागढ़।
1: हाँ, गौतम बुद्ध बोधगया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यहाँ आए, तब यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था, जिसे मृगार्दव कहा जाता था। इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा जिसमें हिरण रहते हों। आज भी यह बगीचा है, जिसे डेयर पार्क कहा जाता है, और आज भी यहाँ पे हिरण रहते हैं।
0: और इस बगीचे में ही

0: श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है।
1: इस तरह बुद्ध से संबंधित होने के कारण सारनाथ आज दुनिया भर के बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है और यहाँ हर समय पर जापान, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार देशों के तीर्थ यात्रियों का मेला लगा रहता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सारनाथ का एक और महत्व है और वह यह है कि यहाँ से प्राप्त अशोक की लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह लिया गया है, जिसमें चार सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं।
1: बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म से भी वाराणसी का गहरा रिश्ता रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यहीं हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
0: वाराणसी अपने खूबसूरत घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गंगा हर जगह मनोहारी है, पर काशी में तो इसकी छटा निराली है। मॉडर्न एज के जाने माने पेंटर मकबूल फिदा हुसैन को तो बनारस व यहाँ का गंगा तट इतना भाया कि उनकी पेंटिंग में अनेकों रंग इसमें बिखरे हुए हैं।
1: यहाँ इसके किनारों पर कुल 80 घाट बने हुए हैं, जो राजघाट से शुरू होकर 80 घाट तक फैले हैं। इन्हीं में से एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने सपने में अपना राज्य दान दे दिया था, तब वे यहीं आकर एक डोम के दास बने थे।
0: लाइफ का कंट्रास्ट अगर देखना हो तो मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट देखें। एक मृत्यु का प्रतीक है तो दूसरा जीवन का। एक पर दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी रहती है तो दूसरी तरफ शादी विवाह की मन्नतें पूरी करने वालों से अटा पड़ा रहता है। पूरा का पूरा वातावरण जीवन की किलकारियों से भरा रहता है।
1: उस क्षेत्र के वरवधू शादी के बाद दशाश्वमेघ अवश्य आते हैं। गंगा माँ को चुनर चढ़ाई जाती है, दीप दान चलता रहता है, मंदिरों के घंटे जीवन का उद्घोष करते रहते हैं। घाट क्या है, पूरा एक शहर है। विदेशी यात्रियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी यहीं दिखाई देता है। घाट की सीढ़ियों पर वे ऐसे शांति से बैठे रहते हैं जैसे यहाँ विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप आत्मसात कर रहे हो।
0: हाँ, और दूसरी ओर मणिकर्णिका कुछ और नहीं, बस मौत का सन्नाटा है यहाँ। यहाँ आकर के कबीर का दोहा याद आता है।
1: कौन सा?
0: पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
1: यानी मनुष्य का शरीर और क्या है, बस पानी का एक बुलबुला ही तो है। यहाँ से लौटने के बाद हफ्तों तक जीवन की निसारता पीछा करती रहती है। वैराग्य अनुराग पर चोट करता रहता है, पर अंत में जीत अनुराग की ही होती है। ऐसा ना हो तो सब सन्यासी ही हो जाएं।
0: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब काशी की बात चले तो काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा भला कैसे ना हो। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दे कि इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं और यह लाइट कुछ और नहीं ज्योतिर्लिंग ही है।
1: दरअसल ज्योतिर्लिंग उस देव स्थान को कहते हैं जहां शिव मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की उपासना होती है।
0: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि शिव सनातन है, निराकार है। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को अरिद्र नक्षत्र की एक रात्रि में एक अग्नि शिखा के रूप में प्रकट किया जो धरती को फाड़ करके बाहर निकल रही थी। इस अग्नि शिखा को ही प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट किया जाता है।
1: श्रोताओं, 3 ज्योतिर्लिंग के नाम तो आपने सुन ही लिए, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ। चलिए अब आपको शेष 9 नाम भी बताए देते हैं। केदारनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
0: श्रोताओं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को कभी कभी गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर के शिखर पर 50 फीट ऊंचा सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने चढ़ाया था? पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने।
1: इस मंदिर का कुछ रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से भी है।
0: हाँ,
1: राजमाता अहिल्याबाई होलकर कितनी शिव भक्त थी ये तो सभी जानते हैं।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और गंगा के कुछ घाटों को भी पक्का करवाया था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले तो मोक्ष का द्वार उसके लिए स्वयमेव खुल जाता है।
0: और शायद यही वजह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुषों ने इस मंदिर के दर्शन किए, स्वयं को धन्य किया। इतिहास के लंबे दौर में अनेक बार इस मंदिर को हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार दुगनी शान शौकत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया।
1: श्रोताओं, वाराणसी शहर धर्म और आध्यात्म की एक गंगा है, तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक पवित्र स्थल है। अब संकट मोचन को ही ले लीजिए। उल्लेख मिलता है कि वाराणसी में असी नदी के पास एक जगह पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे, सो उन्होंने उस जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की।
0: लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा है उसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में बंदरों के झुंड मिलते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाएं। ऐसा लगता है कि हम वानर लोक में आ गए हैं। पता नहीं जाने कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये उनके राजा का मंदिर है।
1: जरा याद करें यहाँ पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ।
0: कौन सी?
1: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुं लोक उजागर। यानी यहाँ हनुमान जी को कपीश कहा गया है।
0: बिल्कुल।
1: इसका अर्थ है कपि, यानी बंदरों के ईश और लौकिक अर्थ में राजा। प्रसंगवश आपको बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है और उसकी भाषा भी अवधी है।
0: हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट मोचन मंदिर के बंदर भी बड़े नटखट और शरारती होते हैं। हो सकता है कि ये आपकी कोई कीमती चीज उठा ले जाए, लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए नहीं, आप उनसे अपनी चीज को वापस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज उनको देनी पड़ेगी अदला बदली के लिए। बंदरों को आप कुछ खाने पीने की चीज दे दीजिए, वापस बदले में वो आपकी चीज आपको वापस लौटा देंगे।
1: संकट मोचन का रुतबा अगर आपको देखना हो तो जरा कभी मंगलवार या शनिवार को पधार कर देखिए। घंटों के पहले अगर दर्शन करने की आपकी बारी आ जाए तो कहिएगा। कहते हैं अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो उसका सबसे प्रभावशाली उपाय है संकट मोचन के दर्शन करना।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हम वाराणसी की बात करें और वाराणसी के शिल्प की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। वाराणसी का शिल्प बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, खासकर यहाँ की बनी हुई बनारसी साड़ियाँ। इन साड़ियों का भारतीय लोगों के लिए क्या दर्जा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर दुल्हन की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने विवाह के अवसर पर बनारसी साड़ी जरूर पहने।
1: ये साड़ियाँ होती तो सिल्क की हैं, पर इन पर सोने और चांदी की जरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी इतनी जबरदस्त होती है कि साड़ियाँ भारी भरकम हो जाती हैं, इसलिए ये केवल खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहनना संभव ही नहीं।
0: भारत की बात छोड़ दें तो विदेशों में भी इन साड़ियों के प्रति भारी दीवानगी देखने को मिलती है। अगर आपने अपने किसी एनआरआई दोस्त की पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट कर दी तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए वह आपका हो गया। वास्तव में शादी विवाह के मौके पर इस साड़ी का तोहफा देना एक बड़ी ही महानता मानी जाती है।
1: यहाँ आपको बता दें कि सिल्क की बनी बनारसी साड़ियाँ बनारस की प्राचीन संस्कृति का अंग नहीं रही हैं। लंदन का एक व्यापारी रॉल्फ फिच 16वीं शताब्दी में भारत आया। उस समय भारत पर सम्राट अकबर की हुकूमत थी। फिच ने भारत के अनेक शहर घूमे जिनमें वाराणसी भी था। उसने लिखा है कि वाराणसी सूती कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र था।
0: श्रोताओं, एक बात हम आपको बता दें, सम्राट अकबर के काल तक वाराणसी सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में बनारस की साड़ियां तो गुजरात के बुनकरों की देन है। 17वीं शताब्दी के बाद गुजरात में भयानक अकाल पड़ा और वहां से बहुत सारे बुनकर पलायन करके बनारस में आ गए और इन्हीं लोगों ने बनारसी साड़ियों की नींव डाली।
1: बनारस की बात चले तो यहाँ की गलियाँ कैसे छूट सकती हैं? पूरी दुनिया में मशहूर हैं यहाँ की गलियाँ।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो कई बार भटक चुका हूँ इन गलियों में।
1: बाहर वालों के लिए तो भूल भुलैया ही है, तो यहाँ वालों के लिए तोहफा, सड़क पर जाम लगा है कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर गलियों से निकल जाइए।
0: आप पूरा का पूरा शहर इन गलियों के सहारे नाप सकते हैं, करोड़ों का व्यापार इन गलियों में होता है। बनारसी साड़ियों की अच्छी से अच्छी दुकानें इन्हीं गलियों में हैं। बनारस के नायाब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी इन्हीं गलियों में मिलते हैं।
1: श्रोताओं, विश्वनाथ मंदिर की चर्चा तो हो ही चुकी है, दशाश्वमेघ घाट की सड़क से इस मंदिर को जोड़ने का काम भी एक गली ही करती है।
0: बिल्कुल।
1: जिसे विश्वनाथ गली कहा जाता है। गली क्या है, पूरा एक शहर है, मिनी वाराणसी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
0: हाँ, एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट्स के सामान, भगवान की अद्भुत मूर्तियाँ, राजा और सिपाही, पर्स, साड़ियाँ, गहने, ऐसा लगता है कि सपनों की गलियों में तैर रहे हैं आप। विदेशी पर्यटकों की तो भरमार रहती है इस गली में, लेकिन बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है, कुछ खरीदना हो तो होशियार रहिएगा आप।
1: अरे हाँ, बनारस जाइएगा तो बनारसी लस्सी पीना मत भूलिएगा।
0: अच्छा,
1: वो स्वाद, वो सुगंध, आहा, वो स्टाइल आप कहीं और पा ही नहीं सकते। ताजी मलाईदार दही आपके सामने ही फेंटी जाएगी और बर्फ का चूरा मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी और ऊपर से गुलाब जल डालकर आपको सर्व की जाएगी मलाई की परत के साथ
0: जी।
1: मिट्टी के ये बड़े बड़े कुल्हड़ में देखते ही बस मुंह में पानी आ जाएगा।
0: अरे मुझे तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लस्सी बनाने की परंपरागत कला और पूरी तरह से हैंडमेड काम, ना मिक्सी ना फ्रिज और लस्सी की लस्सी।
1: लस्सी के अलावा एक और भी चीज मशहूर है बनारस की।
0: मुझे पता है आपका इशारा क्या है, बनारसी पान की तरफ ना।
1: हाँ, बनारसी पान भी बनारस की एक पहचान है। यूं तो कलकतिया पान भी मशहूर है।
0: हाँ।
1: पर बनारसी पान की बात ही कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है?
0: भाई, कलकतिया पान बिल्कुल पक्का हरा होता है और बनारसी पान हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है। मुझे तो इतना ही पता है और इसीलिए इस कलकतिया पान की तुलना में इनमें कड़वापन कम होता है। बनारस के लोगों की कमजोरी है यह पान और शायद बनारस के बाहर के लोगों की भी। तभी तो डॉन फिल्म का यह गाना कि खाए के पान बनारस वाला, आज भी जब बजता है ना तो लोग झूम उठते हैं। श्रोता, बनारसी पान के बाद आपको याद दिला दे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारसी घराना बड़ा प्रसिद्ध है और यह घराना तबला वादन में महारत रखता है।
1: धर्म प्राण वाराणसी को भारत के 7 मोक्षदायी स्थलों में एक माना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका व द्वारवती स्थल मोक्षदायक हैं।
0: भारतीय उपमहाद्वीपों के शक्तिपीठों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये वे स्थल है जहां पर दक्ष की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न अंग कट करके गिरे थे। इन सभी स्थलों पर आज शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और ये पीठ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और वाराणसी में सती के कान की बाली गिरी थी, इस स्थान पर ही आज विशालाक्षी मंदिर बना हुआ है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं वाराणसी से संबंधित कुछ महापुरुषों की।
0: बिल्कुल।
1: वाराणसी असाधारण नगर है। यहाँ के वातावरण में चैतन्य लहरियाँ बहुत होती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है।
0: हाँ।
1: ऐसे लोगों का नाम गिनाने बैठे जो वाराणसी के दीवाने रहे हैं तो एक पूरा ही एपिसोड नाकाफी रहेगा, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं।
0: चलो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं महाकवि तुलसीदास से। इन्होंने अपना अंतिम जीवन वाराणसी के एक गंगा घाट पर व्यतीत किया और अंत में देह त्याग भी यहीं किया। इस घाट का नाम तुलसी घाट कहलाता है।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी की ही तरह कबीर दास जी का भी वाराणसी से गहरा संबंध है। उनका पालन पोषण यहाँ के एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। जिस जगह पर कबीर रहे और पले वो आज कबीर चौरा कहलाता है।
0: अब हम बात करते हैं महामना मदन मोहन मालवीय की। इनका जन्म तो इलाहाबाद में ही हुआ था, पर इनकी असली कर्म भूमि रही वाराणसी, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी के BHU की स्थापना करके वे अमर हो गए।
1: श्रोताओ, आपको ये बता दें कि ये यूनिवर्सिटी न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इसका केवल मुख्य कैंपस ही 1300 एकड़ में फैला हुआ है।
0: हाँ, तो मदन मोहन मालवीय जो पेशे से वकील थे, भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा मानते थे, सो उन्होंने वाराणसी में एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की ठान ली। और उस समय भारत में जो यूनिवर्सिटीज थीं, वे केवल एफिलिएटेड थीं।
1: मदन मोहन जी के सामने रास्ता बहुत ही कठिन था। सरकार को राजी करना था, जमीन का इंतजाम करना था और ढेर सारा पैसा चाहिए था। लेकिन जब चाह होती है तो राह निकल ही आती है। राजा बनारस ने जमीन दे दी, भारत के धनपतियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी और कांग्रेस के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने कानून भी पास कर दिया।
0: सबसे बड़ा सहयोग तो एनी बेसेंट का मिला, जो पहले ही बनारस हिंदू स्कूल स्थापना कर चुकी थी। यह स्कूल ही BHU के लिए आधारशिला बन गया और इस तरह जनता के पैसे से, जनता की ताकत पर सन 1916 में भारत का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया।
1: जो रोल डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में था, उससे भी बढ़कर मदन मोहन मालवीय जी का BHU की स्थापना में रहा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी के सामने पैसे की जबरदस्त तंगी थी।
0: मदन मोहन केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महान सेनानी थे। कांग्रेस में उनका क्या स्थान था, यह इस बात से ही प्रमाणित होता है कि एक दो नहीं बल्कि कुल 4 बार वे इस संस्था के प्रेसिडेंट चुने गए। इसी संस्था के मंच पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।
1: भारत के सबसे सरल, नेक और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम सबसे पहले जुमा पर आता है, वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस के ही लाल थे, जो गंगा उस पार के गांव में रहते थे।
0: गरीबी बेइंतहा थी, पढ़ने के लिए गंगा पार करके शहर आना पड़ता था, पर नाव का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो वे तैर करके गंगा पार करते थे। बनारस की गंगा कोई मामूली गंगा नहीं है, इसे पार करना एक जीवट का काम है, और जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया, दुबले पतले कमजोर से इंसान ने।
1: लेकिन पढ़ाई का जज्बा भुजाओं में बल बनकर नदी पार कराता रहता। शायद ये गंगा जल के स्पर्श का ही प्रभाव रहा होगा कि उनकी रग रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
0: हाँ, मुझे याद है। वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुजराव हवाई अड्डे से यहाँ के लिए सीधी उड़ान भी मिलती है।
1: हम वाराणसी के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पर इच्छा रखते हैं कि अगर आपने वाराणसी न देखा हो तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।
0: बिल्कुल श्रोताओं, अब वाराणसी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपको फिर ले चलेंगे किसी दूसरे नगर की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
1: कंचन राजानी ने।
0: सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: छेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को मेरा शत शत प्रणाम।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
1: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

मैं अशोक चक्रधर FM रेडियो का अभिनंदन करता हूं जो 90.8 पर आप सुनते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इसका प्रसार और प्रचार निरंतर हो रहा है। ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आज़ाद हिंद हमें याद दिलाता है नेताजी सुभाष की, याद दिलाता है हमारे स्वाधीनता संग्राम की, याद दिलाता है हमारे गौरव की। इस गौरवशाली परंपरा को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कई तरह के वादन और गायन, तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुपमा भागवत का सितार वादन, और उसके बाद सुनवाएंगे आपको गायन देविकी पंडित का। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन, जिसे पेश किया है अनुपमा भागवत ने।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना सितार वादन, जिसे पेश किया अनुपमा भागवत ने। अब आनंद लीजिए गायन का, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं देविकी पंडित।
1: सोहिनी में राग सुनिए, आपको मैं रूप

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक गई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन, प्रवेश निःशुल्क।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। शुभ संध्या। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 29 से वाचन। ऋषि है कृत्स्मत, देवता है विश्वे देवा और छंद है त्रिष्टुप।
1: धृतव्रता आदित्या ईशिरा आरे मत्कर्त रहसुरिवागः शृण्वतो वो वरुण मित्र देवा भद्रस्य विद्वाम अवसे हुए वह। हे व्रतधारी सर्वत्र गमनशील आदित्यगण, गुप्त रहस्य की भांति हमारे पापों को हमसे दूर करें। हे मित्र एवं वरुण देवो, आपके मंगलकारी कार्यों को जानकर हम संरक्षण के लिए आपका आवाहन करते हैं। आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। यूयम देवाः प्रमतिर यूयमोजो यूयम द्वेषांसि सनुतुर युयोत अभिक्षतारो अभिच क्षमध्व मद्या च नो मृणयता परम च। हे देवगण, आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, तेजस्वी हैं तथा द्वेषियों के छल को प्रकट करने वाले हैं। आप शत्रुनाशक हैं, अतः शत्रुओं का संहार करें तथा हमारा वर्तमान और भविष्य सुखमय बनाएं। किमु नु वह कृणवा मापरेण किम सनेन वसव आप्येन यूयम नो मित्रा वरुणादिते च स्वस्ति मिंद्रा मरुतो दधात। हे आश्रयदाता देवगण, पूर्व में किए गए अपने कर्मों से हम आपका किस प्रकार आदर सत्कार करें। हे मित्र वरुण अदिति इंद्र तथा मरुदगणों, आप सभी देवगण हमारा कल्याण करें। हये देवा यूय मिदापयः स्थते मृणत नाधमानाय मह्यम मा वो रथो मध्य मवारणते भून्मा युष्मावत स्वापिषु श्रमिष्म। हे देवगणों, आप ही हमारे हितैषी सखा हैं, अतः हम आपकी स्तुति करते हैं। आप हमें सुखी बनाएं। हमारे यज्ञ में आपका रथ तीव्र गति से आए। हम आपके समान सखा पाकर सदैव स्तुतियां करते रहें, थके नहीं। प्रव एको मिमय भूर यागो यन्मा पीतेव कीतवम शशास आरे पाशा आरे दघानी देवा मा मधि पुत्रे विमिव ग्रभीष्ट। हे देवो, आपने हमें पिता की भांति उपदेश दिया है, अतः हमने अपने अनेकों पापों को नष्ट कर दिया है। हे देवो, पाप तथा पाश हमसे दूर रहें। व्याध द्वारा पक्षी की तरह पुत्र के सामने निर्दयता पूर्वक हमें न पकड़ें। अर्वांचो अद्या भवता यजत्रा आवो हार्दि भयमानो व्ययेयम् त्राध्वम् नो देवा निजुरो वृकस्य त्राध्वम् कर्ता दवपदो यजत्राः। हे पूज्य देवगणों, आप आज हमारे सामने प्रकट हों। भयभीत होकर हम आपके हृदय के समान प्रिय आश्रय को प्राप्त करें। हे पूज्य देवगणों, कष्टदायी दुष्ट शत्रुओं से आपत्ति काल में हमारी हर प्रकार से रक्षा करें। माहं मघोनो वरुण प्रियस्य भूरिदान आविदं शूनमापेह मा रायो राजन्स्यु यमादव स्थाम बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। हे वरुण देव, सबको संतुष्ट करने वाले ऐश्वर्यशाली दानदाता की सुख समृद्धि से हम कभी ईर्ष्या न करें, उन्हें बंधुवत माने। हे वरुण देव, आवश्यक धन प्राप्त होने पर हम अहंकारी न बने, श्रेष्ठ संतति सहित यज्ञ में देवों की स्तुतियां करें।
0: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 29 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्बू त्रिपाठी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक गई राम रहीम भजन संध्या। हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जो लौट के घर न आए।
2: नमस्कार, मैं हूँ गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत। जिनके स्मरण मात्र से मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जिनके नाम के साथ जुड़ा है शुभता का विश्वास, जिनके मस्तक पर सुशोभित है ज्ञान का प्रतीक विवेक, जिनके हाथों में दिखाई देती है शक्ति और जिनका स्वरूप हमें दिखता है कि जीवन में बुद्धि, धैर्य और विनम्रता कितनी आवश्यक हैं, ऐसे गणपति बप्पा को नमन। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गणपति बप्पा के इस भजन से।

हमारे जीवन में भी ना जाने कितनी छोटी बड़ी बाधाएं आती रहती हैं। कभी परिस्थितियां हमारे मन के अनुसार नहीं होती, कभी मेहनत के बाद भी सफलता देर से मिलती है, कभी रास्ता सामने होते हुए भी हमें अपनी दिशा स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसे समय में प्रभु का स्मरण हमें भीतर से संभालता है।

जब मन में श्रद्धा हो, हृदय में विश्वास हो और होंठों पर ईश्वर का नाम हो, तो भक्ति की ये धारा सीधे मन को छू जाती है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत, और इन्हीं रचनाओं के बाद हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ही राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
2: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन, प्रवेश निःशुल्क।

नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है प्रमोद रंजन चौधरी के जीवन पर।

0: नमस्कार, वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

सन 1920 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया ऐसा जन आंदोलन था जिसमें शहरी, ग्रामीण क्षेत्र, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग सभी ने इसका व्यापक समर्थन किया और देश के प्रत्येक घर से युवा महात्मा गांधी के साथ हो लिए। इनमें से ही एक युवा थे क्रांतिकारी शहीद प्रमोद रंजन चौधरी। वे एक प्रमुख बंगाली क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंगाल के कैलिशर चटगांव में ईशान चंद्र चौधरी के घर एक नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया। सन था 1904। नाम रखा गया प्रमोद रंजन चौधरी। प्रमोद रंजन ने अपनी शिक्षा के लिए पाठशाला जाना प्रारंभ किया और सन 1920 में अपने छात्र जीवन के दौरान ही वे अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। इसके साथ ही सन 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया और फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होकर देश को आजाद करवाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के समर में कूद पड़े।

सन 1925 में क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और उनके साथ अन्य साथियों ने दक्षिणेश्वर में एक बम बनाने वाली फैक्ट्री से बम बनाने की सामग्री ले जाने का प्रयास किया। इसमें क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और उनके क्रांतिकारी साथियों को संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया गया। हुआ यूं कि कुछ अति उत्साही नौजवानों ने एक दिन सोचा कि एक क्रांतिकारी दल बनाया जाए और अंग्रेजों को सबक सिखाया जाए। तब वर्तमान 24 परगना जिले में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के नाम पर बने इस संगठन का नाम स्वतंत्रता संग्राम के लिए इतिहास बन गया। दक्षिणेश्वर की बम बनाने वाली इस फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक जोरदार विस्फोट ने पुलिस को सतर्क कर दिया और वहां कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार किए गए उन क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। इस दक्षिणेश्वर बम कांड में गिरफ्तार संदिग्ध क्रांतिकारियों में क्रांतिकारी प्रमोद रंजन चौधरी भी शामिल थे और अंग्रेज सरकार द्वारा चलाए गए मुकदमे में क्रांतिकारी प्रमोद रंजन चौधरी को 5 साल की कड़ी सजा सुनाई गई और उन्हें अलीपुर जेल में बंद कर दिया गया। उन दिनों जेल के उप अधीक्षक भूपेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जेल में आए। उनका इरादा जेल में बंद क्रांतिकारियों की मानसिक शक्ति को नुकसान पहुंचाना था और इस मानसिकता के चलते उन्होंने क्रांतिकारियों को छोटी छोटी बातों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तब तंग आकर कुछ क्रांतिकारियों ने जेल के उस उप अधीक्षक भूपेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की हत्या करने की योजना बनाई।

0: अलीपुर जेल के उपाधीक्षक भूपेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय 28 मई 1926 को जेल के फर्श पर मृत पाए गए। इस घटना से अलीपुर जेल में अफरा तफरी मच गई, परंतु पुलिस ये पता लगाने में असमर्थ रही कि उप पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का असली हत्यारा कौन है। काफी जद्दोजहद के बाद अंग्रेज पुलिस ने दो क्रांतिकारियों को मुख्य अपराधी और अन्य तीन को उनके सहायक के रूप में दोषी ठहराया। इनमें क्रांतिकारी प्रमोद रंजन भी शामिल थे। उन पर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया और क्रांतिकारी प्रमोद रंजन चौधरी और उनके साथी क्रांतिकारी अनंत हरि मित्र को फांसी की सजा सुनाई गई।
1: आ मृत्यु आ, आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो आ ही जा, अभी मुरझाने के डर से डर जाए फूल, अंगूर भी रस पीने सूख जाने से डर जाऊं क्यों तुझसे। मैं किस लिए मेरे इस प्याले में पीते पीते कभी न खत्म होने वाली है। भरी आंसुओं की मदिरा बस मेरे लिए।

आ आ यदि तू भूखी है, नैवेद्य के लिए और अभी दिन यद्यपि यौवन युक्त फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं, फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं इस दिन के किसी तरह जुगाड़ कर ऋण चुकता किया, जन्मार्जित जो सब ऋषि ऋण के लिए श्रुति जननी चरण तीर सेवन करके आश्रय कर ध्रुव पद का संतन उसके आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो आ जा।

प्रमोद रंजन चौधरी ने अंग्रेज शासन के विरुद्ध आवाज उठाई थी तथा देश को आजाद करवाने में अत्याचारी अंग्रेजों से लोहा लिया और 28 सितंबर 1928 को वे वीरता के साथ अपने क्रांतिकारी साथी अनंत हरि मित्र के साथ फांसी के फंदे पर झूल गए। प्रमोद रंजन चौधरी के बलिदान ने आजादी के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को प्रेरित किया। उनके द्वारा दिए गए अपने प्राणों के बलिदान, उनकी बहादुरी और विचारों को हम सदा याद रखेंगे। देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारी प्रमोद रंजन चौधरी को शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिव शेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: to him.
1: 90.8 megahertz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: सुनो,
3: आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुनो कहानी। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी परीक्षा।
2: कहानी कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं सुनो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी परीक्षा।

जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई, जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राज काज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे, बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त ये लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है, जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। ये जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहां तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी, विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया, ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता, कोई पंजाब से चलाता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम रोया करते थे, यहां उसकी कोई जरूरत नहीं थी। रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर आ 9 बजे दिन तक सोया करते थे, आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत थी, आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर दा, सा और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय का नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ला को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने देखने में डूबे रहते थे, जिससे बात कीजिए वो नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने

खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं भी आ जा नहीं सकता। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इस बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए हुए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गईं। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहां बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूं, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वो घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। फिर उसने जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैल को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार और जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने तो मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहां बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, हम मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल में संदेह को भांप गया।

सब रंग बिरंगी सजधज बनाए दरबार में आबिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वो जो उदार हो, आत्मबल वो जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं विकीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूं। रियासत के कर्मचारियों रईसों ने जानकी नाथ की ओर देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकारने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा। उसका दृढ़ संकल्प है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वो चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा।

0: तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी परीक्षा। सुनो कहानी के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ही राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।